0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। श्रोताओं, आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपको बताते हैं।

अब से थोड़ी देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात कोमल भारती के साथ, और 7:05 पर रेणु भट्ट आपके लिए लेकर आएंगी गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर। ये खास कार्यक्रम आप सुनेंगे

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर सुबह 8 बजे भी होगा, लेकिन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कोमल भारती के साथ। सुबह 9 बजे रेणु भट्ट के साथ आप सुनेंगे दिल की तरानी, गाने नए

श्रोताओं, सुबह 10:05 पर कार्यक्रम होगा वेस्टर्न म्यूजिक का, मैचलेस म्यूजिकार। ईशा गोयल के साथ ही कार्यक्रम सुनेंगे आप। और 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स में आज आपकी साथी होंगी रश्मि गुप्ता। बॉलीवुड अपडेट्स और गानों के साथ ये खास कार्यक्रम आपके लिए

रेनबो हेल्पलाइन, ये खास कार्यक्रम रश्मि गुप्ता के साथ आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। ये कार्यक्रम आज एक विशेष टॉपिक पर होगा, फोन इन कार्यक्रम होगा ये, और समय होगा 1:05 पर।

0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम थे जिन्हें आप एफएम रेनबो पर आज सुनेंगे। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज

कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम पर। आपका अपना मॉर्निंग मोटिवेशनल डोज लेकर यानी सुप्रभात लेकर हाजिर हूं मैं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों का मधुर कलरव और उगते सूरज की सुनहरी किरणें, मानो प्रकृति हर दिन हमें एक नया संदेश देती है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसका मुस्कुरा कर स्वागत करो। लेकिन क्या हर दिन मुस्कुराना आसान होता है? शायद नहीं, क्योंकि जीवन में हमारे हर दिन मन का नहीं होता। कभी किसी की बात चुभ जाती है तो कभी परिस्थितियां हमारा साथ नहीं देती, तो कभी अपनों की अपेक्षाएं हमारे मन को भारी कर देती हैं। ऐसे समय में जो गुण हमें टूटने नहीं देता बल्कि भीतर से मजबूत बनाता है वो है सहनशीलता। ये केवल चुप रह जाना नहीं है बल्कि सही समय तक स्वयं को संतुलित रखना है। आज सुप्रभात में बात होगी इसी जीवन कला की, जो मन की शांति, रिश्तों की मधुरता और जीवन को आनंद से भर दे।

सुप्रभात, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा देश और दुनिया में आप अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर हमें सुन सकते हैं। हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं और हमारा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, वो भी तो है आप सभी के लिए। और सुनते रहिए सुप्रभात, क्योंकि ये होता है आपका मॉर्निंग मोटिवेशनल डोज। जो स्वयं को संभाल लेता है ना, उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। बस कुछ ऐसी ही बातें सुप्रभात में आप सभी के लिए। बस जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: है सुना रैया आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सुप्रभात सुन रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कोमल। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी बात समझें, हमारी भावनाओं का सम्मान करें और हमारे साथ हमारे अनुसार ही व्यवहार करें, लेकिन क्या ये

हमेशा संभव होता है। हर व्यक्ति की सोच अलग है, अनुभव अलग है और जीवन को देखने का नजरिया भी सबका अलग अलग है। इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक ही है दोस्तों। समस्या मतभेदों से नहीं होती, समस्या तब शुरू होती है जब हम हर मतभेद को मनभेद बना लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। सहनशीलता हमें यही सिखाती है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कई बार किसी बात को मुस्कुराकर टाल देना बहस जीतने से बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि वो आपको आपके मन पर नियंत्रण करना सिखाता है और वही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में सफल होता है जो अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है। सुप्रभात, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सुप्रभात, सुन रहे हैं आप आपका मॉर्निंग मोटिवेशनल डोज और साथ हूँ मैं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। अक्सर हम अपनी आधी एनर्जी जो होती है ना सरकमस्टांसेस परिस्थितियों के बारे में लड़ने में और आधी उनके बारे में ज्यादा सोचने में खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या हर परिस्थिति को बदला जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन हाँ हम अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। अगर हम हर चुनौती को शिकायत की तरह नहीं बल्कि सीख की तरह देखने लगे तो तब वही जो मुश्किलें होती है ना हमें पहले से कई अधिक मैच्योर बना देती हैं, मजबूत बना देती हैं। याद रखिए, आंधी पेड़ों की जड़ों की परीक्षा लेती है और कठिन समय इंसान के धैर्य की।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा, डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सुप्रभात, सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। और आज हम बातचीत कर रहे हैं सहनशीलता के बारे में। और रिश्तों में सहनशीलता बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते शब्दों से कम और व्यवहार से ज्यादा चलते हैं। हर रिश्ते में कभी ना कभी कोई ना कोई गलतफहमी हो ही जाती है। ऐसे समय में यदि हम अपने अहंकार से बोलने लगे तो दूरियां जो हैं वो रिश्ते में थोड़ी सी बढ़ जाती हैं दोस्तों। लेकिन यदि हम धैर्य से काम लें, सहनशीलता से काम लें और फिर बोलें तो रिश्ते फिर से खिल उठते हैं। किसी को समझने के लिए केवल कान नहीं चाहिए बल्कि दिल भी।

चाहिए होता है। कभी कभी सामने वाला सही नहीं होता, फिर भी यदि हम संयम बनाए रखें, सहनशीलता बनाए रखें, तो कई रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। यही सहनशीलता की सबसे बड़ी सुंदरता है। ये जीत किसी और पर नहीं बल्कि आपके अपने अहंकार पर आपको दिलाती है। सुनते रहिए सुप्रभात।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: जी हाँ, यही है वो प्रोग्राम जो 7:05 से आप सभी के लिए लेकर आएंगी रेणु भट्ट, और उसके बाद 8 बजे से मैं आपसे फिर से जुड़ जाऊंगी इसी प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ होना ज़रूरी नहीं होता है दोस्त, बल्कि जो है उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा साहस है, और ये होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। सहनशीलता हमें यही सिखाती है कि जीवन में हर दिन हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम हर दिन अपने व्यवहार को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। तो आज जब आप घर से निकलें तो अपने साथ केवल मोबाइल, चाबियां और ज़रूरी सामान ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी विनम्रता और थोड़ी सी मुस्कुराहट भी लेकर के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी यही मुस्कान किसी का दिन आसान बना दे और आपका धैर्य किसी रिश्ते को टूटने से बचा ले। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी सुबह 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR की दूसरी कड़ी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, शांत रहिए, क्योंकि शांत मन में ही सबसे सुंदर विचार जन्म लेते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा, और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश

मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेणु भटकर मॉर्निंग डेली NCR में और ढेर सारी बातें मेरे पास आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे जाते हैं क्योंकि एक जब बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक हमारे सामने आ जाता है, एक बेहतरीन संगीत हमारे सामने आ जाता है तो मन खुश हो जाता है। तो मन को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मन को खुश करते हैं, फिर काम की बातें शुरू करेंगे।

चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने आज के दिन को इतिहास में खास बनाया। जरूर कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा, रोज कुछ न कुछ होता है लेकिन हम उस चीज पे गौर नहीं करते। अच्छा, आपस में जो होता है उसको तो इतिहास में नहीं काउंट कर सकते, वो व्यक्ति विशेष के जीवन में जरूर हम काउंट कर सकते, लेकिन ऐसी चीजें जो कि विश्व स्तर पर हम याद करें उसके बारे में बात करेंगे। आज यानी कि 30 जून को 1855 में झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ ऐतिहासिक संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू मुर्मू ने किया था। और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो 1938 में 30 जून को ही वो दिन था जब बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून किरदारों में शुमार सुपरमैन को पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर उतारा गया, वो बच्चों के सामने आया। अच्छा, 2008 में रविकांत, उमाशंकर चौधरी और विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय पत्रकार अनीसुद्दीन अजीज को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे 30 जून का दिन जब दुनिया भर में एक बहुत ही खास दिन मनाया जाता है, और 1908 में साइबेरिया की तुंगुस्का नदी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली उल्कापिंड विस्फोट हुआ था जिसने हजारों वर्ग किलोमीटर के जंगल को नष्ट कर दिया था, और इसी वजह से आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन आज के दिन जो ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्होंने आज के दिन को इतिहास में खास बनाया, ये हमने जाना, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर दिन अपने आप में कुछ न कुछ समेटे हुए हैं। बस हमें जानना है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो ये चीज हमने आपके साथ शेयर की है, अब ये बात आप आगे शेयर कर सकते हैं, और जिस दिवस की बात हम कर रहे हैं वो इस गाने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।

इस गाने पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि आज ही के दिन तुंगुस्का नदी के पास एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और एस्टेरॉयड का विस्फोट हुआ था और धरती पर अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है एस्टेरॉयड से, इस घटना को बताया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि एस्टेरॉयड के खतरे को लेकर लोगों में जागरूकता को बढ़ाया जाए। इसलिए हर वर्ष 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है और उसके खतरों से लोगों को अवगत कराया जाता है। और यहाँ पर हम आप सभी को बता दें कि क्योंकि कोई भी दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसके बारे में लोगों को जागरूक करना होता है, कुछ कमी होती है नॉलेज में, वो नॉलेज सब तक पहुँचाना होता है, इसलिए ये किसी थीम पर मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो है प्लानिटरी डिफेंस एंड एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हैजार्ड्स, यानी कि ग्रह रक्षा और क्षुद्र ग्रह प्रभाव से होने वाले खतरे। तो जितने भी संभावित खतरे हैं, ऐसी जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनके बचाव के उपायों के बारे में भी लोगों को बताया जाता है। खगोलीय पिंडों की खोज, वैज्ञानिक अनुसंधान और संभावित अंतरिक्षीय खतरों से पृथ्वी की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो इस दिन की ये इम्पोर्टेंस है जो हमें पता होनी चाहिए। और हमने जब हम जान जाए कोई भी चीज़ तो उसे बाकियों के साथ शेयर भी करना चाहिए। तो इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे है आज और आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक में लेकर आई हूँ। और भी सारी कई सारी बातें मेरे पास जो आपको जानना ज़रूरी है, जो हम आपके लिए ही लेकर आते हैं, आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन पहले सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये ट्रैक।

जीवन की बात करें तो जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे सॉल्व करना ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे वो सामने आती रहती है उसके साथ हम जैसे बढ़ते रहें तो कई बार जीवन जीना बहुत आसान भी हो जाता है। तो इस बारे में सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। कईयों को लाइफ बहुत ईजी हम कह सकते हैं कि मिलती है, वहीं पर दूसरे की लाइफ जो है थोड़ी टफ ज़रूर हो जाती है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप अपने आसपास ही देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाली चीज़ नहीं है, आप अपने आसपास नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। कई बार लगता है हमको कि हमारे साथ बहुत ही टफ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर हम दूसरे से कंपेयर करें ना बॉस, तो लगता है कि नहीं नहीं हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है और हम इसी में खुश हैं। तो इसलिए जो चीज़ पास होती है ना उसमें खुश रहना सीखिए और देखिए कि किस तरह से फिर चीज़ें बदलती हैं। जब सेटिस्फेक्शन और आत्मसंतुष्टि आ जाती है जीवन में, बहुत सारी चीजें हैं जो सॉर्ट हो जाती है लाइफ में। मानते हैं नहीं इस बात को? आप सुन रहे गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर।

चलिए अब हम आपको बता देते हैं उन व्यक्तित्व के बारे में कुछ ऐसी बातें जो जिन्हें आज के दिन याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि नागार्जुन की। इनका जन्म हुआ था 30 जून सन 1911 में मधुबनी जिला बिहार में। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। और सन 1945 के आसपास इन्होंने साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था और हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया और अपनी फकीरी और बेबाकी से उन्होंने अपनी अनोखी पहचान बनाई। हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में आपके साथ बातें साझा करेंगे। रतिनाथ की चाची, बल चन्नम्मा, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे और इनको दिए गए सम्मानों की भी हम अगर बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ हम एक और नाम आपके साथ साझा करेंगे और वो है डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा का और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक रहे। हम आपको बताएं कि डॉक्टर रघुवंश दिव्यांग थे लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। वो पैरों से लिखते थे और निरंतर वो पैरों से लिखते रहे और उन्होंने इतना लिखा कि कई सम्मानों और पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। कुछ प्रमुख रचनाएं उनकी तंतुजाल, अर्थहीन, छायालय, हरिघाटी, मानस पुत्र ईसा, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, कई सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया। साहित्य भूषण सम्मान, भारत भारती सम्मान, शंकर सम्मान और मूर्ति देवी पुरस्कार। हम इन दोनों व्यक्तित्व को जिनकी आज जयंती है हम इन्हें नमन करते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहेंगे और आप सभी से ही निवेदन करेंगे, हम सभी से, आप सभी से हम यही उम्मीद भी रखते हैं कि आप हमारे साथ ही बने रहें। अपनी बातें जो भी आप हमसे साझा करना चाहते हैं आप करते रहें, आप हमसे जुड़े रहें, हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है।

चलिए अब बात करते हैं कल्याण जी वीर जी शाह की, और आज इनकी जयंती है। 30 जून 1928 में इनका जन्म हुआ कच्छ गुजरात में, और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। और अगर आप इनका नाम सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली इनकी जो जोड़ीदार हैं आनंद जी का नाम भी याद आएगा। कल्याण जी आनंद जी एक बहुत बहुत प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी रही, दोनों भाई थे और कल्याण जी बड़े भाई थे। और अगर हम बात करें कल्याण जी की, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, जिनकी जयंती है आज, इन्होंने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, और 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों के कुछ छंद इन्होंने संगीतबद्ध किए थे। भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके साथ हम शेयर करेंगे इनके बारे में कि किस तरह से इनका म्यूजिक के प्रति रुचि आई इनके मन में और किस तरह इन्होंने पदार्पण किया संगीत के क्षेत्र में। असल में ये इनकी किराने की दुकान थी और ये वहाँ पे काम करते थे, अपनी दुकान को देखते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक तंगहाल ग्राहक ने उधारी चुकाने के बदले दोनों को संगीत की तालीम देने की पेशकश की। अगर वो पेशकश इन्होंने ना एक्सेप्ट की होती या फिर उस ग्राहक के पास पैसे ना होते कि वो पैसे दे देता, तो इस तरह की कोई भी जो है चीज़ें नहीं होती। इसलिए कहा जाता ना कि जो होता है अच्छा के लिए होता है, तो पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों को संगीत की शिक्षा देता हूँ। इस वजह से उनका जो है संगीत से हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन हुआ, और फिर वो बाद में मुंबई आ गए और फिर इस तरह से चीज़ें चलती रहीं। यहाँ पर ये तो बात हुई इनकी, और कुछ फिल्में हम इनकी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जैसे उपकार, छलिया, हिमालय की गोद में, पूरब पश्चिम, सट्टा बाजार, सच्चा झूठा, जॉनी मेरा नाम। इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, जैसे हमने आपको बताया। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, और बेहद खूबसूरत ट्रैक हम इन्हीं के फिल्म कलाकार से जिसका संगीत इन्होंने दिया है हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में आप सभी के लिए।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आरंभिक नेता अर्थशास्त्री और शिक्षाविद थे दादा भाई नौरोजी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले एशियाई थे और उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत के जरिए भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया था। 1892 में यानी कि 1892 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव

0: लिबरल पार्टी के टिकट पर जीता था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। इन्होंने पहली बार ये सिद्ध किया कि ब्रिटिश सरकार कैसे भारत से धन और संसाधन लगातार ब्रिटेन ले जा रही है और भारत को गरीब बना रही है। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किया था और इनकी जो सबसे चर्चित पुस्तक रही वो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन भी किया। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर रेणु भट्ट के साथ।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर रेणु भट्ट के साथ. और हम आप सभी को एक बहुत जरूरी बात सूचना साझा करना चाहेंगे. आकाशवाणी के समृद्ध सांस्कृतिक संगीतात्मक विरासत को समर्पित विशेष आयोजन आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति स्वर प्रेरणा वेथिका 1 जुलाई 2026 बुधवार को दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अपनी संगीत प्रस्तुति देंगे पंडित रूपक कुलकर्णी. बांसुरी वादन सुनेंगे आप इनका. और हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी. और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आएं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं. आपको आना है रंगभवन सभागार आकाशवाणी नई दिल्ली में आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष समारोह में आपकी गरिमामय उपस्थिति सादर अपेक्षित है. हम चाहते हैं कि आप आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं. और कोई भी बात आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमें मेल जरूर करें. आप हमें मेल कर सकते हैं feedback@fmrainbow@gmail.com पर. feedback@fmrainbow@gmail.com पर आप हमें मेल करें और बताएं कि क्या बात है जो आप हमसे कहना चाहते हैं और शेयर करना चाहते हैं.

0: वेल आने की नहीं, लेकिन ना ना ना ना, अब जाने का समय ज़रूर हो गया और मैं आपसे मिलूंगी ठीक एक घंटे बाद दिल के तराने गाने नए पुराने में। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और वो ये है कि अगले सप्ताह दिल्ली वासियों को 300 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। 4 जुलाई को इसका लोकार्पण किया जाएगा और 7 जुलाई से, जैसे कि आप सभी को पता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 7 जुलाई को पूरी दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का विशाल महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा, वन महोत्सव की शुरुआत की जाएगी और इस सभी में हमें भी अपना एक प्रयास करना है, हिस्सेदारी करनी है। हम अगर बाहर जाके नहीं लगा सकते तो अपने घरों में तो लगा ही सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके प्रकृति को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमें बचाना चाहिए और हम अपने लिए ही कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। इस बात को दिमाग में हमें ध्यान से डाल देना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, तो इसलिए अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अच्छा काम तो करना ही चाहिए। जाने का समय हो रहा है तो जाते जाते आपको बता दूं कि कुछ ही देर में आप गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के दूसरे घंटे में सुनेंगे कोमल भारती को। दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर आऊंगी मैं रेणु भट्ट 9 बजे और 10:05 पर आप सुनेंगे मैथलेस म्यूजिक आर ईशा गोयल के साथ।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।
0: गुड बाय एंड टेक केयर।
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: सफलता की हर बड़ी शुरुआत तो खुद पर किए गए छोटे से भरोसे से शुरू होती है। जब इंसान अपनी काबिलियत पर अटूट यकीन रखता है तो मुश्किलें हमें डराने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए, हमें हौसला देने के लिए आती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस वो पावर है जो हर चुनौती को आसान बना देता है और जीत की राह खुद ब खुद आसान बननी शुरू हो जाती है। तो इस नई सुबह खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ और मैं जरूर करूंगा। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर मॉर्निंग मैगजीन शो और मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और साथ है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, जहाँ हर सुबह मिलती है नई उम्मीद, नई ऊर्जा और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली बातें।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और एफएम रेनबो पर चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। आज और कल यानी 30 जून और 1 जुलाई के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी अगले कुछ समय तक तेज आंधी और बारिश का दौर जो है वो जारी रह सकता है। तापमान की बात करें तो आज मैक्सिमम तापमान जो है वो 40 डिग्री तक जाएगा और मिनिमम तापमान जो है वो 31 डिग्री तक रह सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होने वाली है और मौसम भी सुहाना रहने वाला है। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम को ध्यान में रख कर निकलें, छाता साथ लें, खुले स्थानों पर तेज आंधी के दौरान रुकने से बचें प्लीज, और वाहन चलाते समय ज्यादा केयरफुल रहें क्योंकि दिल्ली का मौसम बदल रहा है। आप भी अपनी तैयारी के साथ चलिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ कोमल।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बिल्कुल संभल करके तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मौसम है ना, इसका भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आपको, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप हो जाती है, और वो इतनी तेज हो जाती है कि आपको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो इसलिए आपको खतरा तो है, बच करके रहेगा, संभल करके रहेगा। और जानते हैं ना आज क्या है? 30 जून है, रेणु कई बार बता चुकी है अपने प्रोग्राम में, लेकिन आज क्या खास होने वाला है दिल्ली में, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आज से दिल्ली में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान शुरू हो रहा है, और अब BLO बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो आपके घर घर जाकर आपको एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। याद रखिए, ये बहुत आसान प्रक्रिया है, और आपको इसमें जो है दो कॉपी मिलेंगी, एक BLO को भरकर वापस देनी है, जबकि दूसरी पर BLO से रिसीविंग लेकर के अपने पास उसको सेफ रखना है। अच्छी बात यह है कि इस फॉर्म को जमा करते समय आपको कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, याद रखिए, कोई भी दस्तावेज आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर सर्वे के समय आपका घर बंद मिलता है, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, कुछ बच्चों की छुट्टियां थोड़े और दिन तक चलने वाली है, और आप कहीं जा रहे हैं बाहर, और पीछे से अगर BLO आपके घर पर आते हैं और आपका घर बंद मिलता है, तो BLO आपके घर पर फॉर्म छोड़ करके जाएंगे और उसे लेने के लिए 3 बार तक आपके घर पर आते रहेंगे। और अगर जो आपका घर बंद मिला, तो फिर आपको संपर्क करना होगा BLO से, और BLO का नंबर उस फॉर्म पर लिखा होगा। और हाँ, अगर आप 2002 के बाद दिल्ली में आकर बसे हैं, तो फॉर्म में आपको अपने उस स्टेट का डिटेल देना होगा जहां पर पहले आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में था। और 3 बहुत इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें 29 जुलाई तक जो है ये सर्वे चलने वाला है, 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगी, 4 सितंबर तक आप अगर कोई भी दावा है या आपको कोई भी आपत्ति है तो वो आप अपनी दे सकते हैं, और 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो जब BLO आपके घर आए, तो सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि सही वोटर लिस्ट ही मजबूत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। वोट का अधिकार अनमोल है, बस एक छोटा सा फॉर्म इसे और मजबूत बना देगा। दोस्तों, जागरूक मतदाता, सशक्त लोकतंत्र, यही है जिम्मेदार नागरिक की पहचान। तो SIR में जरूर जरूर जरूर भाग लीजिएगा।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा
2: धूम धड़ाका।

0: सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जादू तो है आकाशवाणी रेनबो का, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर आते हैं आपके लिए हर घंटे नए अलग अलग प्रेजेंटर के साथ अलग अलग प्रोग्राम्स, और हर प्रोग्राम में लेकर आते हैं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन बेशुमार। तो चलिए अब आपको बताते हैं सीबीएसई के नए मूव के बारे में। अगर आपके घर में कोई बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है तो ये खबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दरअसल सीबीएसई ने नई 3 भाषा नीति को लेकर छात्रों और जो पेरेंट्स हैं उनकी उलझन को दूर करते हुए नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र इस सत्र यानी 2026-27 से 3 भाषा व्यवस्था जो है वो उन पर लागू होगी, लेकिन 3 भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाएं रखने की शर्त से छात्रों को एक बार की यानी सिर्फ और सिर्फ इस सत्र 2026-27 की छूट दी गई है। अगर कोई छात्र अभी भी 2 विदेशी भाषाओं

को पढ़ रहा है तो वो 10वीं तक उन्हें जारी रख सकता है, लेकिन उसके साथ एक भारतीय भाषा भी पढ़नी आपके लिए जरूरी हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि इस अतिरिक्त भारतीय भाषा का 10वीं बोर्ड परीक्षा जो है वो स्टूडेंट को नहीं देना होगा, बल्कि स्कूल के स्तर पर ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं इस साल 10वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप या आपके बच्चे नई भाषा नीति को लेकर थोड़े से कंफ्यूज थे, तो अब आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप स्कूल से संपर्क कर सकते हैं और सही जानकारी वहां से हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, सही जानकारी सही फैसला लेने में सबसे बड़ी मदद करता है। नई शिक्षा नीति हो या नया नियम, जानकारी पूरी हो तभी तैयारी पूरी होती है। इसलिए सीखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि शिक्षा ही भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुन रहे हैं आप, वेलकम बैक. जी हाँ, और अब आपको बताते हैं ईवी पॉलिसी 2.0 के बारे में. दरअसल दिल्ली की हवा को साफ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. 1 जुलाई यानी कल से दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2.0 लागू होने जा रही है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. अगर आप प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सही समय हो सकता है आपके लिए. नई पॉलिसी के तहत सब्सिडी के साथ साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट मिल रही है. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 100% की छूट. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर आप पहले साल 30,000 रुपये तक और इलेक्ट्रिक ऑटो पर 50,000 रुपये तक की आप सब्सिडी ले सकते हैं. और अगर आपके पास BS4 या उससे पुरानी गाड़ी है तो आप उसे स्क्रैप कराकर नई गाड़ी खरीदने पर 1,00,000 रुपये तक का इंसेंटिव भी पा सकते हैं. और ये लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ाने का नहीं है, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने का है. इसके लिए 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट जो है वो बनाए जाएंगे. तो अगर आप नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल के विकल्प पर जरूर विचार कीजिएगा. ये सिर्फ आपकी बचत नहीं बल्कि दिल्ली की हवा को भी बेहतर बनाने में योगदान देगा. क्लीन ड्राइव, ग्रीन फ्यूचर. जी हाँ, आज का स्मार्ट फैसला कल की साफ हवा. तो गो इलेक्ट्रिक.

Go Green. हर इलेक्ट्रिक सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ भविष्य भी बनाता है। और अभी थोड़ी देर पहले रेनू ने आप सभी से कहा ना कि हम आने वाले दिनों में वन महोत्सव मनाने वाले हैं, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कोई ना कोई पेड़ पौधा जरूर लगाएं। कहीं बाहर नहीं लगा सकते तो अपने घर में लगाएं। करेंगे इसके बारे में भी बात, लेकिन पहले ये एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए।

वेलकम बैक टू द शो, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मैं हूं आपके साथ कोमल, और आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। दोस्तों, इस बार गर्मी ने हमें खूब परेशान किया, कहीं भीषण लू, कहीं आग की घटनाएं और कहीं मानसून का इंतजार। ऐसे में एक सवाल हम सभी से है, क्या हम प्रकृति के लिए छोटा सा योगदान दे सकते हैं? एंड द आंसर इज यस वी कैन। दिल्ली सरकार का वन विभाग भी आपको निशुल्क पौधे देकर आपकी मदद कर रहा है। बस दिल्ली फ्री ट्री पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। जी हाँ, दिल्ली फ्री ट्री पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, मोबाइल नंबर और पता दर्ज कीजिए, अपनी पसंद के पौधे चुनिए, अपने आसपास की नजदीकी सरकारी नर्सरी चुनिए और बुकिंग आईडी के साथ अपना पौधा अपने घर ले आइए। और अगर आप ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार की किसी भी नर्सरी में जाकर आप पौधे ले सकते हैं। बस आपको अपना वहां पर आईडी कार्ड दिखाना होगा, जैसे कि अपना आधार कार्ड आप वहां पर दिखा सकते हैं। फिर चाहे नीम हो, तुलसी, गिलोय या फिर खूबसूरत फूलों वाले पौधे, हर पौधा सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य है। तो आइए, इस मॉनसून सिर्फ बारिश का इंतजार न करें, एक पौधा लगाकर बारिश का स्वागत करें। याद रखिए, एक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, उम्मीद भी देता है। मैं हूं

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और दोस्तों इसी के साथ कोमल को दीजिए आज के इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR से इजाजत, क्योंकि अब थोड़ी सी देर में आने वाली हैं रेणु भट्ट, जो कि आपके लिए लेकर के आएंगी दिल की तरह ने गाने नए पुराने प्रोग्राम। और एंजॉय कीजिएगा उस प्रोग्राम को भी, और बस जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ लोग जो ऑफिस जा रहे हैं उनका रॉकेट सिंह बनने का समय आ गया है, तो चलिए पहुंचिए अपनी डेस्टिनी पर और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर। मैं फिर मिलूंगी आपसे फिर कभी रेनबो की तरंगों पर। यूं ही नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेणु भट्ट दिल के तराने गाने नए पुराने में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं नॉनस्टॉप म्यूजिक और तीन रेट्रो म्यूजिक का तड़का, जो आपको ले जाता है समय में पीछे, याद दिलाता है कुछ ऐसी बातें जो हम भूल गए हैं। उसमें धूल पड़ गई है, लेकिन धूल ही तो पड़ी है, बस उसे झाड़ना है। और चीजें झाड़ के जब सामने आती है ना, तो बहुत मजा आता है।

नैन हमारे तब भी ताकते हैं जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं और बाहर जाम लगा हो, और कब ये जाम खुलेगा हम ये चाहते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पर दिल्ली में अभी किस तरह का ट्रैफिक है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप द्वारका रोड पर हैं तो आपको बहुत ही हल्का फुल्का ट्रैफिक मिल रहा होगा, रुक रुक के चल रहे हैं, 6 मिनट का डिले है वहाँ पर। कालंदी कुंज ब्रिज पर हैं तो आपको 18 मिनट का डिले है वहाँ पर, आप डेफिनेटली वहाँ पर रुके हो सकते हैं। द्वारका फ्लाईओवर पर भी आपको थोड़ा रुक रुक के चलना पड़ रहा होगा। मेहरौली बदरपुर रोड पर हैं तो भी आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिल रहा होगा। कैरियप्पा मार्ग पर भी आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिल रहा है। रंगपुरी पर भी विकास मार्ग पर 13 मिनट का डिले है, और नेताजी सुभाष मार्ग पर 5 मिनट का डिले है। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर बहुत ही हल्का फुल्का ट्रैफिक है, विकास मार्ग पर भी हल्का फुल्का ट्रैफिक है। अगर इन सभी जगहों के अलावा अगर आप दिल्ली की रोड पर हैं तो आप हमें जरूर बताएं दिल्ली की सड़कों का हाल। आपको करना है हमें व्हाट्सएप 9868107070 पर, 9868107070 पर आपको हमें व्हाट्सएप करना है और बताना है दिल्ली की सड़कों का हाल, कहां पर ट्रैफिक मिल रहा है, कहां पर नहीं मिल रहा है, कहां पर डाइवर्जन है या कौन सा अल्टरनेटिव रास्ता लेकर लोग जा सकते हैं। इस सूचना को, इन बातों को आप हमसे शेयर करें और हम आपके साथ शेयर करते हैं और लगाते हैं एक रेट्रो तड़का मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर रेणु भट्ट के साथ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अब समय है कि मैं आपको बता दूं अपने हमारे कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स। 1:05 पर आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन और आज का हमारा टॉपिक है CUET एडमिशन 2026 काउंसलिंग सीट एजुकेशन एंड कॉलेज सिलेक्शन। हमारे एक्सपर्ट रहने वाले हैं प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत वर्मा, कॉमर्स डिपार्टमेंट, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और 3 बजे के समय हमारे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम का, जिसमें आज बात करने वाले हैं रिस्क ऑफ टोबैको यूज़। और एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और ये हमारे फोन इन प्रोग्राम्स हैं और आप इन सभी प्रोग्राम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के साथ, अपने प्रश्नों के साथ। कोई भी बात आप जानना चाहते हैं कॉलेज से जुड़ी हुई या फिर टोबैको यूज़ से जुड़ा हुआ और उसके रिस्क से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे एक्सपर्ट

को ज़रूर कांटेक्ट करें। किस तरह से आप कांटेक्ट करेंगे ये आपको बताएंगे हमारे फेलो आरजेस। आपको बस एक काम करना है, आपको उस समय पर हमारे साथ जुड़ जाना है। आप सभी के लिए ये बेहद खूबसूरत ट्रैक है।

हम सभी की नैया पार लगने वाली है। जो भी इंतजार कर रहे थे बारिश का, कि बारिश शुरू हो तो हम दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिले। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी। और अगर हम टेम्परेचर की ओर नज़र डालें तो 34 डिग्री टेम्परेचर है इस समय पर, और 37 डिग्री आज का मैक्सिमम टेम्परेचर, 29 डिग्री आज का न्यूनतम तापमान है। ज़्यादातर क्लाउडी रहने वाला है और कल से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बारिश का दौर शुरू होने वाला है। आज भी वैसे बारिश का अलर्ट है, आज और कल से दिल्ली में बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हमें उम्मीद है कि अब झमाझम बारिश होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग भी तैयार हैं और पूरा लुत्फ लेने के लिए इस समय का, बारिश का। 30 जून से 3 जुलाई तक मानसून और प्री मानसून की बारिश दिल्ली को भिगो सकती है और हमें इससे जो भीषण गर्मी पड़ रही थी ना, उससे राहत मिल सकती है। तो जब आप अपने साथ घर से बाहर निकलें तो अपने साथ कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखना, छाता आप ज़रूर रखें, अपने आप को बचा के रखें, पानी की बोतल रखनी है, अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाना है क्योंकि ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है शरीर में। और जो टू व्हीलर से ट्रैवल करते हैं उनको अपने पास रेनकोट वगैरह रखने की ज़रूरत है ताकि आप बारिश में भीगे ना। और बहुत सेफली आपको ड्राइव करना है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस समय पर आपको जो ड्राइविंग है बहुत बहुत पेशेंटली करनी है और सबको बचाते हुए, खुद को बचाते हुए करनी है। आप सभी के लिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में बेहद खूबसूरत ट्रैक। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर रेणु भट्ट के साथ।

0: ऑलराइट, अब मेरे जाने के समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी वो प्रोग्राम जो आप मेरे जाने के बाद सुन सकते हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। ठीक 10:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिकार ईशा गोयल के साथ, और रश्मि गुप्ता लेकर आएंगी बॉलीवुड ट्रेल्स 11:05 पर, और ईशा ही रहेंगे आपके साथ प्लेट कूल में 12:05 पर। और हम चाहते हैं कि आप इन तमाम कार्यक्रमों में हमारे साथ बने रहें 24/7। कोई बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो बिंदास शेयर करें। आपको करना मेल feedback@rainbow@gmail.com पर। मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ अब आप सभी से इजाजत, फिर मिलूंगी आपसे कल फिर से गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और दिल के तराने गाने नए पुराने के सफर में। गुड बाय एंड टेक केयर।
1: हाय हाय हाय हाय हाय चिकनी चिकनी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था।

0: मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली, यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स। दिस इज मैचलेस म्यूजिक आवर एंड फॉर द नेक्स्ट 55 मिनट्स यू आर विद योर होस्ट ईशा गोयल माथुर। एंड व्हाट बेटर वे टू बिगिन द लास्ट डे ऑफ जून than with a song that celebrates a brand new day on a happy

0: सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Just the song reminding us to slow down and appreciate simple things. The first rain, the fragrance of wet earth. Perhaps that's why we are all looking up at the skies these days and hoping it rains soon. Just stay tuned, more classics and one more evergreen Hindi favorite just for you. Meet you after a short break.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
2: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती
6: आज की रात मजा
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा
4: म्यूजिक मस्ती
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ मौका खास है
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Now, as you groove to this beautiful Hindi song, time for a quick break. We'll be back with you shortly.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप

अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर

जाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमरीका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण कर किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त एंड होस्ट रॉकिंग रश्मि। प्रोग्राम है वही आपका जाना पहचाना बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें लेकर आते हैं हम ढेर सारी बातें। कहाँ की? हमारी फिल्मी दुनिया की, वो फिल्मी दुनिया जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। हमें एंटरटेनमेंट की फुल डोज मिलती है और साथ साथ ये जानने का मौका मिलता है कि भाई फैशन इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है, और साथ साथ हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं फिल्मी दुनिया की, बॉलीवुड की, वो क्या कर रही हैं, कौन सी नई फिल्म आने वाली है, किस फिल्म का क्या हश्र होगा, और कौन सी फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है या फिर टीजर रिलीज होने वाला है, और खास तौर पर फिल्म की रिलीज कब होगी, ये सारी की सारी बातें लेकर आपके साथ हूं आज मैं, आपके अपने प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में। मैं कौन हूं? मैं हूं आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: बॉलीवुड रेल्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रॉगिंग रश्मि, और बात कर रहे हैं आज हम किसकी सबसे पहले। जी हाँ, टॉक्सिक का मालूम है ना आपको, टॉक्सिक रिलीज हो चुकी है, माफ कीजिएगा, टॉक्सिक का अगले महीने यानि कि अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले लोगों को इंतजार है इस फिल्म का काफी हद तक। और खास तौर पर अब कहना ये है देखने वालों का कि इसके जो विजुअल्स हैं वो काफी अच्छे हैं। अब आप कहेंगे देखने वाले कौन है जब फिल्म रिलीज

नहीं हुई है भाई, रिलीज इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी बिल्कुल लास्ट उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन काम है वो चल रहा है। और खास तौर पे फिल्म की जो एक्ट्रेस है ना, हुमा कुरैशी, ये बात है उनकी, यानी कि हुमा कुरैशी ने फिल्म का पहला रिव्यू दे दिया है। वो कहती हैं कि भाई मैंने अभी 8-9 मिनट का एक कट देखा है इस फिल्म का, और खास तौर पर जो इसके विजुअल्स हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। कहती हैं कि फिल्म पर काम काफ़ी हद तक दिन रात चल रहा है और मैं वाकई में अब यश की और भी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये लगता था कि इनकी ना फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और शायद इसीलिए लोग एक आध फिल्म देखकर इनके काफ़ी इम्प्रेस हो गए हैं इनसे और इसीलिए इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। लेकिन जब मैंने इनके साथ में काम किया है और इनके काम के जज्बे को देखा है, तब से मैंने उनसे ना केवल बहुत कुछ सीखा है बल्कि समझ में आया है कि वाकई में ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और हाँ, वो उनकी काफ़ी अच्छी फ़ैन हो गई हैं। और ख़ास तौर पे यदि फ़िल्म की बात करें तो उनका ये मानना है कि भाई पिक्चर बहुत ही अच्छे से आएगी और जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई में यश ने बहुत ज़बरदस्त कमाल किया है और फैंस के लिए एक अच्छी ट्रीट होने वाली है टॉक्सिक। हालांकि ये फिल्म जो है 26 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है और कोशिश ये की जा रही है कि 3 जुलाई को भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 26 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ होगी। लेकिन हाँ, हुमा कुरैशी की एक और फिल्म है बेबी डू एंड डाई, ये फिल्म 3 जुलाई को रिलीज़ होगी। अब हुमा कुरैशी तो हो गई हैं खुश टॉक्सिक का थोड़ा सा कट देखकर, लेकिन हम कब खुश होंगे जनाब? हम तब खुश होंगे जब इस फिल्म का टीजर या ट्रेलर हमारे सामने होगा और हम देखेंगे एक जबरदस्त अलग से अंदाज में किसको, हमारे यश को।

बेकसी ने मारा ये गाना कौन सा था भाई? ये था टॉक्सिक फिल्म से। हालांकि फिल्म में आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे पुराने गाने एक नए अंदाज में सुनाई दिए, उन्हीं में से ये एक ट्रैक था। आपने बहुत एंजॉय किया होगा फिल्म को, और मुझे लगता है जिस तरह से धुरंधर को लोगों का काफी प्यार मिला ना, तो यश की टॉक्सिक को भी काफी प्यार मिलने वाला है। लेकिन साथ साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी आपका बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए क्या, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी नई नई जानकारियां। खास तौर पे बात करूंगी अब मैं किसकी, बात करूंगी सनी देओल साहब की। भाई सनी देओल की जो नेक्स्ट फिल्म है उसके ट्रेलर ने गर्दा उड़ा दिया है। जी हाँ, फिल्म का ट्रेलर की बात करें किस फिल्म की, तो ये है इक्का। 10 जुलाई को रिलीज होने वाली है, और ट्रेलर जो है 29 जून को आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और खास बात ये है कि इसमें अक्षय खन्ना एक जबरदस्त डैशिंग रोल में है, और

हमारे सनी देओल साहब एक बार फिर से हैं एक वकील के रोल में। याद आया आपको कुछ? जी हाँ, बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी मीनाक्षी शेषाद्री सनी देओल की, साथ में थे ऋषि कपूर, और उस फिल्म के साथ जो सनी देओल साहब थे उन्होंने एक एडवोकेट का, एक वकील का रोल निभाया था। हालांकि थोड़ा सा उनका उसमें नेगेटिव सा एक इम्पैक्ट भी था स्टार्टिंग में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आगे जाके फिल्म में अपने रोल को निभाया और लोगों को इम्प्रेस किया ना, ले गए साहब वो नेशनल फिल्म अवार्ड। तो बता दूं उस फिल्म का नाम? चलिए बताऊंगी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे सारे लिसनर्स अच्छे से समझ गए हैं कि वो कौन सी मूवी है। लेकिन अब उसी तरह से एक जबरदस्त रोल में, एक वकील के किरदार में सनी देओल आ रहे हैं इक्का में। ट्रेलर में आपने देखा होगा, एक अलग अंदाज में आपको नजर आएंगे। तो बस आज के लिए सनी देओल के लिए इतना ही बात करेंगे, लेकिन सुना रही हूँ आपको उन्हीं की फिल्म का एक प्यारा सा ट्रैक। एंजॉय कीजिए और वापस आइए बॉलीवुड रील्स में। यहाँ पर रही हूं मैं आपका इंतजार बहुत सारी खबरों के साथ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।

0: ओ हो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: जी हाँ, रेनबो डेस्टिनेशंस पर आप सुन सकते हैं कोई एक खास डेस्टिनेशंस, लेकिन फिलहाल जो आपका डेस्टिनेशन है वो है बॉलीवुड ट्रेल्स FM रेनबो 102.6 पर, जिस पर हम बात कर रहे हैं आने वाली फिल्म इक्का की। 29 साल के बाद ये दोनों जो सुपरस्टार हैं अक्षय खन्ना और साथ में सनी देओल, ऑडियंस के लिए लेकर आ रहे हैं एक ड्यो। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से इस कोलैबोरेशन का इंतजार हो रहा था और आखिरी बार यदि बात करें तो ये दोनों नजर आए थे 1997 की बॉर्डर में। लोगों को बहुत इंतजार था, फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था कि ये दोनों एक बार फिर से काम करें। और देखिए ना, इस बार जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है 29 जून को, तो ट्रेलर में अक्षय खन्ना और सनी देओल की तारीफ हर कोई कर रहा है, जमकर इनके डायलॉग्स जो हैं वो पसंद किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ना, इतने लंबे समय के बाद सनी पाची को इस अवतार में देखकर, यानी कि एक वकील के रोल में देखकर ना, लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। और अक्षय खन्ना को तो आपने देखा ही ना पीछे धुरंधर में, उन्होंने क्या धुरंधर एक्टिंग की है और क्या धुरंधर तारीफें मिली हैं उन्हें ऑडियंस के, और उसी तरह के एक दमदार रोल में वो नज़र आएंगे काम में। और इनके साथ साथ कौन है फिल्म में ये भी मैं आपको बता देती हूँ, दिया मिर्जा, तिलोत्मा शोम, आकांक्षा, रंजन कपूर भी नजर आएंगी। और खास बात ये है कि जब आपने ट्रेलर देखा होगा ना, तो ट्रेलर में आपने कोर्टरूम ड्रामा के साथ साथ इमोशनल और थ्रिलिंग मोमेंट्स की भी झलक देखी। और यदि आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो बिल्कुल आप जाइए और आपको कहीं ना कहीं ये ट्रेलर जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जल्दी ही फिल्म रिलीज़ होने वाली है। और उससे पहले जब ट्रेलर ऑडियंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है ना, तो बस वो फिल्म को बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंचा देता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड रील्स, अपनी होस्ट एंड दोस्त रॉकिंग रश्मि के साथ।

वेल, आपके साथ भी ऐसा ही है क्या? क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और यदि आप भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि बेगानी शादी में आप अब्दुल्ला बनके पूरी तैयारी के साथ जुट गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और भूल गए हैं इस बीच कि आपका ज़रूरी कोई असाइनमेंट भी होना है, भाई कॉलेज भी जाना है या फिर ऑफिस जाना है और बॉस की डांट खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है आपका। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि बेगानी शादी के चक्कर में आप अपना नुकसान कर लें। खैर, हमारे जो लिसनर्स हैं ये भी मुझे पता है कि बहुत प्यारे हैं और इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर आज बॉलीवुड सरताज के लिए रश्मि क्या क्वेश्चन लेकर आई हैं। बाकी मैंने एक चीज और नोटिस की, हमारे जो लिसनर्स हैं ना बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ध्यान से प्रोग्राम को सुनते हैं। उसका रीजन क्या है और वो कैसे मुझे पता चला ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद, लेकिन फिलहाल मैं लेकर आई हूं आपके लिए वो प्यारा सा सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो तैयार हो जाइए और अपने मोबाइल फोन्स का जो व्हाट्सएप बॉक्स है ना वो खोल लीजिए, एफएम रेनबो वाला, जिसका नंबर है 9868107070। और आज का सवाल सुन लीजिए जल्दी से। इक्का जो रिलीज होने वाली है, इससे पहले सनी देओल ने किस सुपरहिट फिल्म में एडवोकेट का रोल प्ले किया है जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। जल्दी से बता दीजिए इस फिल्म का नाम, अपने नाम, अपने शहर के नाम और अपने फोन नंबर के साथ लिखकर भेज दीजिए हमारे पास 9868107070 पर।

जी हाँ, इश्क भी सतरंगा है और हमारी जो चैनल है ना वो भी सतरंगा है, यानी FM रेनबो है। और रेनबो पर हम लेकर आते हैं आपके लिए रेनबो सारी, बहुत सारी, ढेर सारी जानकारियाँ हमारी बॉलीवुड की। और आज जो बॉलीवुड की मैं आपको अगली जानकारी देने वाली हूँ वो है फिल्म कौन सी। भाई जूनियर NTR की जो नेक्स्ट फिल्म है ना, गॉड ऑफ वॉर, उसके लिए इंतज़ार है फैंस को बहुत ज़्यादा। हालांकि बीच बीच में खबर आई थी कि 20 मई को इनके बर्थडे पर ये फिल्म के बारे में कोई ना कोई अनाउंसमेंट ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं नागा वामसी, उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने क्लियर तो नहीं लिखा है कि वो गॉड ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि फाइनली कल वो दिन आ रहा है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। साथ में एक इमोजी भी शेयर की है और लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि भाई ये जो अपडेट है ना काफ़ी हद तक हो सकती है इसी फिल्म की, गॉड ऑफ वॉर की। ये फर्स्ट लुक पोस्टर भी हो सकता है, टीज़र भी हो सकता है, किसी खास किरदार की या किसी खास एक्टर या एक्ट्रेस की एंट्री की अनाउंसमेंट भी हो सकती है। तो फिलहाल ये जो अटकलें हैं, लेकिन जल्द ही मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई और अपडेट भी आपको ज़रूर नज़र आएगी। फिलहाल मैं आपको अपडेट कर रही हूँ एक छोटे से कमर्शियल के साथ, और उसके बाद एक बार फिर

0: आपको याद दिलाऊंगी कि आज का ताजा तरीन सवाल बॉलीवुड सरताज के लिए क्या है। बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम बॉलीवुड रील्स में।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी हाँ, और ऐसी ही दोस्ती है आपकी और हमारी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें इस प्रोग्राम में। एक मैसेज हमने आपसे मांगा है, बहुत ही आसान सा, और उसमें आपको ये लिखना है कि आंसर लिखना है बॉलीवुड सरताज का, है ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो कौन सी फिल्म है जिसमें पहली बार, या ये कह सकते हैं इक्का से पहले वो कौन सी फिल्म है जिसमें सनी देओल ने एडवोकेट यानी वकील का किरदार निभाया है और उस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। जल्दी से लिखकर भेजिए सही जवाब, अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ, और साथ में अपना फोन नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तभी हम आपसे बात कर पाएंगे, है ना। अब जो मैं आपको खबर देने वाली हूँ ना, वो है YRF के बारे में। अब YRF यानी कि यशराज प्रोडक्शंस के बारे में, और उनकी जो नेक्स्ट स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्म आ रही है अल्फा, उसको लेकर एक अच्छी स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं। आलिया भट्ट और शर्वरी जोशी स्टारर इस फिल्म के बारे में, मेकर्स ये चाहते हैं कि रिलीज के बाद ना पहले ही जो वीकेंड है उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमाघरों तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने टिकट प्राइजिंग को और शो टाइमिंग्स को लेकर ना खास इंस्ट्रक्शन दिए हैं। वो चाहते हैं कि अल्फा मॉर्निंग शोज सुबह 9:30

जिसे शुरू कर किए जाए ताकि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन और ज्यादा से ज्यादा शोज मिले, और जिसका सीधा असर ना इसके बॉक्स कलेक्शन पर होगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि यदि शुरुआती वीकेंड में ज्यादा शोज हो जाएं तो फिल्म की कमाई को तगड़ा शुरुआत मिलता है और साथ में तगड़ा रिस्पांस मिलता है। और इसके लिए उन्होंने चाहा है कि दो स्क्रीन वाले जो सिनेमा घर है उनमें चार शो हो जाएं, थ्री स्क्रीन वाले में छह मिले कम से कम, चार वाले में कम से कम आठ हो, या फिर दस से ज्यादा स्क्रीन वाले थिएटर में दस शो तो जरूर होने चाहिए। अब देखिए ना इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो टीम है वो कितनी ज़बरदस्त काम कर रही है ताकि फिल्म को अच्छे से अच्छा प्रमोशन मिले, अच्छी से अच्छी उनको ओपनिंग मिले और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए शर्वरी जोशी और आलिया भट्ट की एल्फा। क्या आपको भी इंतज़ार है इस फिल्म का? इंतज़ार है तो ज़रूर बताइए, लेकिन साथ साथ बताइए हमारे बॉलीवुड सरताज क्वेश्चन का सही जवाब भी, अपने नाम, अपने शहर के नाम और अपने फ़ोन नंबर के साथ। उसे भेज दीजिए 9868107070 पर।

वेल, घुंघरू टूट गए लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ने वाले हैं हम, क्योंकि लेकर आए हैं आपके लिए एक और जबरदस्त खबर। अब आप कहेंगे रश्मि वो क्या है, तो वो ये है कि हम आप सबकी जो फेवरेट है, इवन मेरी भी बहुत फेवरेट है, बहुत प्यारी, बहुत स्वीट और बहुत ही खूबसूरत है रश्मिका मंदाना। और ख़ास बात अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ, इनकी जो इनकी जो छः फेमस पॉपुलर फिल्म्स हैं ना, वो अब OTT पर उपलब्ध हैं। और आपने यदि अभी तक नहीं देखी है ना, और आपको लगता है कि भाई पता नहीं ये सारी साउथ की एक्ट्रेसेस अब क्यों बॉलीवुड में आने लगी हैं, तो भाई प्लीज़ ये फिल्म्स देखने जाइए, देखिए ज़रूर OTT पर किसी ना किसी तरीके से, जब भी आपको टाइम मिले, यदि आपका थोड़ा सा भी मन करे तो ज़रूर आप देखिए। और तब आपको पता चलेगा कि एक्ट्रेस एक्ट्रेस होती है, वेदर शी इज़ फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, वेदर शी इज़ फ्रॉम हॉलीवुड इंडस्ट्री, और अपनी बॉलीवुड की तो है ही है। यदि हम फिल्मों की बात करें तो वो कौन कौन सी फिल्म्स हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूं कि एनिमल, पुष्पा द राइज यानी कि पहली वाली पुष्पा, साथ में सीता रामन, डियर कॉमरेड, वारिसु और मिशन मजनू, ये छह फिल्म्स आप देख सकते हैं OTT पर। और खास बात ये है कि आपकी हिंदी में भी ये उपलब्ध है, आपकी अपनी जो भाषा है हमारी हिंदी उसमें भी उपलब्ध है, पर आप आराम से वहाँ पे जाएं और जब भी आपको टाइम मिले अपने फ्लेक्सिबल टाइम्स के हिसाब से आप देख सकते हैं इसे OTT पर। और फिर आप हमें बताइएगा कि भाई आपको वाकई में रश्मिका मंदाना अच्छी लगी या नहीं लगी, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है आपका जवाब होगा हाँ भाई हाँ, हमें बहुत अच्छी लगी। और अब जल्दी से ये बता दीजिए कि आपने अभी तक हमारे बॉलीवुड सरताज क्वेश्चन का सही जवाब भेजा है या नहीं। नहीं भेजा है तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आज का हमारा सवाल ये है कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें सनी देओल ने एडवोकेट का किरदार निभाया है, टिल नाउ अभी तक कौन सी ऐसी फिल्म है और जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था।

जी हाँ, और अब वक्त आ गया है ये बताने का कि आज के हमारे बॉलीवुड सरताज कौन बने हैं। तो भाई आज के हमारे बॉलीवुड सरताज हमारे सारे लिसनर्स बने हैं, और ख़ास तौर पे वो दो लोग जिन्होंने ना क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे दिया था। जी हाँ, वो बिल्कुल समझ गए थे कि मैंने उस फिल्म का नाम उस टाइम क्यों नहीं बताया था, और उन्होंने तुरंत उसका नाम लिखकर भेज दिया था। शायद वो ये बात बिल्कुल समझ गए थे कि आज मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली हूँ। तो ये है मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम, जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से इन्होंने लिखकर भेजा है। और साथ में हमारे एक और लिसनर हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम शायद कहीं खो गया है, इनका नाम खो गया है भाई। इन्होंने वो आई थिंक उन्होंने दोबारा मैसेज ज़रूर लिखा होगा, इसीलिए उनका नाम कहीं और चला गया। इसके अलावा बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनके सही जवाब आए हैं। सबसे पहले हैं सलीम मलिक मेरठ यूपी से, रोहित श्रीवास्तव ने दिल्ली से लिखा है, प्रवीण चौहान है खरगोन मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सही जवाब है। और जवाब है फिल्म दामिनी, जिसके लिए सनी देओल को मिला था नेशनल

नाम लिखकर भेजा है एकता नरूला ने पंचकुला से, बसंत उमर ने मेरठ से, दानिश ने खतौली से, और भी हमारे बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आसिफ सैफी मेरठ से, अर्चना राजपाल मुखर्जी नगर दिल्ली से, इमरान बिहार भागलपुर से, और बहुत सारे लिसनर्स हैं दोस्तों। आप सबका नाम लेना थोड़ा सा आज मुश्किल हो रहा है क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा बचा है, लेकिन आपको बता दूं कि 1 बजे आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी रेनबो हेल्पलाइन में, और कोशिश करूंगी कि तब आप सभी के मैसेजेस मैं ज़रूर ले सकूँ। लेकिन आज का प्रोग्राम होगा बहुत खास, रहेगा हमारे साथ उस प्रोग्राम में भी, यदि आप चाहते हैं CUET के द्वारा एडमिशन्स लेने दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जाना चाहते हैं, कोई भी सवाल तो आप रहिएगा रेनबो हेल्पलाइन में हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना

0: में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: We are taking a short break for a few messages, but don't go anywhere. There's plenty more music coming your way right here on Akashwani Rainbow 102.6 megahertz on the program Play It Cool.
1: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
6: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
5: क्या ये जांच उपलब्ध है?
7: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
8: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
7: गर्भावस्था में HIV और

0: इसी केंद्र से संपर्क करें।
1: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: And here at Akashwani, we hope all your dreams come true too. Hope you're enjoying today's playlist on the program Play It Cool. We've got more music lined up for you, but first, a short break. Stay with us. There's plenty more coming up after this break.
1: Yaadein ateet se, baatein bas dil se, kyunki aapki yaad aati rahi. Rainbow par raat 9 baje.
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती.
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
7: सुनिए

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी एफएम रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: We are taking another short break. Please stay tuned. And when we return, we will turn the energy up with some fantastic tracks to keep you company through the rest of the afternoon.
1: Mangal bhavan mangal hari drabahu sudarshan.
2: Shri Ram Katha Marmagya Dr. Kumar Vishwas ji ke saath Shri Ram Charitmanas ki bhav ras sangeet yatra संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी

डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन

आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां गणना कर

0: 2027 को सफल बनाए।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी।

Remo with his song Fun.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानी

0: को नमन करता हूं।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से रेनबो हेल्पलाइन लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त RJ रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, अभी चल रहे हैं CUET के एडमिशन्स की तैयारी हो गई है, CUET का रिजल्ट आ चुका है, और साथ साथ बहुत सारे ऐसी क्वेरीज हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के मन में हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BHU में, JNU में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में उन्हें एडमिशन मिल पाए, लेकिन CUET का पेपर देने के बाद भी थोड़ी सी क्वेरीज हैं, थोड़ा डर है, कुछ ऐसे सवाल हैं मन में जिनका जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज रेनबो हेल्पलाइन में हम आए हैं आपके लिए, आपकी इन्हीं क्वेरीज का सॉल्यूशन लेकर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत वर्मा, कॉमर्स डिपार्टमेंट जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज और इवनिंग कॉलेज से हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो डॉक्टर वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, एंड हमारे सारे FM रेनबो के दोस्तों को मेरा नमस्कार। एंड आज CUET और CSSS सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी CUET का रिजल्ट निकल चुका है
1: जी,
2: एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आज
1: जी। तो सर ने जैसा कि बताया कि CUET के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो यदि आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा डाउट है जो आप चाहते हैं कि क्लियर हो जाए, तो आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ इस प्रोग्राम में। और हमारे फोन नंबर्स पर आप डायरेक्ट फोन करके स्टूडियो में आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो हमारे फोन नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1084।

0: जी हाँ बिल्कुल, कुड़ियों का नचने का समय आ गया है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करने का भी वक्त आ गया है, क्योंकि CUET एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं और साथ साथ आ गया है रिजल्ट। और बहुत से हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनकी क्वेरीज का सॉल्यूशन उन्हें मिल जाए। यदि कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत वर्मा, जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग से, वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि CUET 2026 का रिजल्ट जैसे कि आ चुका है, तो अब एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा?
1: कंचन जी, रिजल्ट 23rd को आ चुका है CUET का, और हर यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने वेबसाइट्स हैं जो कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम्स के डेट नोटिफाई करते हैं। एट प्रेजेंट अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS सिस्टम है वो ओपन हो चुका है बच्चों के लिए, और दे नीड टू रजिस्टर ऑन दैट। ये पूरा प्रोसेस है जो एक तीन फेजों में चलता है, जो कि फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 के नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट फेज होता है वो बेसिकली अप्लाई करना होता है DU के। अभी बेसिकली हम लोग आज DU पे बात करेंगे,
0: जी
1: और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी यदि बच्चे कोई क्वेरी लेकर के आते हैं तो उन पे भी हम बात कर सकते हैं।
0: ओके
1: सो DU का फेज 1 स्टार्ट हो चुका है, जो कि अप्लाई करना है बच्चों को, रजिस्टर करना है। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट्स पे जाकर के www.admission.eod.ac.in पे जाना है, जहाँ पे उनको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा।
0: जी
1: जब वो न्यू लिंक को क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली CUET का जो उनका एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है एंड मोबाइल नंबर है, वो चीज़ उनसे मांगा जाएगा, और उस मोबाइल नंबर या ईमेल पे उनके OTP आएंगे जिसके थ्रू उनको वेरीफाई करना है। एंड आफ्टर दैट वेरीफिकेशन उनके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस होंगे जो इंटीग्रेट हो जाते हैं अपने आप से, जैसे डेट ऑफ बर्थ है या फिर नेम है, कैटेगरी है।

0: जी
1: कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस है जो ऑलरेडी उनके सीयूईटी के एप्लीकेशन से, डीयू के रजिस्ट्रेशन से इंटीग्रेट हो जाएगा डाटा,
0: जी
1: और वो डाटा है जो चेंज नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद फिर है जो हमारा तो उसमें फेज वन में बहुत सारे एप्लीकेशंस के कॉलम्स है जो कि उनको फिलअप करना है, लाइक पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, एकेडमिक्स के डिटेल्स डालने हैं, कोटाज यदि उनका कोई है, स्पोर्ट्स कोटा है, कैटेगरी का कोटा है,
0: जी
1: ईसीए का कोटा है, या फिर कोई और भी कोटा है, बहुत सारे कोटाज हैं जो कि ऑलरेडी बच्चे यदि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ड्यू का देखेंगे तो उनमें उनको मिल जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग है जो उनको वो सारा अपलोड करना होता है, और अपलोड करने के बाद है जो बेसिकली फिर वो थर्ड फेज में, फेज टू में उनको एक और चीज होगा जो कि प्रेफरेंस उनको प्रोग्राम एंड कॉलेज का करना होगा, जो कि बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, और एक गलती से फिर वो उन बहुत लाइफ में रिपेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे खास करके जब कॉलेज प्रेफरेंस या कोर्स प्रेफरेंस चूज कर रहे हो तो बहुत केयरफुली करें,
0: जी
1: और
0: जी
1: लोगों से कंसल्ट करके करें, अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, या
0: जी
1: जो भी उनको लगता है उनके थ्रू वो कंसल्ट करें, और उसके थ्रू ही वो प्रेफरेंस करें। एंड लास्ट में है जो एलोकेशन प्रोसेस होती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तरफ से होता है, और फिर वो एडमिशन प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाता है। सो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लेंगे उसके अकॉर्डिंगली वी विल बी डिस्कशिंग।
0: जी तो हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता दूं, और जो अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए भी बता दूं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सीयूईटी, सीयूईटी 2026 जिसका रिजल्ट आ चुका है। यदि आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है, एडमिशन से जुड़ा हुआ, सीट एलोकेशन से जुड़ा हुआ, या कॉलेज सेलेक्शन से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रजनीकांत वर्मा, जो आपको सीयूईटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप स्टूडियो में हमें फोन कर सकते हैं 011-2342-1080 और 2342-1084।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं CUET एडमिशंस 2026 की काउंसलिंग, सीट एलोकेशन एंड कॉलेज सिलेक्शन की। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रजनीकांत वर्मा, कॉमर्स डिपार्टमेंट, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली। तो सर, अगला मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या CUET का रिजल्ट आने के बाद सीधे एडमिशंस मिल जाते हैं या उसके बाद भी कई स्टेप होते हैं प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए?
1: बहुत बढ़िया क्वेश्चन रेज किया आपने रश्मि जी। बेसिकली CUET जो 2026 का एंट्रेंस है
0: जी,
1: वो किसी भी बच्चे को एडमिशन सिक्योर्ड नहीं करता है। दे हैव ओनली अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। किसी भी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेने के लिए उस यूनिवर्सिटीज में उनको प्रॉपरली रजिस्टर करना होगा, अप्लाई करना होगा, एंड देन ओनली दे कैन गेट द एडमिशन।
0: ओके।
1: और यदि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमारे पास 76 कोर्सेस हैं
0: जी,
1: और ऑलमोस्ट 100 BA के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के कोर्सेस हैं और 67 एफिलिएटेड कॉलेज हैं और 71,600 सीट्स हैं ऑल ओवर DU अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पे
0: जी।
1: तो बच्चों को सबसे पहले तो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट्स पे जाकर के उनको रजिस्टर करना है और उसके बाद उनको पूरा प्रोसेस अप्लाई करना है, देन ओनली दे कैन गेट द एडमिशन। बच्चे बहुत सारे पैनिक्ड होते हैं कि हमारे स्कोर्स लो हैं, पता नहीं हमें एडमिशन्स नहीं मिलेगा या मिलेगा, बट रेस्ट एश्योर्ड कि एडमिशन्स यदि बहुत अच्छे नहीं भी हैं मार्क्स आपके, तो हो सकता है कि आपको चॉइस के कॉलेजेस नहीं मिले, चॉइस के कोर्सेज ना मिले, बट एडमिशंस कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है हमारे स्टूडेंट्स को
0: जी। सर, एक सवाल मुझ तक पहुंचा है, इन्होंने बोला है कि कई स्टूडेंट्स का री इवेल्युएशन का रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे में वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या भरें?
1: उनको वेट करना है, अभी तो एडमिशन प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, उन्होंने अभी तक उन्होंने क्लोजिंग का भी डेट नहीं डाला है
0: जी।
1: और इवन बच्चे जो कंपार्टमेंट्स वाले होते हैं उनके भी रिजल्ट्स बहुत बाद में आते हैं, उसमें भी वो मिड टर्म मिड एडमिशन का एक प्रोसेस है।
0: okay.
1: तो उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आई थिंक टाइम टू टाइम कितने बार यूनिवर्सिटी अपडेट देती है अपने वेबसाइट पे, उसको देखते रहें और यदि वहाँ से जैसे ही उनका लिंक ओपन होता है या कोई ऐसी नोटिफिकेशन आता है तो वो बाद में है जो उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको प्रॉपर अपडेट कर सकते हैं अपने 12th के मार्कशीट को
0: जी। सर, ये है पैंथर तोमर, किशनगंज दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा था। इनका एक सवाल और भी है, ये जानना चाहते हैं कि DU ने क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स मांगे हैं, अगर सिर्फ

0: चीट है तो क्या करें?
1: मार्कशीट ही बेसिकली उनको अपलोड करना है। बच्चे जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो उसमें एकेडमिक्स में जब जाएंगे तो उनको 10th एंड 12th के डिटेल्स उनको अपलोड करने हैं, लाइक स्कूल नेम्स प्राइवेट है या किस टाइप्स के स्कूल्स हैं, लोकेशंस क्या हैं, स्कूल्स का नेम क्या है, और साथ में उसमें सब्जेक्ट के ऑप्शंस होते हैं, वो सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5। तो जो भी बच्चा अपियर हुआ है क्लास 12th में उसके मार्कशीट अभी उनको अपलोड करने हैं, एंड दे शुड कीप द डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्कैन कॉपी रेडी, क्योंकि उनको उसको अपलोड करना है। तो आई थिंक उससे काम हो जाएगा, मार्कशीट ही चाहिए, और डिजी लॉकर से भी वो एक्सेस हो जाते हैं जब वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाता है। तो
0: सर, हमारे पहले कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, इनका एक सवाल है, जानते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो
2: हाँ नमस्कार मैम।
0: जी पूछिए, आपका सवाल
2: हाँ
0: पूछिए और अपना नाम बताइए
2: मैंने
0: पहले।
2: हाँ सक्षम शर्मा बोल रहा हूँ
0: जी। सक्षम जी बताइए, कहाँ से आप फोन कर रहे हैं हमें?
2: मैं खेकड़ा बागपत से बोल रहा हूँ
0: जी,
2: डिस्ट्रिक्ट बाग
0: बताइए
2: यूपी से।
0: जी जी
2: हाँ मैम, मैंने जो है 12th पास की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस और योगा के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट।
0: जी
2: तो मैं जो है मैथ सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहा हूँ, तो थर्ड थर्ड सब्जेक्ट में मैं कोई मानविकी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ले सकता हूँ क्या?
0: जी सर,
1: सक्षम जी आप ले सकते हैं। बेसिकली जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें एक लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको अपेयर होना होता है, तो आई होप कि आपने CUET में अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में जरूर अपेयर हुए होंगे, क्योंकि उनके मार्क्स के बेसिस पे ही आप अप्लाई कर सकते हो DU में यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो। और
2: मार्क
1: जो
2: तो CUET अप्लाई करते टाइम तो केवल जो 12th के सब्जेक्ट थे वही मांगे थे, और कोई सब्जेक्ट उन्होंने नहीं मांगा।
1: हाँ वही कह रहा हूँ, आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में ही अपेयर होना था, बट आप दूसरे कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। आप उसको अप्लाई कर दीजिए, जब अभी कोर्सेज चॉइस के लिए और कॉलेज चॉइस के लिए प्रेफरेंस मांगा जाएगा उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, और DU का यदि एल्गोरिथम परमिट करता है और उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग कोई कॉलेज आपको एलोकेट होता है तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके ईमेल पर।
2: जैसे सर NET 23 में बोला था कि भाई आप कोई भी सब्जेक्ट इधर उधर का कोई भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में ये बात पूछ रहा था आपने।
1: हाँ मैंने यही कहा कि आपने जो कह रहे हो कि फिजिक्स कंप्यूटर साइंस मैथ्स का दिया, तो पेपर आपने वही दे रखा है, उसमें जो आपके स्कोर्स आए होंगे CUET का वो उसको आपको पूरा अपलोड करना है सारा, और उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे कोर्सेज को भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट आप चॉइस जब फिलअप करेंगे तो कोर्सेज और कॉलेज का, तो उसमें आपको कोर्स चॉइस में वो सारे सब्जेक्ट्स देने हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप फुलफिल करते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यदि आप वो फुलफिल करते हैं तो आपको DU एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपके वो उसमें सीट एलोकेशन आ जाएगा।
0: जी
2: मतलब मैं DU में
0: तो आई थिंक सक्षम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा सर, अगला मेरा जो सवाल है मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ये सीट एलोकेशन होता है ये किस तरह से होता है और किन फैक्टर्स के आधार पर किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज और कोर्स अलॉट होता है?
1: सीट एलोकेशन रश्मि जी एक एल्गोरिथम के थ्रू होता है। सबसे पहले तो बच्चे अपने कोर्स को चूज करेंगे एंड कॉलेज को चूज करेंगे, उसमें बच्चों को एक मैं समझदारी की बात ये करूँगा कि यदि आपके बहुत अच्छे CUET में मार्क्स हैं तो आप लिमिटेड प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट यदि आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं है तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम प्रेफरेंसेस इवन 200 तक भी देना पड़े तो दे दें।
0: ओके,
1: क्योंकि एडमिशन तभी सिक्योर्ड हो सकता है जब आपने प्रेफरेंस फिलअप किया, यदि आपने प्रेफरेंस नहीं दिया है तो उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा।
0: जी,
1: दूसरी चीज की जब आप प्रेफरेंस भरते हैं तो दो फैक्टर्स है, एक तो कॉलेज का है और एक कोर्स का है।
0: जी,
1: तो बच्चों को बहुत क्लियर होने की जरूरत है कि बच्चा कोर्स के प्रेफरेंस पे जाना चाहता है या कॉलेज, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सारे वो भी होते हैं कि नहीं मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: तो यदि ऐसा है तो उनको उस कॉलेज को देखना है और उस कॉलेज में जितने भी कोर्सेस हैं और उसमें वो इंटरेस्टेड है
0: जी,
1: तो उस कॉलेज के उस सारे कोर्सेस को रैंकिंग डाले।
0: हाँ,
1: वैसे ही सेकंड कॉलेज थर्ड कॉलेज कॉलेज का प्रेफरेंस है, सपोज करो उन्होंने हिंदू से शुरू किया, हंसराज से शुरू किया, KMC, तो उनमें जितने कोर्सेस हैं उसको वो प्रेफरेंसेस में डाल दें। यदि बच्चा कोर्स के लिए बहुत फंसी है कि नहीं मुझे तो यही कोर्स करना है, कॉलेज मेरे को मैटर नहीं करता है, तो वो फिर वो कोर्स देखे कि उस कोर्स में सबसे बेस्ट कॉलेज क्या है और उस कॉलेज के अकॉर्डिंग कर ले, और दोनों चीजें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि या तो कोर्स पे जाए

0: या कॉलेज पे जाए,
1: जी
0: कोर्स पे जाता है तो एक कोर्स से सपोज करो उसने बी कॉम ऑनर्स लिया, तो बी कॉम ऑनर्स के अकॉर्डिंग वो कॉलेज को रैंकिंग देना शुरू करते हैं।
1: जी जी जी
0: दूसरे कोर्स में सपोज उसने बी कॉम किया तो उसकी रैंकिंग अलग होगी, क्योंकि हर कॉलेज में बी कॉम नहीं है। वैसे ही यदि कॉलेज है तो मान लीजिए उसने हंसराज ऑप्ट किया, तो हंसराज को ऑप्ट करने के बाद वहां के वो सारे कोर्सेज को रैंक करे।
1: जी
0: तो ये दोनों चीजें ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू है। अब उसमें बच्चा डिसाइड कर ले कि वो कोर्स के बेसिस पे जाना चाहता प्रेफरेंस में या फिर कॉलेज के बेसिस पे, और ये चॉइस वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो इसमें बहुत ज्यादा हम सजेस्ट नहीं कर सकते हैं।
1: जी, जी.
0: कितनी बार बच्चे के लोकेशंस का इश्यूज होता है, आउटसाइडर्स होते हैं, कितनी बार इंटरेस्ट का इश्यूज होता है, सो बहुत सारे फैक्टर्स है, एक कोई सिंगल फैक्टर्स नहीं है
1: जी.
0: जिसके बेसिस पे प्रेफरेंसेस ऑप्ट किए जा सकते हैं।
1: जी.
0: और कोई भी प्रेफरेंस कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती है कि सो एंड सो ने ये किया है तो सेम ऑप्शन है जो आप ऑप्ट कर लें प्रेफरेंस में, तो ये चीजें वैरी करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट।
1: तो जैसे कि सर ने बताया कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने मनपसंद कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है, लेकिन यदि आप पर्टिकुलर कोर्स लेके चलना चाहते हैं कि आपको ये स्पेसिफिक कोर्स ही करना है, तो मुझे लगता है आपको कॉलेज साइड में रखना चाहिए और आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस फिलिंग करनी चाहिए। आगे इस बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन सर अभी थोड़ा सा एक समय आया है कमर्शियल ब्रेक का, तो ब्रेक लेते हैं, गाना सुनते हैं और वापस आते हैं हमारे प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रोग्राम में, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें स्टूडियो में डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2342-1080 और 2342-1084। दिल्ली से बाहर के जो लोग हैं वो यदि हमें कॉल करना चाहें तो 011 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं, इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।

0: जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, सीयूईटी ने भी आपके पूरे पर खोलने का मौका आपको दिया है और चाहा है कि जितनी भी प्रेफरेंसेस आप भर सकते हैं, जितने भी कोर्स, जितने भी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कोर्स में लेना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शन उन्होंने दी है। और इसीलिए सीयूईटी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर रजनीकांत वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली इवनिंग से। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं, लेकिन यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं और आपकी कोई क्वेरी है सीयूईटी से जुड़ी हुई, तो आप हमारे साथ डायरेक्ट स्टूडियो में जुड़ सकते हैं हमारे फोन नंबर्स के द्वारा। यदि आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या जो केवल सीयूईटी स्कोर होता है वही मायने रखता है, या कैटेगरी प्रेफरेंस या सीट उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है?
1: रश्मि जी, सीयूईटी का मार्क्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड एट प्रेजेंट दैट इज ओनली फैक्टर जो कि एडमिशंस में आपको हेल्प करता है।
0: जी,
1: आप सीयूईटी में यदि अपेयर नहीं हुए तो यू कैन नॉट टेक द एडमिशन। सो सीयूईटी का मार्क्स बहुत ही मायने रखता है और सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको कोई भी कॉलेज एलोकेट किया जाएगा।
0: जी,
1: और उसका जो क्राइटेरिया होगा वो होगा बच्चों के अपने कोर्स प्रेफरेंस एंड कॉलेज प्रेफरेंस के बेसिस
0: जी।
1: पे।
0: क्या इसमें जो 12th क्लास का जो रिजल्ट आता है, बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट, उसको भी कोई मान्यता होती है क्या? मतलब वो भी प्रेफरेंस में लिस्ट में होता है कुछ?
1: एट प्रेजेंट क्लास 12th के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है, उसके कारण आप देखेंगे कि बच्चे आजकल सीयूईटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। इवन 12th के साथ ही वो सीयूईटी के प्रिपरेशन भी शुरू कर देते हैं।
0: जी जी,
1: क्योंकि उनको पता है कि यदि उनको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो उनका सीयूईटी का ही मार्क्स केवल मायने रखता है, ना कि 12th क्लास के मार्क्स को।
0: अगर किसी छात्र को किसी मतलब पहली लिस्ट में सीट नहीं मिलती तो वो थोड़ा सा मतलब डिसहार्टेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिसे पहली लिस्ट में चांस नहीं मिला है?
1: रश्मि जी, सीट्स तो बहुत सारे हैं, आपको जैसा मैंने बताया कि 71,600 सीट्स हैं।
0: जी हाँ,
1: सवाल केवल ये है कि क्या आपके अपने पसंद का कोर्स और कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में आपको एडमिशन्स मिलेगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं और उनके मार्क्स यदि बहुत अच्छे हैं तो दे हैव फेयर चांसेस टू गेट द एडमिशन इन द वेरी फर्स्ट लिस्ट। बट यदि आपके सीयूईटी का स्कोर काफी कम है तो आपको शायद फर्स्ट लिस्ट में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स चॉइस किया है।
0: जी जी जी,
1: आप कोई ऐसे कोर्स जैसे हिंदी में ले लें, संस्कृत में ले लें, तो हो सकता है कि आपको लोअर स्कोर पे भी फर्स्ट कटअप में मार्क्स एडमिशन मिल
0: जी,
1: जाएगा
0: जी, जी।
1: बट बहुत अच्छे कोर्सेस लाइक आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, इको में जाना चाहते हैं, इंग्लिश में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस टफ हो जाता है कि फर्स्ट कटअप में मिल जाए। मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि वो होपफुल ना, होपलेस ना हो कि उनको फर्स्ट कटअप में नहीं मिला। दे शुड वेट टिल द लास्ट राउंड, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकेंड आता है, कितनी बार थर्ड भी आता है, और बाद में एक मिड एग्जाम, मिड एडमिशन भी होते हैं, उसके बाद भी मॉपअप राउंड भी चलता है यूनिवर्सिटी का।
0: ओके,
1: तो मॉपअप राउंड तो

0: लास्ट ईयर जहां तक मुझे याद है अक्टूबर नवंबर तक चला
1: जी,
0: तो आप उस केस में केवल ये होगा कि आपके कोर्सेज छूट जाएंगे, उस कॉलेज में आपके एडमिशन होती भी है तो बहुत सारे कोर्स कवर हो चुके हैं, बट हो सकता है कि आपको कोई बेटर कॉलेज मॉप अप राउंड में भी मिल जाए, तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, देर इज ए चांसेस कि आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा।
1: जी सर, जो एक एक्सेप्ट, अपग्रेड और फ्रीज ऑप्शन होती है, ये क्या होती है, थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे।
0: बच्चे जब प्रेफरेंस फिलअप करते हैं कोर्सेज एंड कॉलेज का, और जब सीट एलोकेशन शुरू होता है, तो DU के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो जहां भी फॉल करते हैं उनको कॉलेज एलोकेट कर दिया जाता है। बच्चों के पास वो ऑप्शन होता है कि कोर्स को वो एक्सेप्ट कर लें, फ्रीज कर लें या अपग्रेड कर दें।
1: जी,
0: फ्रीज करने का मतलब है कि दे डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ द अपग्रेडेशन, वो जिस कॉलेज में है दे आर हैप्पी। मान लीजिए किसी ने हंसराज में एडमिशन लिया और कह रहे कि मैं हंसराज से मुझे किसी और कॉलेज में नहीं जाना, तो दे कैन फ्रीज दैट एडमिशन कि मुझे और ना तो अप जाना है SRCC, ना मुझे डाउन में जाना है या लोअर प्रेफरेंस पे जाना है। प्रोसेस हमेशा अपग्रेडेशन का है, तो एक फ्रीज तो ये हो गया कि आपने अपना एडमिशन फिक्स कर दिया,
1: ठीक है, यही कर दिया।
0: दूसरा प्रोसेस है अपग्रेड का, लाइक यू आर नॉट हैप्पी विद योर द चॉइस विच द DU हैज ऑफर्ड यू, या कोर्स आपको, दोनों चीज हो सकता है, कोर्स आपको पसंद नहीं आया, कॉलेज पसंद नहीं आया, उस केस में आप उसको अपग्रेड करेंगे, और अपग्रेड करने पे आपका जो नेक्स्ट कट ऑफ आएगा तो उसमें आपका जो चॉइस में बेटर कॉलेज होगा, यदि वो आ रहा होगा तो आपको बेटर कॉलेज या बेटर कोर्स आपको मिल जाएगा। दिस इज व्हाट अपग्रेडेशन, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा।
1: ओके सर, एक जी बताइए, आप बताइए सर।
0: हाँ, तो एक अपग्रेड का ऑप्शन है, एक फ्रीज का ऑप्शन है, दूसरा कितनी बार विड्रॉल्स का भी ऑप्शन है। बच्चा यदि विड्रॉ करना चाहता है पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम से तो वो वहां से भी पूरी एडमिशंस विड्रॉ कर सकता है।
1: सर, एक सवाल आया है, पूछना चाह रहे हैं कि क्या फॉर्म एक बार भरे जाने के बाद सुधार का मौका मिलेगा?
0: इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा रश्मि जी कि बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं उसके वेबसाइट्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, क्योंकि कितनी बार यूनिवर्सिटी, बहुत ऐसे बार डिसीजंस चेंज होते हैं और उस केस में अपग्रेडेशंस का अपडेट करने का ऑप्शंस देते हैं। तो एक तो नॉर्मल प्रोसेस है कि एक बार आपको मिलता है अपग्रेड करने का, बट सारे इन्फॉर्मेशन आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे नहीं कर सकते हैं, बट कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप लाइक जो चॉइस ऑफ कॉलेजेज है या कोर्सेज है उसके लिए कितनी बार अपडेट्स का ऑप्शन आता है, और उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि यूनिवर्सिटी की साइट्स रेगुलर चेक करते रहें टाइम टू टाइम।
1: सर, एक सवाल हम तक पहुंचा है मानसी मान्या का, ये पूछ रहे हैं कि कौन से सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं जो हमें अपलोड करने होंगे, प्लीज इसके बारे में भी बताइए, और साथ साथ ECA कोटा क्या होता है वो भी बताएं।
0: डॉक्यूमेंट्स अपलोड का एक सेक्शन है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एकेडमिक सेक्शन में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और बेसिक पर्सनल में भी आपको अपलोड करने, सबसे पहले तो आपको अपना एक फोटोग्राफ्स रखना है, स्कैन कॉपी, एक सिग्नेचर रखना है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करना है उसके भी आपको स्कैन कॉपी रखनी है, 12th क्लास के सर्टिफिकेट्स की पूरी स्कैन कॉपी रखनी है। बच्चों को मैं एक सजेशन देगा कि मोबाइल से स्कैनिंग ना करें, प्रॉपर स्कैनर यूज करें, प्रॉपर डेस्कटॉप यूज करें। कितनी बार क्या होता है कि बच्चे के मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है कैमरे की, और उन्होंने अपलोड कर दिया एंड दैट इज नॉट विजुअल, कि जब वो आपके एडमिशन प्रोसेस में जाता है तो कॉलेज को समझ में ही नहीं आता है कि क्या अपलोडेड है।
1: जी जी,
0: उस केस में फिर क्वेरी क्रिएट हो जाती है, फिर से हमें सर्टिफिकेट्स मंगवाने पड़ते हैं, तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि चाहिए। और बच्चा यदि EWS का है या OBC NCL का है तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स भी उनके पास होना चाहिए, या कोई भी कोटा उनके पास है वो सारे सर्टिफिकेट उनको स्कैन कॉपी रेडी रखने हैं, क्योंकि ये स्कैन कॉपी अपलोड होना है। एक चीज ओबीसी और EWS के लिए बहुत जरूरी है कि 1 अप्रैल 2026 का बना हुआ होना चाहिए OBC NCL EWS,
1: क्योंकि उसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को जाननी बहुत जरूरी है। सर, एक बार डेट फिर से बता दीजिए, कब का सर्टिफिकेट ये बना होना चाहिए?
0: बेसिकली 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको वो सर्टिफिकेट्स वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज जो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, यदि बच्चा कोई पहले का बना रखा है और उसके बेसिस पे यदि अंडरटेकिंग के लिए भी टाइम मांगेगा तो यूनिवर्सिटी अब अंडरटेकिंग नहीं एक्सेप्ट करती है। तो बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी भी आप अप्लाई कर

0: दीजिए, यदि नहीं किया है तो हो सकता है 10 दिन में आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट रेडी रहे या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रेडी रहे।
1: जी
0: आई थिंक एक क्वेश्चन आपने और भी शायद किया था लास्ट लाइन।
1: जी सर, वो ये पूछना चाहते थे कि ईसीए कोटा क्या
0: यस,
1: होता है।
0: ईसीए कोटा,
1: जी
0: ये बेसिकली लास्ट 3 इयर्स का सर्टिफिकेट्स है जो वैलिड होता है। तो अप्रैल से लेकर के मार्च से लेके अप्रैल 2026 का, अप्रैल 2023 टू दिस मार्च मार्च 2023 टू
1: 26
0: अप्रैल 2026 तक की सर्टिफिकेट्स ही है जो केवल वैलिड है। एक्स्ट्रा कोकरिकुलर में बच्चे जो भी सर्टिफिकेट्स है उसकी भी वो सर्टिफिकेट्स है जो रेडी रखें। जनरली 5 सर्टिफिकेट्स जो बेस्ट सर्टिफिकेट्स है दे कैन अपलोड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट।
1: ओके, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स।
0: स्पोर्ट्स के भी पीरियड सेम है बट उनके सर्टिफिकेट्स केवल 3 वैलिड हैं,
1: ओके तो सर
0: ईसीए में
1: अब
0: शायद फाइव
1: जी
0: है।
1: ओके तो आई थिंक मानसी आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। और इसके बारे में हम सीयूईटी के बारे में और भी बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। यदि आपके पास भी कोई क्वेरी है, आप हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर रजनीकांत वर्मा से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। 0112342108 हमारा नंबर है और दूसरा नंबर है 0112342108। और यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आपके साथ में हूं मैं आपकी अपनी दोस्त आरजे रश्मि. और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट प्रोफेसर रजनीकांत वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जो सीट मिलती है जब किसी भी स्टूडेंट को, तो वो कितने टाइम में उसका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है और कितने दिनों तक उसके पास ऑप्शन होती है कि वो फीस जमा करा सकता है?
1: रश्मि जी, जैसे ही यूनिवर्सिटी अपनी फर्स्ट कटअप निकालती है और उनको सीट एलोकेट करती है, तो इन जनरल 3 डेज का उनको टाइम देता है जिसमें सारा प्रोसेस उनको कंप्लीट करना होता है. बच्चे

0: जैसे अलॉटमेंट होती है, बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी सीट को, या फिर फ्रीज कर देते हैं, या जो भी करते हैं, तो वो
1: जी
0: यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रोसेस है जो कॉलेज का है उनका नहीं है। तो बेसिकली वो बहुत पैनिक होते हैं कि हमारा एडमिशन्स का एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आया, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आया। एक्चुअली वहाँ मल्टीपल लेयर्स हैं, 4-5 लेयर्स होते हैं जिसके थ्रू है जो उनकी सीट एक्सेप्ट की जाती है थ्रू द कॉलेज। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है,
1: जी
0: तो बच्चे पैनिक ना हो कि उन्होंने यदि फर्स्ट डे किया तो फर्स्ट डे जो उनको अप्रूवल आ जाए, हो सकता है कि वो सेकेंड डे आ जाए, थर्ड डे भी आ जाए। तो उनको एक तो अपनी क्वेरी सेक्शंस देखते रहनी है कि ये कोई क्वेरी कॉलेज ने रेज तो नहीं कर दिया है, और
1: जी
0: रेज कर दिया तो इमेडिएट उस डॉक्यूमेंट्स को उनको अपलोड करना है, प्रोवाइड करना है।
1: ओके
0: और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है थ्रू प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, जैसे ही अप्रूवल होती है उनको फीस पेमेंट की लिंक मिल जाती है,
1: जी जी
0: और बच्चों को इमेडिएट फीस पेमेंट करने की जरूरत होती है।
1: जी
0: कितनी बार बच्चे जो फीस है टाइमली नहीं पे कर पाते हैं जिसके कारण उनका एडमिशन्स कैंसिल हो जाता है, और कितनी बार यूनिवर्सिटी की भी मान लीजिए टेक्निकल ग्लिच है कोई,
1: जी
0: तो उस केस में जो थोड़ा सा टाइम पीरियड भी बढ़ता है, कितनी बार बढ़ाया जाता है, 4 आवर्स 5 आवर्स, इस तरीके से टाइम पीरियड भी फीस के लिए बढ़ जाते हैं। तो उनको हमेशा यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस चेक करते रहने हैं। जैसे ही यूनिवर्सिटी का वो फीस पे करते हैं उनकी एडमिशंस कंफर्म हो जाती है, बट वो एडमिशंस भी प्रोविजनल होती है क्योंकि बाद में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस फिर से होते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशंस, और उसमें यदि कोई भी फ्लॉ पाई जाती है तो उनके एडमिशंस है जो कैंसिल हो जाते हैं। सो जनरली ये 3 डेज का प्रोसेस है जिसमें उनकी सीट भी एलोकेट हो जाती है, एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, एडमिशन प्रोसेस में उनकी फीस भी जमा हो जाती है, और यदि सब कुछ सही है तो आप मान के चलिए कि उनकी एडमिशंस है जो कन्फर्म हो जाती है।
1: जी सर, एक सवाल आया है, ऋषिका लिख रही हैं, इन्हों इनका कहना है इनके 466.7 मार्क्स है फॉर 5 सब्जेक्ट में, तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या इन्हें CUSB कोर्स CUSB में एडमिशन मिल सकता है, BSc बायोटेक ही करना चाहती हैं और ये OBC NCL कैंडिडेट हैं।
0: ऋषिका, मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि सोशल नेटवर्क साइट पे बहुत सारे ऐप्स हैं या पब्लिसिटी होते रहते हैं, आप उनमें प्रिडिक्टर्स की एक ऑप्शंस होते हैं,
1: जी
0: तो आप उनके प्रिडिक्टर्स में अपने एप्लीकेशंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और जो भी कोर्स ऑप्शन आपने प्रेफरेंसेस मांगा है उसको भर दीजिए, और जो आपके स्कोर हैं CUSB के उसको डाल के देख लीजिए। उससे आपको प्रोबेबल जो कोर्सेस हैं वो अवेलेबल है या नहीं है वो आपको वहाँ से पता लग जाए पाएगा। मैं DU पे तो कमेंट कर सकता हूँ, शायद CUSB के बारे में बहुत ज़्यादा आपको कमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट या सजेस्ट करूँगा कि आप प्रेडिक्टर्स देखें सोशल नेटवर्क साइट पे और वहाँ से आइडिया लें, या फिर अपने किसी सीनियर से या उस कॉलेज के स्टूडेंट से आइडिया लें कि वहाँ एडमिशन्स आपको ये स्कोर लो है तो थोड़े से चांसेस मुझे कम लगता है कि मिलेगा, बट होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आप प्रिडिक्टर्स यूज करें या किसी सीनियर को कंसल्ट करें।
1: जी सर, स्पॉट राउंड क्या होता है और इनमें किन छात्रों को मौका मिलता है?
0: स्पॉट राउंड बेसिकली लास्ट राउंड है जिनके एडमिशंस कहीं नहीं हुए हैं और या फिर कोई विड्रॉ कर लिया है,
1: जी
0: उसमें मॉपअप राउंड में एक लास्ट चॉइस मिलती है, बट इट्स ए रिस्की गेम, क्योंकि आप यदि ये सोच रहे हैं कि मुझे इस कॉलेज में स्पॉट राउंड में मिल जाएगा तो शायद नहीं भी मिलेगा। इट ऑल
1: जी
0: डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्सेज एंड द कॉलेजेज। यदि वो अवेलेबल है वहाँ पे कुछ सीट्स तो फिर शायद मिलने के चांसेस होते हैं, बट रिमेम्बर मॉपअप राउंड में काफ़ी रश होती है और वो एक काइंड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होती है,
1: जी
0: तो वहाँ पे काउंसलिंग होती है और वो यूनिवर्सिटी से ही होता है, तो वहाँ पे आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, टाइमली जाना पड़ेगा, आपको फिजिकली अवेलेबल होना होगा। जैसे बाकी जो कटअप्स हैं उसमें आपका ऑनलाइन प्रोसेस है, बट मॉपअप राउंड में आपको फिजिकली वहां पे अवेलेबल
1: जी
0: होना
1: जी
0: पड़ेगा,
1: जी
0: और मॉपअप एंड स्पॉट राउंड्स में आपके वहां से एडमिशंस मिल जाते हैं। कितनी बार आपको अच्छे कॉलेज भी मिल जाते हैं यदि बाई चांस कोई सीट वहां खाली रह गया तो।
1: जी सर, जिन्हें ऑलरेडी सीट अलॉटेड है, बहुत से स्टूडेंट्स में ये क्वेरी होती है, कंफ्यूजन होती है कि हमें तो सीट ऑलरेडी मिल गई है लेकिन उसके बावजूद हमें स्पॉट राउंड में जाना है, तो क्या उनके लिए कोई बेनिफिशियल है ये स्पॉट राउंड कि उन्हें अपनी मनपसंद सीट के लिए वो फिर से स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं यदि उन्हें ऑलरेडी सीट अलॉट हो चुकी है?
0: रश्मि जी, मैंने अभी आपसे यही बताया, शेयर किया कि स्पॉट राउंड उन बच्चों के लिए है जिनकी एडमिशंस कहीं नहीं है। यदि उनकी
1: जी
0: एडमिशंस ऑलरेडी कंफर्म्ड है सो दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉपअप एंड स्पॉट राउंड। उस, और ये बहुत ही रिस्की गेम है कि आपको कोई कॉलेज चाहिए, कोई

0: कोर्स चाहिए, उसके लिए आप एडमिशन्स ना लें और वेट करते रहे,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: बाई चांस वाली बात है और रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है।
1: जी
0: कितनी बार, एक दो बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे ने अपना एडमिशन्स विड्रॉ कर लिया, कैंसिल करा लिया, बाद में फिर वो मॉप अप राउंड में है जो शायद उसको उससे बेटर कॉलेज मिल गया।
1: जी,
0: बट मैं
1: लेकिन
0: बच्चों
1: मुझे
0: को
1: लगता है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके साथ अपोजिट हो जाता होगा कि वो स्पॉट राउंड में जाने के लिए अपनी सीट विड्रॉ कर देते हैं, बट उन्हें बाद में भी कोई मनपसंद कॉलेज या कोर्स नहीं मिलता।
0: यस, अच्छे कॉलेज अच्छे स्कोर पे मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि स्पॉट राउंड का किसी को वेट करना चाहिए,
1: जी
0: उनको एडमिशन्स ले लेना चाहिए जहां भी है और एडमिशन सिक्योर्ड कर लेना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो यूनिवर्सिटी सबकी सेम है, कॉलेजेस कोई भी हो डिग्री आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिलना है, तो बहुत फंसी होने की जरूरत नहीं है कि मुझे वही कॉलेज चाहिए। हाँ, कोर्स पे यू कैन कम्प्रोमाइज।
1: जी जी सर, एक छोटा सा सवाल मन में और आ रहा है, हालांकि आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बातें ज़्यादा कर रहे हैं इसके, लेकिन इसके साथ साथ जैसे BHU, JNU और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ CUET स्कोर के बेस पर एडमिशन्स लेती हैं, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है एडमिशन्स में? बस एक, चूँकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा, एक छोटा सा डिफरेंस जो स्टूडेंट्स के बीच में क्वेरी है वो मैं जानना चाहती थी।
0: बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो CUET की तरह के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं, बट उनका प्रोसेस है जो डिफरेंट है। DU के प्रोसेस अलग हैं, JNU का प्रोसेस अलग है, जामिया का अलग है।
1: जी,
0: तो बच्चों को उस यूनिवर्सिटी की साइट्स को देखना है। लाइक JNU का जहां तक मुझे पता है वो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं।
1: ओके,
0: बहुत जगह ऐसा होता है, जैसे बिहार का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैंने सुना कि वहां पे सारे बच्चों से पहले फीस ले लिया जाता है और बच्चों को है जो अलॉट कर दिया जाता है, और उसके बाद जो जिन बच्चों को अलॉटमेंट हो जाती है एडमिशन ले लेते हैं उनकी फीस चली जाती है, और फिर वो जिनके नहीं होते उनके फीस रिफंड हो जाते हैं।
1: जी,
0: तो ये कहना मुश्किल है कि सारे यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस एक होगा, तो उनको उस कॉलेज इस यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स को चेक करना होगा और उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। कुछ DU के पैटर्न्स पे चलते हैं और कुछ का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है।
1: जी, तो सर क्योंकि वक्त अब बहुत थोड़ा सा बचा है तो मैं ये चाहूँगी कि आप चलते चलते जो आज हम बात कर रहे हैं CUET काउंसलिंग के बारे में, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि उन्हें उनके मनपसंद कॉलेज में, नहीं तो मनपसंद कोर्स में, एक अच्छी जगह अपने स्कोर के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया कोर्स में उन्हें एडमिशन मिल सके, उसके बारे में क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
0: मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि यदि CUET में आपके लो मार्क्स भी हैं तो आप होपलेस ना हैं, हो सकता है कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में अच्छे कोर्सेज में भी एडमिशन्स मिल सकता है। बच्चे जब चॉइस करें तो एटलीस्ट 20 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें जहां पे उनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती हो और CUET के मार्क्स देखने हैं, और यूनिवर्सिटी का बहुत सारा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड है, प्राइवेट है, स्टेट है, वो सारा उसमें से चूज कर लें, और हर यूनिवर्सिटी का वो लास्ट राउंड तक वेट करें। ऐसा नहीं है कि वो बीच में होपलेस हो जाएं और फिर वो देखना बंद कर दें और उनके चांसेस आ भी गए और निकल भी गए और उनको पता भी ना लगे। और दूसरा कि हर यूनिवर्सिटीज अपने अपने काउंसलिंग प्रोसेस को एडवर्टाइज कर रही होती है, अपनी वेबसाइट पे डाल रही होती या फिर थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया है जो अपडेट्स डाल रहे होते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि उनके काउंसलिंग शेड्यूल्स एंड प्रोसेस को हमेशा चेक करते रहें और उनको सुने। और दूसरा कि यदि किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनके NIRF रैंकिंग्स देखें कि किस टाइप्स की रैंकिंग्स हैं, और हर कॉलेज का एक अपना यूनिक फीचर है। किसी की सोसाइटीज बहुत अच्छी है, किसी का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, तो कॉलेज को उस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर लें। और कुछ चीजें मैं और भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि हर यूनिवर्सिटीज के अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन हैं, उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसको प्रॉपरली है जो चेक करते रहें। जब भी वो फिलअप करें फॉर्म्स को तो डेस्कटॉप और लैपटॉप के थ्रू करें, मोबाइल को यूज ना करें। जब वो पेमेंट्स करें तो वो अपने कार्ड से करें, ना कि किसी साइबर कैफे या किसी और के अकाउंट से करें, क्योंकि यदि आपकी एडमिशन कैंसिल होती है तो पैसा वहीं रिफंड होना
1: है। बिल्कुल, ये बहुत एक जरूरी टिप है स्टूडेंट्स के लिए।
0: उसके अलावा मैं कहूंगा कि जो यूजर ID एंड पासवर्ड आप बनाते हैं या मोबाइल नंबर डालते हैं, कितनी बार हमने ऐसे रिपोर्टिंग देखे हैं कि बच्चे का फॉर्म है जो कोई साइबर कैफे वाले ने फिलअप किया है, उसने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है या मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है, तो वो चीज है जो फिर बहुत ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और उस केस में स्टूडेंट्स बहुत बॉदर होते हैं। OBC सर्टिफिकेट का आपको मैंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज के फी स्ट्रक्चर्स

0: हैं, उन्हें अपने सभी सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। और उम्मीद करती हूँ आज का जो प्रोग्राम है, आज का रेनबो हेल्पलाइन, आपके लिए अच्छा खासा फायदेमंद साबित हो। यदि आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और किसी भी तरह से हमारे लगातार FM रेनबो पे कोई ना कोई प्रोग्राम इस तरह का आता है जो आप CUET से जुड़ा हुआ जरूर मिलेगा आपको अगले कुछ दिनों में। लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम से मुझे लेनी है इजाजत। आज हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली, इवनिंग कॉलेज से। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने हमारे लिसनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इतने इम्पोर्टेंट टिप्स दिए।
1: थैंक यू रश्मि जी, एंड थैंक यू टू द FM रेनबो, एंड थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस।
0: थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम आशियाना के साथ, मैं कंचन। आशियाना जिसमें बात आज होती है महिलाओं की, हमारे होम मेकर की, जो इतने प्यार से घर को सजाती है, संवारती हैं, दुलारती हैं और हमारे घर में आती है उनकी वजह से रौनक। प्रोग्राम आशियाना के साथ मैं कंचन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने बुजुर्गों के साथ स्वस्थ होंगे, अपने बच्चों के साथ गर्मी छुट्टी के लास्ट फेज का आनंद ले रहे होंगे और दिल से जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ।

जो हमारे आशियाने को संवारती हैं, सबका इतना अधिक ख्याल रखती हैं, हमारी माँ, हमारी चाची, हमारी बहन, हमारी होम मेकर, उन्हें भी तो चाहिए सुकून, थोड़ा सा आराम। सबका ध्यान रखते हुए वो अपनी फिक्र ही नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं हो पाता आराम, और सुकून तो चाहिए उन्हें। और जब इस दोपहरी में FM रेनबो उनके साथ है, तो प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनते हुए सुकून तो चाहिए। बिल्कुल, आप जुड़े हैं FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

याद नहीं ना कब फुर्सत मिली थी और कब चैन से सोई थी आप या अपने शौक से जुड़ी। सुबह से देर रात तक वो सिर्फ एक मशीन की तरह काम काम काम, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी शिकन के, और फिर अपना भी ध्यान नहीं रख पाती। याद नहीं कि कब वो चैन से बहुत ही अपने लिए एक कप चाय लेकर खिड़की के बाहर निहारती हुई प्रकृति को देख पाई थी। है ना, प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, मैं आपके साथ कंचन। और एक रिसर्च में ये पाया गया है कि नींद जैसी कुदरती नेमत भी महिलाओं के हिस्से में बहुत कम आती है, लेकिन नींद, सुकून की नींद क्यों ज़रूरी है महिलाओं के लिए, इस पर भी हम

बात करेंगे थोड़ी देर में। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही मीठे मीठे गीतों के साथ। एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी, हमारी जो होम मेकर होती है, हमारी महिलाओं की भी तो यही इच्छा होती है कि कोई उनसे पूछे कि तुम कैसी हो, आपने आराम किया या नहीं, या थोड़ा सा आराम कर लो, हम बच्चे को संभाल लेते हैं, है ना, यही इच्छा होती है। लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं के हिस्से जो नींद है ना, बहुत कम आ पाती है, जिसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ रही है। और महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, घर परिवार के सभी सदस्यों का वो ख्याल रखती हैं, घर के काज

बाहर के कामकाज और इन सब के बीच में वो अपनी नींद तक को बहुत ही लापरवाही से लेती हैं। नींद जो है उन्हें एक वो झपकियों में नींद देती है, कभी दिन में थोड़ी देर के लिए सो गई लेकिन ये नींद पर्याप्त नहीं है और इसकी वजह से दिल की बीमारियों से वो जूझ रही हैं, शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाता और इसकी वजह से वो चिड़चिड़ी रहती हैं, मूड स्विंग्स की शिकार होती हैं और जब नींद पूरी नहीं होती है तो कल्पना कीजिए कि किसी को कैसा लग सकता है। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, मैं आपके साथ कंचन, सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक बहुत ही प्यारे प्यारे गीत।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम है।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में

0: कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
0: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
0: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे, चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना आओ।

0: और मिलाना,
1: मिलना और मिलाना।
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
1: जगना और जगाना।
0: लता और पेड़ों से सीखो,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
1: सबको गले लगाना।
0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना।
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना।
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे।
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना।
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम।
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति

0: से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोता, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम। राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
5: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
6: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
7: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
8: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
9: मेरा भी कुछ यही हाल है।
6: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
7: क्या
9: क्या
7: क्या?
6: ऊंचा सब तक कोयल गाए, नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
4: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
8: जो आज्ञा महाराज।
7: दम लगा के कू।
9: आईशा।

0: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। गाँव गाँव गाँव गाँव गाँव गाँव गाँव। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। गाँव गाँव गाँव। अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है। काँ, काँ, काँ।
1: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
0: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
1: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का, का, का।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पपीहना पिए
1: इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ, भौ, भौ। अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ, भौ। कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: गाँ, गाँ, गाँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: हाँ हाँ, इसकी यही यही सजा हो।
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू

0: चलने लगी। जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है।
2: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
3: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
3: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
2: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
2: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
3: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो
3: पिए दूजा पानी।

0: बारिश बिन पानी
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का ये जो समय है दोपहर का समय, ये विशेष होता है क्योंकि इसमें होता है रेडियो डॉक्टर और हम बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की। सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर हमारा ये शो चलता है विच इज कॉल्ड रेडियो डॉक्टर। तो आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं रिस्क ऑफ टबैको यूज, तम्बाकू के इस्तेमाल के नुकसान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल करीब 80 लाख लोग तंबाकू के कारण होने वाले जानलेवा रोगों का शिकार होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। तंबाकू और इसके सेवन से होने वाले घातक परिणामों के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष चंद्रा से, हु इज चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोलॉजी बीएलके हॉस्पिटल। डॉक्टर चंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
3: धन्यवाद, नमस्कार।
2: सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग से लेकर जो कम पढ़े हैं या नहीं पढ़े वो भी जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं, लेकिन फिर भी इसका सेवन करते हैं।
3: जी, तो ये बड़े दुर्भाग्यवश ऐसा सब्सटेंस है तंबाकू जो अब्यूज के दायरे में आता है और उसका कारण यह है कि ये एडिक्टिव है और ऑन द फ्लिप साइड ये कार्सिनोजेनिक है, यानी इससे कैंसर्स होते हैं। और मैं तो हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते जानता हूं कि हम जितने यंग हार्ट अटैक्स देखते हैं जो 20-30 की उम्र में हमारे पास आते हैं, उन सब में इनवेरिएबली हिस्ट्री मिलती है कि वो लोग बड़े यंग एज से स्मोक करते रहे, या तो ई सिगरेट्स या कॉमन सिगरेट्स या तंबाकू च्यू करना बहुत कॉमन है स्पेशली ईस्टर्न यूपी के एरिया में, तो वो सभी इसका शिकार होते हैं। और लंबे अरसे में फिर तरह तरह के कैंसर, जिसमें सबसे प्रमुख है लंग कैंसर। और ये एक हमारे रेवेन्यूज के, हर देश के रेवेन्यू पे एक बहुत बड़ा ड्रेन है कि उनके खजाने खाली हो जाते हैं इस तंबाकू सेवन से, उनकी जो बहुत प्रोडक्टिव जनता है वो मर जाती है। और दूसरी तरफ अगर आप तंबाकू इंडस्ट्री को देखें तो वो लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे ही हमको तंबाकू यूजर्स बढ़ें, हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बिकें। तो ये एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद चल रही है सरकार के और इन तंबाकू ग्रो करने वाले बनाने वालों के बीच में। वो चाहते हैं पैसा खूब कमाया जाए, जबकि सरकार चाहती है बड़े से बड़े टैक्स लगा के उसको सप्रेस किया जाए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किए जाए, जनता को तरह तरह के कैंपेन से आगाह किया जाए।
2: तो चलिए हम देखते हैं कि आपके तरफ से क्या क्या सवाल आते हैं। और फिलहाल डॉक्टर साहब की पसंद का एक बहुत ही सुरीला गाना, और बता दूं आपको कि डॉक्टर साहब को उदित नारायण, श्रेया घोषाल बहुत पसंद है, और एक और सिंगर आपने
3: मोहम्मद रफी बहुत अच्छे लगते हैं।
2: मोहम्मद रफी बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए कोशिश करेंगे इन्हीं के गाए गीत आज सुनें।

0: सभी अच्छे से जानते हैं कि जिंदगी का जो गुजारा है ना, ये टोबैको के बिना अच्छी तरह से और बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या विवशता हो जाती है कि हम इसके शिकार हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये एक एडिक्शन है, नशा है। एक बार जो शुरू करते हैं तो इसके आदि हो जाते हैं जीवन भर के लिए। डॉक्टर साहब, बात यहाँ पर आती है कि टोबैको की श्रेणी में किन किन चीजों को गिनाया जाता है। सिगरेट्स में टोबैको होता है और किन किन चीजों में होता है, जैसे कि हमारे एक लिसनर ने भी ये जानना चाहा है। मनोहर लाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, लिखते हैं कि क्या पान मसाला और जर्दे वाली जो चीजें होती है वो भी क्या इसकी श्रेणी में आते हैं?
1: जी, तो सिगरेट्स, बीड़ी, ई सिगरेट्स जो आजकल के टीन्स बहुत पीते हैं, और सारे तरह के तम्बाकू, यानी सुरती से लेके जर्दा और जो पान मसाला के अंदर तम्बाकू युक्त पान मसाला है, वो सब इसी की श्रेणी में आते हैं। और देखिए, जो यूज कर रहा है सिर्फ उसको घातक नहीं है, जो उसके परिवार के सदस्य हैं या उसके जो मित्रगण हैं जो उसके आसपास बैठते हैं, और धुआं जब उनके पास पहुंचता है तो उनको पैसिव स्मोकर्स कहलाते हैं वो लोग, इवन वो लोग इसके शिकार हैं। तो हम पूरे समाज को सावधान रहना है कि सिर्फ

0: स्मोकर्स एंड टोबैको च्यूअर्स ही नहीं, आसपास की फैमिली मेंबर्स और उनके मित्रगण भी उससे अफेक्ट होते हैं
1: जी। तो गांधी साहब ने यह भी कहा है कि तरह तरह के गुटके हर चौराहे वाली गली पर जो है लटके हुए देखे जा सकते हैं, तो ये गुटका किन किन बीमारियों को दावत देता है?
0: जी, तो इस गुटके में दो तरह के गुटके हैं, एक तो तमाकू युक्त हैं, एक बिना तमाकू के हैं। तो जो बिना तमाकू वाले गुटके हैं उनमें सुपारी होने से, लगातार खाते रहने से सुपारी आपके मुंह में इरिटेशन करके वो जीभ के और मुंह के कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है बिना तमाकू के भी। और जो तमाकू वाले गुटके हैं वो इस इरिटेंट कैंसर्स के अलावा जब अंदर उसकी पीक जाती है शरीर में तो वो तरह तरह के कैंसर, जैसे लंग कैंसर सबसे प्रमुख है, और लंग कैंसर से आज लगभग 18 से 20 लाख पूरे विश्व में मरते हैं हर साल में, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। तो दोनों तरह के गुटके घातक हैं, खास तौर से तमाकू युक्त गुटके।
1: जी, सुनील कुशवाहा जी हैं उन्नाव से, लिखते हैं कि इनके पापा के हार्ट की एक नस जो है ब्लॉक हो गई है लेकिन तमाकू खाना नहीं बंद कर रहे हैं।
0: तो ये तो बहुत मुझे दया आती है इनके पापा के ऊपर, परिवार पे। इन लोगों को हम एक तरह का हेट्रेड इनके खिलाफ क्रिएट ना करके हम उनको दया का पात्र माने, और क्योंकि वो इसके एडिक्शन से पीड़ित हैं इसलिए इसको छुड़वाना बहुत आवश्यक है। और इनके पापा को जान लेना चाहिए कि अगर ये तमाकू सेवन करते रहे और उस हार्ट की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास भी हो चुका है, तो जो बाकी नसें बची हैं उन सब में नए ब्लॉक्स आना शुरू होंगे और उनको बार बार हार्ट अटैक्स होते रहेंगे, इसलिए तमाकू पूरी तरह से छोड़ना बहुत आवश्यक है।
1: तो डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं इनके परिवार वाले, तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों को क्या कोशिश करनी चाहिए?
0: परिवार वालों का दायित्व यह है कि उसको ह्यूमिलेट न करें मरीज को, और उनको तरह तरह के रास्ते दिखाएं कि किस तरह से आप इसे छोड़ सकते हैं। आपका डिटर्मिनेशन बहुत मानी रखता है इसमें, तरह तरह के आसन हैं श्वास के जो हेल्प कर सकते हैं, और कुछ निकोटेक्स या च्युइंगम्स इस तरह की, या कुछ दवाइयां टेबलेट्स भी आती हैं जिससे कि हम तम्बाकू के खिलाफ डिस्टेस्ट पैदा कर सकते हैं मरीज में, और वो मरीज उसको छोड़ सकता है, और ये संभव है पूरी तरह से। हमारे बहुत से लोग तम्बाकू छोड़ देते हैं बाय देयर शीयर विल पावर, इट इज पॉसिबल।
1: और अगर इससे भी काम ना चले तो किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहां इनकी मदद मिलती है और पूरी तरह से ये ठीक हो जाते हैं।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी बोलिए साहब।
2: नमस्कार नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार। अरे डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं।
0: बोलिए
2: डॉक्टर साहब, हम बहुत परेशान हैं। 24 घंटे में 7 बीड़ी हम पीते हैं, और ये हम छोड़ना चाहते हैं, कोई आसान तरकीब बताने की जहमत गवारा करें।
0: तो बहुत अच्छा है कि आपने निश्चित कर लिया है कि आप छोड़ेंगे इसको, और आप जरूर सफल होंगे इसमें। इसके लिए तरह तरह की दवाइयां या च्युइंगम्स आती हैं, निकोटेक्स च्युइंगम होती है, या सिंपल सौंफ या इलायची है, जब भी आपको तलब लगती है तो वो मुंह में रख सकते हैं और डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे और आपकी बीड़ी पूरी तरह से छुड़वा देंगे। एक बीड़ी लेना भी आपके लिए घातक है, इसलिए जितना जल्दी छोड़ दें आपके लिए अच्छा है।
1: जी तो जितना जल्दी छोड़ दें आपके लिए अच्छा है, और आज ही ये संकल्प ले लीजिए, आज ही ये संकल्प ले लीजिए कि बीड़ी पीना छोड़ देंगे। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो डॉक्टर साहब, अरुण सहानी जी हैं दरभंगा बिहार से, इन्होंने भी लिखा है कि तंबाकू सेवन छुड़ाने का आसान तरीका क्या है, तो अभी आपने कुछ तरीके बताए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि कैसे छोड़ा जा सकता है, तो बीच बीच में हम बताते ही रहेंगे
0: जरूर, जरूर।
1: कि कैसे तंबाकू से मुक्ति पाई जा सकती है। एक और कॉलर है। हेलो
3: हेलो।
1: हाँ जी।
3: हाँ नमस्ते मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्ते गुरविंदर जी।
3: हाँ सर को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर। ये तंबाकू तो ऐसी बीमारी है जो जानलेवा भी है, तो इसके उत्पादन और इसकी सेल पर संपूर्ण बैन क्यों नहीं लगा दिया जाता है? तंबाकू जो है तो इस पर भी कोई कानून बना दिया जाए तो ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
0: मैं इसी पे चर्चा करने लगा था कि जो हमारे किसान भाई हैं और जो अपनी धरती में तंबाकू उगाते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि तंबाकू उगाने में कितना उसका जो गैस है उसकी वो कितनी पीड़ित करती है लोगों को, जो उसमें इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही फ्रिजाइल क्रॉप होती है, उसमें इंसेक्टिसाइड बहुत प्रचुर मात्रा में यूज किए जाते हैं, वो कितने घातक होते हैं, साथ में जो छोटे छोटे बच्चे और यंग नौजवान उस खेती में काम करते हैं उन सब पे इसका असर होता है। और ये क्रॉप ऐसी है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमारे वातावरण में बहुत अधिक लेवल पे होता है, तो इसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम जो है वो बहुत दूर तक जाते हैं। और इसको सरकार साल दर साल इस पे टैक्सेस और रेवेन्यू

0: पे टैक्सेस बढ़ाती जाती है सिर्फ इसलिए जिससे कि तंबाकू ना बिके। टैक्स बढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि वो चाहते नहीं है कि तंबाकू बाजार में एग्जिस्ट करे, और इसके लिए ग्लोबल वर्ल्ड के लेवल पे मुहिम चल रही है ई सिगरेट्स को बैन करने की। पब्लिक प्लेसेस में तंबाकू और सिगरेट को बैन करने की, कई स्टेट्स ने तो फाइन तक इशू कर दिए हैं कि कोई भी मनुष्य पाया गया अगर ऑफिस में या पब्लिक प्लेस पे पीता हुआ सिगरेट तो उस पर एक बहुत भारी जुर्माना लगेगा और जेल भी हो सकती है। तो ये सब ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे कि हम शायद इस पे विजय पा सकें।
1: थैंक यू डॉक्टर साहब, और आपके लिए शुभकामनाएं। आपने इस प्रोग्राम के जरिए प्रयास किया है 1-2% लोग भी इसका सेवन बंद कर दें तो आपकी सक्सेस होगी। धन्यवाद सुजाता मैडम, नमस्कार।
2: नमस्कार, थैंक यू। तो सर ये ई सिगरेट क्या है?
0: ये ई सिगरेट ये है कि उससे कोशिश ये करते हैं कि वातावरण में उसका असर ना हो, धुआं बहुत नजर ना आए और हाथ में लेके वो बिना धुए के उसको घूमते रहें। मगर इसके जो घातक परिणाम बिल्कुल नॉर्मल सिगरेट के बराबर होते हैं। ये एक गलत धारणा है कि ई सिगरेट पीने से शरीर को नुकसान कम होगा या वातावरण कम दूषित होगा। इसके परिणाम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आम सिगरेट के और उसके होते हैं, और ये यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है आजकल क्योंकि ये एडिक्टिव है और नशा इससे बराबर होता है, तो वो लगातार ई सिगरेट वाले पीते रहते हैं इसको पब्लिक प्लेसेस में।
2: और कुछ स्टाइल स्टेटमेंट भी माना जाता
0: और
2: है।
0: एक ये हाँ एक ये फैड माना जाता है कि जैसे अच्छे से बाल बना लिए, अच्छी सी ड्रेस पहन ली, हाथ में ई सिगरेट लेके घूमेंगे, तो ये भी एक फैड है।
2: चलिए इस पर भी और बातें होंगी। और ज्यादातर हमारे लिसनर्स सर यही पूछ रहे हैं कि मैं गुटखे की लत से परेशान हूँ, सिगरेट की लत से परेशान हूँ, कैसे छोड़ा जा सकता है। ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है कि उनमें अवेयरनेस है कि वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे।
0: इसके डेडिकेटेड एडिक्शन सेंटर्स बने हैं, उन पे जाके मदद लें और जरूर कामयाब होंगे लोग। जी,
2: तो चलिए अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर साहब के पसंद का ये गाना जो श्रेया घोषाल की आवाज में है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज का रेडियो डॉक्टर वाकई में विशेष है क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उस चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोलॉजी, और मैं हूं साथ में सुजाता रथ। तो डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजी से संबंध रखते हैं, हार्ट से संबंध रखते हैं, तो आपने अभी अभी बताया कि तंबाकू सेवन के कारण हृदय रोग बहुत होते हैं और खास करके जो हमारी यंग जनरेशन है। तो सर, ये जो यंग जनरेशन में अगर हृदय रोग का वो शिकार हो रहे हैं स्पेशली ड्यू टू टोबैको इनटेक, तो उनकी स्क्रीनिंग कैसे होनी चाहिए?
2: ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसा मैंने शुरू से कहा है कि जो भारतवर्ष में यंग हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है, यहाँ हार्ट अटैक्स लगभग एक दशक पहले होते हैं पाश्चात्य देशों के मुकाबले, और उनमें सबसे प्रमुख कारण टोबैको अब्यूज है। क्योंकि जो अगर 10 हार्ट अटैक के मरीज 30 से 40 की उम्र के आते हैं तो उनमें कम से कम 6-7 लोगों में टोबैको की हिस्ट्री मिलती है, तो तम्बाकू च्यू करते हैं या वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग इनमें से जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो सकते हैं, जिनके पेरेंट्स को एक यंग एज में हार्ट अटैक्स हुए हों, या इनकी खान पान की शैली और इनका वजन या लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे मुख्य कारण हैं जो जुड़ के यंग लोगों में हार्ट अटैक पैदा करते हैं। लेकिन तम्बाकू सेवन एक ऐसा कारण है जिसको हम अपनी स्वेच्छा से हटा सकते हैं। इट इज ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड दैट शुड बी इरेज्ड आउट फर्स्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल द रिस्क फैक्टर्स बिसाइड्स दी अनमॉडिफाइबल वंस। जैसे किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है या कोई डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर है, तो तम्बाकू उस श्रेणी में सबसे ऊपर है जिसको आप अपने हाथ से हटा सकते हैं और एक बहुत हद तक यंग हार्ट अटैक्स के लोग बच सकते हैं इससे। मैंने, आप कल्पना करिए, मैंने इतने छोटे एक 13 साल के बच्चे की एंजियोप्लास्टी की हुई है। और जब उसको पूछा कि क्यों हुआ तुमको, उसकी आर्टरी साफ थी, एक आर्टरी में ब्लॉक था, तो बताया गया कि करीब 7-8 साल की उम्र से वो बीड़ी पीता था।
1: अच्छा।
2: और वो किसी आंचलिक गांव के क्षेत्र से था। और देखिए, बीड़ी के परिणाम देखिए कि उस 13 साल के बच्चे को, कितने युवकों की शादियां नहीं हुई हैं उससे पहले उनको हार्ट अटैक हो चुके हैं, और आप जब ठीक हो गए एंजियोप्लास्टी करा के, तो वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारा आगे जीवन कैसे व्यतीत होगा। तो तम्बाकू बहुत घातक है। मेरी दरखास्त है लोगों से कि छोड़ें इसको।
1: जी, हेलो
3: जी, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
3: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ।
1: जी जी, राजा साहब बोलिए।
3: जी जी, बड़ा अच्छा आज का टॉपिक है तम्बाकू के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हमारा ये प्रश्न है आपसे कि जैसे हम लोग तो

0: तम्बाकू नहीं खाते, उसका बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन सर जो हमारे सफर करने में या हमारे आस पड़ोस में बहुत लोग सिगरेट बीड़ी गुटखा खाते हैं, तो क्या उनके जो बीड़ी पीते हैं सिगरेट पीते हैं उनका धुआं जो निकलता है तो क्या वो भी हम लोगों के लिए नुकसानदेह होता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा सवाल उठाया। इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, यानी कि हम खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन हम आसपास के जो स्मोकर्स हैं उनसे निकला हुआ धुआं सूंघ तो रहे हैं हम और वो हमारे फेफड़ों में जा रहा है, तो उसके परिणाम भी उतने घातक होते हैं जितने पीने वाले को हैं। और इस पैसिव स्मोकिंग की प्रक्रिया से बहुत से परिवार के लोग भी पीड़ित होते हैं जो मैं बीमारी की चर्चा कर रहा हूँ, तो इससे बचना चाहिए, बहुत आवश्यक।
0: जी जी जी मैम, आपका बहुत धन्यवाद मैम।
2: थैंक यू राजा साहब। त्रिलोकचंद सोनी जी का ये मैसेज हम ले सकते हैं, उत्तराखंड टेहरी गढ़वाल से है। सर इन्होंने लिखा है कि गांव के बुजुर्गों का मानना है कि जो हम हुक्का से तंबाकू पीते हैं वो उतना हानिकारक नहीं होता है क्योंकि वो फिल्टर होकर आता है। क्या ये सही है?
1: ये बिल्कुल गलत धारणा है।
2: जी
1: सिगरेट में भी तो फिल्टर लगाते हैं जहाँ पे हम पीते हैं उसको, और तंबाकू जो गुटके में उसमें यूज होता है हुक्के में, वो बिल्कुल उतना ही घातक है। और आजकल के जो नवयुवक क्लब्स में जाते हैं और वहाँ शीशा और तरह तरह के हुक्का पीने की जो रिवाज है
2: जी,
1: वो भी उतना ही घातक है।
2: उसमें जो फैशन ट्रेंड बन गया कि हर जगह हुक्का जो है अलग से रखा जाता है।
1: एक तो हम पॉल्यूशन की मार से ऐसे ही पीड़ित हैं और ऊपर से ये शीशा और हुक्का लेके हम अपने लंग्स में धुआं इकट्ठा करते हैं, तो ये लोग कैंसर तो एक चीज है, उससे पहले ये ब्रोंकल एस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इन सब डिसीजों से पीड़ित होते हैं, तो इसके परिणाम तो बहुत दूरगामी हैं और इससे जहां तक हो सके बचना चाहिए।
2: जी, तो त्रिलोक चंद्र सोनी जी का ये मैसेज मैंने लिया जो अभी अधूरा है, उत्तराखंड टेहरी गढ़वाल से। इन्होंने ऐसा लिखा है, इनको कोई प्रॉब्लम है कि ये बीड़ी सिगरेट दारू कुछ नहीं पीते लेकिन कुछ दिनों से इनका सिर जो है घूम रहा है, चक्कर आने जैसा लगता है और दर्द होता है विशेषकर कनपटी में और दाहिनी तरफ छाती में जलन भी होती है, तो इन्हें क्या करना चाहिए?
1: ये इस प्रोग्राम से हटके सवाल है लेकिन इनको पता है हम हृदय रोग विशेषज्ञ इसलिए सवाल किया
2: जी,
1: है
2: जी, जी।
1: तो इसमें इनको जांच करानी चाहिए, खासतौर से ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण ये हो सकते हैं कि सिर में दर्द हो, और जो नीचे भुजा में या सीने में दर्द है उसके लिए हार्ट के चेकअप से कराने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप स्मोकिंग या टोबैको नहीं यूज करते तो हार्ट डिसीज से आप बचे हुए हैं, और कई कारण हो सकते हैं जिससे हार्ट डिसीज हो सकती है, तो उसको चेकअप कराना चाहिए इनको।
2: जी, तो कुछ कॉलर्स वेट कर रहे हैं लेकिन इनके कॉल्स हम बाद में लेंगे, तो चलिए अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: डॉक्टर साहब कि हमारे जो यंगस्टर्स इनका शिकार हो जाते हैं, खास करके स्कूलों में जो ये चलन चल जाता है, छुप छुपा के जो शुरुआत हो जाती है बच्चों में, यूथ में टोबैको सेवन की, तो सर लक्षण क्या है? ये जो यूथ पीने लगते हैं, तंबाकू का सेवन करने लगते, तो ये किन लक्षणों से जो उनके पेरेंट्स या अभिभावक हैं जो ये पहचान करें?
1: या घर में अभिभावकों को ये भांपना बड़ा आसान हो जाता है अगर बच्चे के आसपास बैठते हैं या उसमें ऐसे लक्षण देखते हैं कि उसके होंठ काले हैं या उसके मसूड़ों पे कुछ रंग चेंज हो रहा है या दांतों में चेंज हो रहा है और उसके पास बैठने से स्मेल आती है जो कि छुपा नहीं सकते, तो वो जरूर इस चीज को डायग्नोज कर सकते हैं कि उनका बच्चा जो है स्कूल में सिगरेट पी के आता है या गलत उसमें पड़ गया है। तो इस पे बहुत गौर करना चाहिए, बच्चों के साथ बैठना चाहिए, बच्चों से कनेक्ट करना बहुत आवश्यक है, जो कि दुर्भाग्यवश छूट रहा है आजकल।
0: लेकिन डॉक्टर साहब अगर अब ऐसे अगर माता पिता को पता भी चल गया कि ये बच्चे जो है गलत संगत में हैं और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मतलब रैशली उनको बोल नहीं सकते, तो कैसा रवैया होना चाहिए उनका?
1: शुरू में तो माँ बाप का रोल है कि एज ए डिसिप्लिनरी उनको कड़क वार्निंग देनी चाहिए और थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए, और जो लोग बहुत एडवांस्ड लत में पीड़ित हैं उनको प्रति तो आप सिर्फ एम्पेथाइज कर सकते हैं, कंपैशन दिखा सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे, हम चलते हैं किसी डी एडिक्शन सेंटर पे या डॉक्टर के पास और हम कोशिश करते हैं पूरी छुड़वाने की, लेकिन आप इसका प्रण करो कि हम छोड़ेंगे इसको, क्योंकि ये लंबे अरसे में बहुत घातक होने वाला है।
0: जी, और इसमें स्कूल्स का क्या रोल होना चाहिए?
1: स्कूल्स का रोल बहुत आवश्यक है, स्कूल्स में तरह तरह पर एजुकेशनल प्रोग्राम कर सकते हैं, समय समय पर वो लोग बुला के स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को और उन स्टूडेंट्स को आगाह कराएं कि देखिए अगर ये सेवन करेंगे आप तो आप किन किन बीमारियों से पीड़ित सकते हैं और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कैसे घट सकती है और प्रोडक्टिव ईयर्स लाइफ के कैसे वेस्ट हो जाते हैं इससे, और ये बिल्कुल फायदे की चीज नहीं।
0: तो टोबैको से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, हमारी जो धरती है वो भी विनाश की ओर बढ़ती जाती है, तो इस बारे में भी हम बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन कुछ कॉलर्स हैं इनकी बात सुन लेते हैं, अदरवाइज लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी,
2: सुजाता रथ मैडम जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
0: नमस्कार रघुविंदर जी, पूछिए।
2: डॉक्टर सुभाष जी को भी सादर प्रणाम।
1: नमस्कार चड्डा साहब।
2: डॉक्टर साहब मैंने देखा है पहले तो सिर्फ मेल ही सिगरेट पीते थे, अब फीमेल ने भी पीना शुरू कर दिया है, कि अगर कोई वुमन जो प्रेग्नेंट है वो चेन स्मोकर है तो उसको कितनी

0: दिक्कत हो सकती है और होने वाले बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कृपया बताने का कष्ट करें।
1: चड्डा साहब, ये साइंटिफिक प्रूफ है कि जो वीमेन सिगरेट पीती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान पीती रहती हैं, उनके बच्चों का आकार छोटा होता है, उनके मिस कैरिजेस ज्यादा होते हैं और स्मॉल बेबीज पैदा होते हैं, जो उनके वो खुद तो परेशान है ही, उनकी जो प्रोजेनी है वो आगे तक परेशान रहती है, वो स्वस्थ प्रोजेनी नहीं होती है, इसलिए उनको सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज को।
0: थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सुजाता मैडम, जय हिंद।
2: सर, रघुविंदर जी की बात से याद है कि महिलाओं में तंबाकू सेवन से जो नुकसान होते हैं, कुछ तो आपने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो स्मोक करती है तो उसके जो आगे चलकर बच्चे पर प्रभाव पड़ते हैं, अदरवाइज भी क्या, जो क्योंकि महिलाओं की जो बायोलॉजिकल जो उनका डील डॉल है वो एनाटॉमी है वो डिफरेंट होती है, तो उस पर असर पड़ता है?
1: बिल्कुल, महिलाओं के अंग आमतौर से पुरुषों के मुकाबले छोटे होते हैं, लंग्स छोटे होते हैं, हार्ट छोटा होता है, और उसी तादाद में अगर स्मोक या तंबाकू सेवन करेंगी तो आप कल्पना कीजिए कि उन पे इसका असर अधिक होगा पुरुषों के मुकाबले, और महिलाओं की कैपेसिटी हर चीज में कम होती है, इवन शराब पीने की कैपेसिटी की लिमिट्स जो है वो महिलाओं के लिए कम आंकी गई हैं। अब वही चीज सिगरेट पे अप्लाई होती है, तो जो महिलाएं क्रोनिक चेन स्मोकर्स हैं, और मैं देखता हूं जर्नलिज्म में, आईटी में और तरह तरह के फील्ड्स में बहुत महिलाएं सिगरेट पीती हैं, और इसको डिस्करेज करना चाहिए, एक अच्छी बात नहीं, ये गलत ट्रेंड है।
2: तो ये गलत ट्रेंड है, वैसे तो हम सिगरेट पीना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, दिस इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग ट्रेंड, वेदर महिलाएं हैं या पुरुष है, सभी के लिए ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है।
1: सुजाता जी, इस पे सरकारें ये चाहती हैं पूरे विश्व में, अफ्रीका, अमेरिका या यूरोप और अपने साउथ ईस्ट एशिया में, कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए बाकी तरह की कैश क्रॉप्स उगाने के लिए। उनकी धारणा है कि हमारी तंबाकू की क्रॉप जो है बहुत पैसा हमको देती है, तो उसके अल्टरनेटिव जो है कैश क्रॉप में गन्ना है, तरह तरह के फल हैं, ये सब उनको एनकरेज करना चाहिए उगाने के लिए। उनको ये जानना जरूरी है कि तंबाकू उगाने में जितना नुकसान पूरे परिवार को या वर्कफोर्स को होता है उनकी फ्यूम से, इंसेक्टिसाइड से, वो बहुत दूरगामी है उसके दुष्परिणाम जो है, इसलिए इसको डिस्करेज करें, और आपकी धरती बंजर हो जाती है। तंबाकू की क्रॉप रोटेशन के 3-4 क्रॉप्स के बाद ही धरती आपकी की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। दूसरी तरफ आप देखिए, एक 300 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काटना पड़ता है। सिगरेट ऐसे ही नहीं बनती, सिगरेट के जो अवयव हैं वो पेड़ों से आते हैं, और अगर इस रफ्तार का डिफॉरेस्टेशन होगा तो आप देखिए हम वैसे ही एनवायरमेंटल हैवक की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इस स्केल पे है, जो स्मोकर्स हैं वो लगातार धुएं निकालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उनसे बहुत निकलती है, तो ये दूषित करती है। तो तंबाकू को तो हर स्केल पे आपको डिस्करेज करना है, चाहे उसके लिए आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़े, चाहे लॉ लाना पड़े, या टैक्सेस बहुत बढ़ाने पड़े, कोई एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से बैन कर दीजिएगा, तरह तरह के जो उनके दुष्परिणाम है उनको दिखाइए लोगों को, पब्लिक को, कि कैंसर से किस तरह से मौतें होती हैं, हार्ट अटैक्स प्रीमेच्योर कितने कॉमन है स्मोकिंग और टोबैको की वजह से। ये कैंपेन चलना चाहिए और ये चल भी रहा है बहुत एक ऊंचे लेवल पे।
2: तो सिर्फ शरीर पर ही दुष्परिणाम नहीं पड़ते हैं, बल्कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो आबो हवा है, वो सब तंबाकू की वजह से दूषित होते हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, असर की पसंद का एक और गाना, और ये गाना थोड़ा सा हटकर है डॉक्टर साहब, एक गजल है
1: जी,
2: सुरेश वाडकर की आवाज में,
1: फिल्म
2: गमन से।
1: जी जी जी, जी।

0: डॉक्टर साहब की पसंद के बहुत ही खूबसूरत पसंद की गजल हमने सुने, बहुत दिनों के बाद ये गजल सुनने में आई। और डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब भी इंसान परेशान होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वो अल्टरनेट रास्तों को ढूंढता है, उनमें भी एक तम्बाकू उनमें से एक है, लेकिन म्यूजिक की तरफ बढ़ सकता है। तो म्यूजिक से अच्छा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, मेरी पसंद राय है ये। तो सब एक मैसेज है प्रमुख कुमार गौतम जी का फ्रॉम लुधियाना, लिखते हैं कि इनकी उम्र जो है 25 साल है, सोते समय अचानक से सांस रुक जाती है और नींद खुल जाती है। लिखते हैं कि मैं गुटखा खाता हूँ, कहीं गुटखे की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है?
1: ये लक्षण आमतौर से जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, या जिनको खराटे बहुत आते हैं सोने के वक्त, उनमें होता है। इसको हम टिपिकली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, यानी सोते सोते सांस मुश्किल से आएगी और अचानक से रुक जाएगी और वो छटपटा के उठ के बैठ जाएंगे। तो उनको अपनी जांचें एक रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट से करानी चाहिए, और गुटखा इसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि गुटखा लगातार खाने से इसके जो बारीक कण हैं, पार्टिकल्स, वो लंग में जमा हो जाते हैं और लंग्स की जो कैपेसिटी है डिफ्यूजन की, ऑक्सीजनेशन की, वो सफर करती है, और ये एक लक्षण उसका हो सकता है। तो उनको एक रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए।
0: जी, कौलेश्वर ठाकुर जी गांव लातेहार झारखंड से लिखते हैं कि तंबाकू चाहे सस्ते हो या महंगे, उनमें उतनी ही मात्रा में खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: बिल्कुल, तंबाकू जहर जहर ही है, और चाहे वो सिगार है या सिगरेट है या बीड़ी है या च्यूइंग टोबैको है, ई सिगरेट्स हैं, सभी घातक हैं, सब एक कैटेगरी मारती है मेरे लिहाज से। तो
0: जी सर, आपने बहुत अच्छा एक डिवीजन किया, बीड़ी से लेकर सिगरेट एंड देन सिगार एंड देन नाउ ई सिगरेट
1: हुक्का
0: जी। तो सर, ये मैं ये

0: चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। आपने बताया कि 13 साल का एक बच्चा जिसकी हार्ट सर्जरी हुई, उसने बचपन में इसको शुरू कर दिया था
1: जी जी
0: बीड़ी
1: जी
0: पीना।
1: जी जी
0: लेकिन कैसे, किन परिस्थितियों में बच्चा जो है, चाहे स्कूल में हो कॉलेज में, शुरू कर देता है इसको?
1: वो बच्चा किसी गांव का, दिल्ली के पास गांव है उनमें से था, और मुझे लगता है किसानों के परिवार से था, और घर में जरूर सब लोग बीड़ी पीते होंगे, और वहीं से उस बच्चे ने चुना। और वो एक दिन स्कूल में खो खो खेल रहा था, उस दौरान अचानक से सीने में दर्द हुआ, मूर्छित हुआ वो, और अस्पताल लाया गया उसको। और उसकी जो सबसे प्रमुख आर्टरी थी एलईडी, उसमें एक ब्लॉक था जिसको साफ किया गया। जब हिस्ट्री पूछी गई तो पता लगा कि वो तो पिछले 4-5 साल से बीड़ी पीता था। तो ये मैंने एक दृष्टांत दिया कि इससे लोगों को आगाह होना चाहिए कि किस तरह से स्मोकिंग आपको कितनी जल्दी उम्र में हार्म कर सकती है।
0: जी, तो वैसे नॉर्मली जो आजकल हम स्कूलों में देखते हैं कि बच्चे पीना शुरू कर देते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है?
1: शुरुआत होती है मैडम, ऐसा मेरा मानना है, शायद एक तरह का फैड है, मुंह से धुआं निकलना बच्चों की एक फैंटेसी है। बड़े बड़े लोगों को देखते हैं उनके मुंह से निकलता अच्छा लगता है, तो वो, और जब ये 2-4-6 सिलसिला शुरू होता है तो एक एडिक्शन पैदा हो जाता है, एक लत होती है कि इसका इफेक्ट अच्छा आता है, दिमाग घूमता है, लाइट हेडेड फील करते हैं, और ये एक एडिक्शन बन जाता है। मेरे ख्याल से तो ऐसी इसकी प्रोसेस है।
0: अब बच्चे जो शुरू करते हैं उनको, उनसे पूछने पर पता चलेगा कि हाउ डिड
1: हाउ
0: दे
1: डिड दे स्टार्ट?
0: स्टार्ट इट।
1: या
0: तो हम आखिर में बात करेंगे क्विट करने
1: जी
0: के
1: जी
0: ऊपर कि कैसे इसे बचा जा सकता है,
1: जी
0: कैसे
1: जी
0: छोड़ा जा सकता है। कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार, बताइए।
2: सर को भी नमस्कार जी।
1: नमस्ते
2: सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आजकल युवा वर्ग जो है तो हुक्का बार की तरफ जा रहा है, और गांव में थोड़ी ये भी धारणा है जी कि हुक्का कम नुकसान देता है, क्या ये सही है जी?
1: ये गलत है साहब। सिर्फ ये जानने से कि घुटके में नीचे पानी होता है और वो छन छन के आपके मुंह में आता है, ये बिल्कुल गलत है। जो निकोटीन के और तंबाकू के दुष्परिणाम है वो पूरी तरह से आपको प्रभावित करते हैं, हुक्के के अंदर भी, जैसे कि वो सिगरेट में प्रभावित करते हैं।
0: जी, थैंक यू कॉल करने के लिए। और
2: थैंक यू सर।
0: हाँ, इस तरह के डॉक्टर साहब बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो भ्रांतियां हैं कि हुक्का पीना उतना नुकसानदेह नहीं है, तो डॉक्टर साहब अच्छे से बता रहे हैं कि उतना ही नुकसानदेह है जितना कि सिगरेट, बीड़ी, सिगार या ई सिगरेट
1: जी
0: पीने
1: जी
0: से नुकसान होता है। हेलो,
3: हाँ नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्कार।
3: हाँ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्ते जी।
3: हाँ डॉक्टर साहब, मैं कम से कम 45 ईयर्स से सिगरेट पी रहा था। कोरोना काल आया, हाँ तभी बड़े लॉकडाउन में सिगरेट की ब्लैकिंग चल रही, 100 रुपए का पैकेट 300 रुपए में। तभी मैंने थाम लिया कि आज से सिगरेट नहीं पीने का, तो मैंने सिगरेट छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी सिगरेट। तब से कभी अभी तक पिया भी नहीं, तो मुझे अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। तो मैं सबको सब मैं तो सबको बोलूंगा, आपने जितने भी सुनने वाले लोग हैं, कि छोड़ना कोई भी इतनी आसान कोई बात नहीं, हमने दिल में थाम दिया तो छूट जाती है।
1: बहुत अच्छा।
0: तो हम चाहेंगे आप बताइए कि आपने कैसे छोड़ा इसको।
3: मैं जब स्कूल पढ़ रहा था तभी से पी रहा था, तो अभी तक पी रहा था। तभी जब ये कोरोना काल में आया, तभी उसका वो सिगरेट, तम्बाकू, ये सब ब्लैक में चल रही थी। उसका बहुत, जो 10 रुपए की सिगरेट थी वो 30, 40, 50 रुपए में मिल रही थी पैकेट, 100 रुपए का 300, 400 रुपए में मिल रहा था। पहले इतना फालतू चीज यानी फालतू बातचीत के लिए इतना पैसा क्यों बर्बाद करे? हमारा जिंदगी भी बर्बाद होती है, पैसा भी बर्बाद होता है।
0: चलिए, बहुत तो अच्छा लगा आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपको कभी दोबारा मन नहीं किया?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी गलती से भी वापस पकड़ के आप मुंह में डाला है, ऐसा कुछ नहीं।
0: चलिए,
3: बिल्कुल नहीं।
0: आपकी जो कहानी है ना, वो लोगों को प्रेरणा देगी जो छोड़ना चाहते हैं बीड़ी सिगरेट।
3: नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया। आपने दिन में थाम दिया ना कि ये नहीं, ठीक नहीं, नहीं करना तो नहीं होता है।
1: बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा।
3: आज का कार्यक्रम जो आप बता रहे, बहुत अच्छा लगा।
1: धन्यवाद,
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद, धन्यवाद। जी एस चत्था साहब ने भी कहा है सर कि आज का प्रोग्राम सुन के लोगों को सबक लेना चाहिए कि तंबाकू के धुएं को त्याग कर गरम गरम दूध पीकर सेहत बनाएंगे। थैंक यू जी एस चत्ता साहब जी। एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो,
4: नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, बोलिए।
4: मैं नेपाल से सुरेश बात कर रहा हूँ और इस समय आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ
0: जी।
4: और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं 11वीं कक्षा में अध्ययनरत स्टूडेंट हूँ और मेरे को ये सिगरेट बीड़ी ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती है, मगर मेरा संगत मेरे ये ऐसे दोस्तों के साथ है जो

0: सिगरेट बीड़ी पीते हैं। और सर आप मुझे सुझाव दीजिए, राय दीजिए कि इस मोड इस अवस्था में मेरे को क्या करना चाहिए।
1: आपको ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जो सीढ़ी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, आप उनकी संगत में रहें और इन लोगों से दूर रहें। ये इन लोगों के लिए एक सबक होगा कि हमारा इतना अच्छा दोस्त सिगरेट बीड़ी की वजह से हमसे दूर चला गया। तो इन लोगों को त्याग दीजिए और अच्छे दोस्त चुनिए और उनको सलाह दीजिए, उनको कंपैशन सिंपैथी करिए उनके प्रति कि भाई इसको छोड़ दो, ये ठीक नहीं है और तुमको तो नुकसान होता ही, आपके आसपास वाले भी इससे अनईजी हो जाते हैं, इसलिए छोड़ दीजिए आप। मैं तो यही कह पाऊंगा आपसे।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते। नेपाल से कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आसपास की बात आई रफ साहब, तो एक मैसेज है कि डू द सूरज यादव का, डू द स्मोक ऑफ सिगरेट अफेक्ट सराउंडिंग पीपल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10-15 मीटर्स। लिखा है कि आई एम नॉट अ स्मोकर बट आई गेट इरिटेटेड व्हेन नियर बाय पीपल स्मोक।
1: या आई कैन रिलेट विद हिम। दोज हु आर नॉट स्मोकिंग वो जरा से धुएं की स्मेल से भी बहुत अनईजी हो जाते हैं और ये इतनी तेजी से फैलता है कि 10-15 फीट तक जाता है। हो सकता है उसके नुकसान उतने ना हो लेकिन एक बार को इंसान अनईजी तो हो ही जाता है और बहुत इरिटेबल होता है जब धुआं उसके आसपास से, या इवन जो च्यूइंग टोबैको, आपका ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर तम्बाकू खा के बैठा है उसकी स्मेल लगातार पीछे आ रही है, ये बहुत एक अनईजी फीलिंग होती है। आई कैन रिलेट विद दैट।
3: हेलो।
2: हाँ जी,
3: मेरा नाम अंकिता राजपूत है, मैं शेखपुर कसला लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरे पापा दरअसल मसाला खाते हैं, तो उनका इलाज क्या है?
1: जी जी, तो ये ईस्टर्न यूपी में मसाला पान खाने का बहुत रिवाज है और बेटे हम तो यही कहेंगे कि आप पिताजी को सलाह दें कि इससे आपको लंबे अरसे में कैंसर होने का बहुत हाई चांस है। जीभ का कैंसर, बक्कल कैंसर, मुंह का कैंसर और लंग कैंसर, ये सब कैंसर्स हो सकते हैं। इसको छोड़ना चाहिए। इसकी उनसे कहिए, इसकी स्मेल भी हमको अच्छी नहीं लगती है और हमको आपके आसपास ही रहना है, तो आप इसे छोड़ दें जितना जल्दी उतना अच्छा होगा आपके लिए।
3: जी, थैंक यू।
2: तो सर अब चलते चलते हम जिससे एंड करना चाहेंगे शो का, वो है हाउ टू क्विट।
1: जी मैडम, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें दो तीन चीजें अहम ये हैं कि एक तो इन लोगों के प्रति हमको थोड़ा सहानुभूति दिखानी है, उनकी भर्त्सना नहीं करनी कि आप हमसे दूर रहिए हम आपको डिसलाइक करते हैं। उनके साथ सिंपैथी दीजिए, उनको राय दीजिए। उनको निकोटीन के अल्टरनेटिव्स हैं, च्युइंगम्स हैं या टैबलेट्स हैं, लोजेंजेस हैं जो शुगर फ्री हैं, उससे तलब को दबा सकते हैं। कुछ दवाइयां हैं ब्रुपिनॉन जैसी जो हमारे साइकेट्रिस्ट या डी एडिक्शन सेंटर में लोग देते हैं, उससे छुड़वा सकते हैं। और अपने तरह से कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जैसे डिले है, आप जो सिगरेट आधा आधा घंटे पीते थे आप उसको अगर दो दो तीन तीन घंटे पे करें शुरू में और अल्टीमेटली छोड़ने का प्रयास करें तो वो कारगर होता है। ये सिचुएशंस हैं, एक खास मौके पे जाके आपको तलब लगती है, किसी बार में बैठे हैं या किसी मीटिंग में बैठे हैं या दोस्तों में बैठे हैं, उन सिचुएशंस में आपको तलब लगती है कि अब हम सिगरेट उठाते हैं और हम पीते हैं, उन सिचुएशंस को अवॉइड करिए आप। और कुछ प्राणायाम जैसे सांस के आसन हैं वो कर सकते हैं, जिस वक्त आपको तलब लगे आप वो करना शुरू करिए। या कोई भी अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, जैसे म्यूजिक है या रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है या जिम जाना है। जब आपको तलब लगे आप डिस्ट्रैक्शन अपनाइएगा और दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित करिएगा। इन सब चीजों से पाया गया है कि सिगरेट और तम्बाकू सेवन छूट सकता है।
2: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम सभी को मिलकर साथ चलना पड़ेगा, चाहे वो घर वाले हो, पेरेंट्स हो, स्कूल में टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, सोसाइटी के लोग हो। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें इन लोगों से सहानुभूति रखनी पड़ेगी, इन्हें अलग थलग नहीं करना होगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की रिस्क ऑफ टोबैको यूज। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का हम शुक्रिया अदा करते हैं, चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोलॉजी बीएलके हॉस्पिटल।
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तथा देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपी। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज सचेत ने मंगलुरु के तट पर एक समुद्री खोज और बचाव अभियान के दौरान मुश्किल में फंसी भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब समुद्र में मंजू माथा के ढांचे को नुकसान पहुंचने और नाव में पानी भरने के बाद सभी बचे हुए लोगों को रिमोट से चलने वाले लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बचे हुए लोगों को मदद और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मैंगलोर लाया जा रहा है। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना की आशंका वाले और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम

यहां में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक, प्रोग्राम अल्फा जन के साथ मैं कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज प्रोग्राम अल्फा जन में बात होती है करियर की, तो आज हम जिस करियर की बात करेंगे उसके लिए थोड़ा तो इंतज़ार बनता है ना? तो बहुत ही धैर्य से इंतज़ार कीजिए और इस प्यारे से गीत का आनंद लीजिए।

क्या करूं क्या करूं, एक ऐसा खेल जिसमें पूरे गेम में यही चलता रहता है। जी आप कुछ कुछ तो गेस कर रहे होंगे, एक ऐसा खेल जो जिंदगी के बहुत करीब है और वो है शतरंज का खेल। जिंदगी और शतरंज में आप कब और किस व्यक्ति से कहाँ हार जाते हैं ये तो पता ही नहीं चलता। आज हम शतरंज की बात कर रहे हैं क्योंकि आज प्रोग्राम अल्फा जन में हम यही बात करेंगे कि शतरंज में आप किस तरह से करियर बना सकते हैं। मैं आपके साथ कंचन, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। जी क्या आपका भी पहला प्यार शतरंज है?

दोस्तों, ईथन वाज और हर्षवर्धन जीबी, ये दो ग्रैंड मास्टर्स इस सप्ताह भारत को मिले और पूरी दुनिया जो है ना भारत को शतरंज की महाशक्ति के रूप में देख रही है। दिव्या देशमुख, गुकेश डी, प्रगनंदा और इनके खेल को देखकर अगर आपके मन में भी चेस प्लेयर बनने की चाहत होती होगी तो आप भी अगर शौकिया तौर पर चेस खेलते हैं तब भी आप प्रैक्टिस करके और बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं से सीखकर शतरंज में करियर बना सकते हैं। आज प्रोग्राम अल्फा जन में यही बात होगी कि शतरंज जो 64 खानों का खेल है और ये खेल जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिन्हें पसंद है। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि शतरंज में बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत है। जी साहब, बिल्कुल बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत है, बहुत ही अधिक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, तभी आप एक अच्छे चेस प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन कैसे, आखिर शुरुआत कैसे की जाए, इस प्रोग्राम में बात होगी कि चेस में आप किस तरह से करियर बना सकते हैं। मैं आपके साथ कंचन, सुनते रहिए बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही मीठे मीठे गीत FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

जी शतरंज में भी बस ये ख्वाब होता है, इतना सा ख्वाब होता है कि रेटिंग जो है वो बढ़ती चली जाए और रेटिंग जल्दी जल्दी करके 2500 के पार हो जाए ताकि आप ग्रैंड मास्टर बन सके। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन और आज बात हो रही है कि चेस में किस तरह से करियर बनाई जाए। दोस्तों सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जानी चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके शतरंज को सीखने की शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप छुटपन में शुरुआत नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, लेकिन छुटपन में शुरुआत करनी चाहिए इस खेल को, क्योंकि आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी रेटिंग को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि बच्चा जो है ना खेल रहा है घर में शौकिया तौर पर, जैसे हम घर में बच्चे को शतरंज लूडो ये सब ला कर देते हैं, और जब बच्चा लगातार अपने घर के बड़े सदस्यों को यानी दादा दादी पापा मम्मी नाना नानी जो भी उनके साथ खेलते हैं लगातार हराने लग जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बच्चे को अब शतरंज के लिए प्रोफेशनल चेस कोच की ज़रूरत आ गई है। और आप अपने बच्चे के लिए तलाश कीजिए एक अच्छी इंटरनेशनल रेटिंग वाले चेस कोच की, लेकिन आप उन्हें जो भी कोच के साथ भेज रहे हैं उनकी इंटरनेशनल रेटिंग ज़रूर चेक कीजिए फीडे आईडी पर उनके नाम के साथ, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि कोई भी सिखाने लग जाते हैं, बच्चा खेलेगा सबके साथ लेकिन उनके सिखाने वाले जो गुरु हैं ना वो अच्छी रेटिंग वाले यानी 1800 के पार तो ज़रूर उनको चाहिए, तभी बच्चा एक स्ट्रांग प्लेयर के रूप में उभर सकता है। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन, मैं आपके साथ कंचन।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है एल फजन, और आज बात हो रही है कि शतरंज में किस तरह से करियर बना सकते हैं। वैसे फीडर रेटिंग टूर्नामेंट्स खेलकर ही चेस में इंटरनेशनल रेटिंग बढ़ाई जाती है, और जिसके लिए चेस प्लेयर्स को लगातार रेटिंग टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। ये टूर्नामेंट्स बहुत थकाने वाले होते हैं क्योंकि लंबे लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं, लगातार बहुत बहुत समय तक बैठना होता है, सोचना होता है, और फिर इतने लंबे टूर्नामेंट्स खेल कर भी

खिलाड़ी जो है वो हार जाते हैं तो बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत होती है और ऐसे में फिज़िकली भी बहुत स्ट्रांग होना होता है प्लेयर्स को। अपने खेल को लगातार एनालाइज करना होता है और साथ ही चेस के धुरंधर गुरुओं से कोचिंग भी लगातार लेनी होती है। कहते हैं कि चेस एक ऐसा खेल है जिसमें सिर्फ चेस बोर्ड ही सस्ता होता है, बाकी सब कुछ बहुत महंगा होता है, यानी टूर्नामेंट से लेकर ट्रैवल तक और ट्रेनिंग जो है वो बहुत महंगी होती है। इसलिए पेरेंट्स को भी दिल से, दिमाग से और जेब से भी बहुत मजबूत होना होता है। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन और आज बात हो रही है शतरंज की।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई।

0: ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
9: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
0: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
10: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जी, भारत है शतरंज की महाशक्ति। और आज प्रोग्राम अल्फा जन में हम बात कर रहे हैं कि शतरंज में आप किस तरह से करियर बना सकते हैं। वैसे जितनी जल्दी हो सके वैसे शतरंज की शुरुआत करनी चाहिए, बचपन में, छोटपन में शुरुआत करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और कम उम्र में शतरंज शुरू करने के फ़ायदे ये होते हैं कि कोफिशेंट और रेटिंग जो है वो बहुत हाई होती है और खिलाड़ी बहुत कम उम्र में एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि 18 साल के बाद रेटिंग बढ़ने की गति जो है वो कम हो जाती है और ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने पड़ जाते हैं और हाईली रेटेड प्लेयर्स को हराना भी पड़ता है। तो रेटिंग बढ़ाते हुए खिलाड़ी फिडे मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर और फिर अंत में ग्रैंड मास्टर जैसे टाइटल प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन ये टाइटल्स आपको इंटरनेशनल मास्टर और कैंडिडेट ग्रैंड मास्टर टाइटल आपको तभी मिल पाता है जब आप एक निश्चित रेटिंग हासिल करते हैं, 2300 और 2500 की रेटिंग, और साथ ही आईएम और जीएम नॉर्म्स भी हासिल करने पड़ते हैं। तीन तीन नॉर्म्स हासिल करने पड़ते हैं तभी आप ग्रैंड मास्टर या इंटरनेशनल मास्टर बन सकते हैं। यानी एक बहुत ही कठिन सफ़र होता है जिसमें बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत होती है, साथ ही खिलाड़ी के साथ साथ उनके पूरे परिवार को धैर्य का परिचय देना होता है। लंबी ट्रैवल्स होती हैं, लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं और एक के बाद एक टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, और आपका जो बच्चा है वो कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो उसे हार का सामना तो करना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि शतरंज के खिलाड़ी जो होते हैं ना वो दिमाग से बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि वो अपना धैर्य कभी नहीं खोते। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन और मैं कंचन।

एक छत के नीचे जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हर उम्र के खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हों तो इतना डिसिप्लिन, इतना ठहराव कहाँ से आ जाता है? यही सवाल दर्शकों के मन में होता है कि क्या जादू है इन खिलाड़ियों में जो हर उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, बड़े खेल रहे हैं, लेकिन इस तरह से अनुशासन है। शायद यही खूबसूरती है शतरंज के खेल की। पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, एक शतरंज के खिलाड़ी पूरी दुनिया को अपना बना लेते हैं, तो क्यों ना मित्रता का भाव उनमें ज़रूर होगा, शायद जन्मजात होता है। और तभी वो इतने धैर्य वाले खेल को इतनी खूबसूरती से अंजाम देते हैं। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन, और अगर आप भी शतरंज के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, इस खेल से आपको प्यार है, तो शुरू कर सकते हैं घर में एक छोटे से शतरंज के बोर्ड के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, और खेल खेल में क्या पता आप एक अच्छे शतरंज के खिलाड़ी बन जाएं। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन, और इस प्रोग्राम के ठीक बाद यानी 5:05 पर आप सुनेंगे सिटेलाइट्स, और इस प्रोग्राम में आपका साथ देंगी रेशमा। सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक।

यानी कोई भी बैड मूव जो है ना आपको मुश्किल में पड़ा सकती है। तो शायद यही खासियत है इस खेल की, और यही खासियत जो है ना जिंदगी को समझने में मदद करती है। मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। अगला प्रोग्राम सिटेलाइट्स लेकर रहेंगी रेशमा, और मैं यहीं पर लेती हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का बहुत अधिक ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का हाथ थामे रखिए, बच्चों को बहुत अधिक प्यार दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, और उन्हें शतरंज के गुर भी आप सिखा सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय होगा, वो प्यार करेंगे शतरंज जैसे खेल से। दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मंगलुरु लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम जिसे आप और हम सिटी लाइट्स के नाम से जानते हैं, इसमें आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और आपका हम यहां पर ये कहना चाहेंगे बल्कि आपसे कि अगले पूरे एक घंटे में आपको हम रूबरू कराने की कोशिश करेंगे राजधानी दिल्ली की उन प्रमुख खबरों और गतिविधियों से जो आज कह सकते हैं कि पूरा दिन जिन पर चर्चा की जाती रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ एक बहुत ही मीठे, एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ। उसके बाद मैं लौटती हूँ दिल्ली की गतिविधियों के साथ और कुछ खास समाचारों के साथ।

हौले हौले से हो जाएगा प्यार। जी हाँ, ये जो हौले हौले शब्द है वाकई बहुत ही सुंदर है। और वाकई जब भी हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने उपयोग में डालते हैं, तो यकीन मानिए कि सामने वाला इस पर मतलब कह सकते हैं कि वाह कह सकता है, अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना जानते हैं। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि आज की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया का जो ज़माना है इसमें शब्दों का अपना एक अलग ही रोल हुआ करता है। चलिए फिलहाल हम शब्दों पे बात नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं कि आज विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, और ये हर साल 30 जून को मनाया जाता है। और ये दिन वैश्विक संचार, सूचना साझा करने और लोगों को आपस में जोड़ने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका को सम्मान देने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कब से शुरू हुआ, ये क्यों मनाया जाता है, तो धीरे धीरे हौले हौले बताएंगे आपको बहुत सारी बातें। लेकिन हाँ, यहाँ ये तो बताती चलूँ कि इस दिवस की जो शुरुआत है वो 30 जून 2010 को प्रमुख प्रौद्योगिकी, समाचार और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मेशेवल द्वारा की गई थी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2010 से इसकी शुरुआत की जाती है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो हमने मान लिया कि इसकी शुरुआत 30 जून 2010 से मनाई जाती है या की जाती है, लेकिन आखिर इसको क्यों मनाया जाता है? भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है केवल सोशल मीडिया की लोकप्रियता का एक तरह से जश्न मनाना नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति और वैश्विक व्यापार पर इसके व्यापक प्रभाव का मूल्यांकन करना है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो सोशल मीडिया डे मनाया जाता है ये संवाद के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बदल देता है। आज लोग अपने विचार, कला, व्यवसाय और सामाजिक संदेश दुनिया भर तक कुछ ही पलों में पहुंचा सकते हैं। अब जरा सोचिए, उस दौर में लोग अगर किसी से कुछ कहना चाहते थे तो चिट्ठी लिखा करते थे, और चिट्ठी कब पहुंचा करती थी। लेकिन आज क्योंकि सोशल मीडिया यानी डिजिटल हो गए हैं हम, और एक मिनट के अंदर कहीं भी कुछ भी भेज सकते हैं, यही खास बात है आज के दिन की। लेकिन साथ ही साथ एक बात और हम आपसे यहाँ कहना चाहेंगे कि यहाँ ये भी जरूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। किसी भी जानकारी को अगर आप साझा करते हैं तो पहले अच्छी तरह से उसे जांच परख लें, उसकी सत्यता के बारे में जान लें, और सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत बात तो हम आगे नहीं पहुंचा रहे। इसीलिए दोस्तों कहा यह जाता है कि पहले सोचो, समझो, उसके बाद उस खबर को या फिर उस बात को आप आगे पहुंचाइए, और उस खबर का लोगों पर क्या असर पड़ता है, ये सब जानने के लिए, ये सब समझने के लिए, सक्रिय रहने के लिए ये जो आज का दिन है वर्ल्ड सोशल मीडिया डे ये मनाया जाता है। तो भाई हमारी तो कोशिश यही रहती है कि आप तक हम कुछ अच्छी अच्छी बातें पहुंचा सकें, सिटी लाइट्स के जरिए कुछ आप तक ऐसा पहुंचा सकें जिससे आप मुस्कुरा उठें, है ना। और साथ ही साथ जब मुस्कुराने की बात आती है तो भाई हम तो यही कहेंगे कि मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, क्या ख्याल है?

मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तो भाई ज़रा आप हमें बता दीजिए कि आखिर हम ऐसी कौन सी बात आपके साथ करें जो उमंगे जाग जाएं, कौन सी ऐसी बात करें जो आरज़ूए जाग जाएं। फिलहाल तो भाई मैं आपके साथ बात कर रही हूँ दिल्ली की सरगर्मियों की कि आजकल दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। और जैसे कि हमने बता दिया आपसे कि आज वर्ल्ड सोशल डे मनाया जा रहा है, तो भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई ये बेहद ख़ास दिन हो जाता है और संवाद करने के लिए जो एक

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: जहां सिटी लाइट्स, आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर।

जी हाँ, मौसम फिलहाल कोई भी हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर हम चाहें तो अपने आसपास का जो मौसम है उसे सुंदर बना सकते हैं, उसे बहुत ही साफ सुथरा बना सकते हैं। जी हाँ, अपने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए। और आपको बता

बताएं कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। ईवी नीति का जो उद्देश्य है सरकार का, प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना और इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक विस्तार है उसको बढ़ावा देना। और यदि आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप नई गाड़ी खरीद लें, तो भाई इलेक्ट्रिक वाहन एक बेहतर और पर्यावरण अनुकूल जो विकल्प है वो हो सकता है। यानी ख्याल तो रखना है भाई आपको। और दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो उसके भी कोशिश यही है कि दिल्ली जो सरकार है वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी कैपिटल दिल्ली को बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी 2026 को लागू कर चुकी है। और आपको बता दें कि योजना कल यानी कि 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। और एक अच्छी बात वो भी हम आपको बता दें कि भाई इसके तहत गाड़ियों की जो खरीद पर सब्सिडी है, रोड टैक्स में 100% यानी 100% छूट और भारी स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। तो भाई ये एक अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए, वो हमने आपको बता दी। और आप चाहें तो भाई इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब बात यहाँ अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई गाड़ी खरीदने में तो ईवी गाड़ी खरीदने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, लेकिन चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो भाई यहाँ ये भी हम आपको बता दें कि शहर में चार्जिंग की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार अगले 4 वर्षों में 32,000 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। यानी आने वाले जो कल है उसमें कहा जा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम भी हमारी सरकार जो है सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी आने वाला जो कल है वो काफ़ी बेहतर होगा और दिल्ली से प्रदूषण जो है वो और भी कम हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाएं, अपनी दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएं। वैसे दिल्ली अपने आप में बेहद सुंदर है, बेहद ऐतिहासिक है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसका पूरा पूरा ख्याल रखें।

और अगर आपको दिल्ली घूमने का फैसला करना है तो भाई हम तो आपसे कहेंगे कि बस अभी कर लीजिए, फौरन कर लीजिए, और अगर आपके पास वक्त है तो बस निकल जाइए कुछ ऐसी जगहों पर जहां जाकर आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। जी हां, बच्चों की छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को भी इंजॉय कराना है तो आपसे हम कहेंगे कि आज आप आईफिक्स जा सकते हैं, यानी ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी। जी हां, रफी मार्ग पर ये बहुत ही खूबसूरत एक बिल्डिंग है और इसमें नटखट उत्सव को आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि भाई इस उत्सव में 2000 से अधिक विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा देखने को मिल रही है। बच्चे वहां जो उन्होंने पेंटिंग की थी, दरअसल ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार की ये एक योजना थी, इन्होंने एक खास बच्चों के लिए कैंप किया था, जब समर कैंप किया था जब बच्चों की छुट्टियां थी, और उसमें बच्चों ने पेंटिंग की थी, डांस सीखा था, गीत संगीत सीखा था और रंगमंच को सीखा था, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन बच्चों ने जो सीखा था उसके नतीजे के लिए नटखट उत्सव को आयोजित किया गया। और जब आप यहां जाएंगे तो बच्चों की जो चित्रकला है वो आपको देखने का मौका मिलेगा, और वहां पर जो डांस की कुछ प्रस्तुतियां हैं वो आप देख सकते हैं, संगीत है, रंगमंच और हस्तशिल्प के माध्यम से बच्चे अपनी जो एक उनकी कल्पना है उसका एक खास तौर पर उन्होंने अपने हुनर के जरिए उसका परिचय दिया है। और ये आयोजन साहित्य कला परिषद, शिक्षा निदेशालय और NDMC के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, और युवा जो प्रतिभा है उनको एक मंच देने की कोशिश की जा रही है। यानी जो उनका समर कैंप था उसमें उन्होंने बेहद बहुत ही अच्छा काम किया बच्चों ने, और उन बच्चों को एक मंच देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको आईफेक्स जरूर आना चाहिए। और साथ ही साथ आपको हम यहाँ ये भी बताते चलें, अगर आप कला प्रेमी हैं, अगर आप रंगों से प्यार करते हैं तो आईफेक्स में तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आप त्रिवेणी कला संगम का भी रुख कर सकते हैं। जी हाँ, त्रिवेणी कला संगम जो मंडी हाउस के पास है, यहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ इन दिनों

विभिन्न कलाकारों की जो चित्रकला है और मूर्तिकला है और समकालीन कला प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। बल्कि कहना चाहिए कि त्रिवेणी कला संगम एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां कला प्रेमी कभी भी जा सकते हैं और यहां पर आप रंगों की भाषा के बारे में जान सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्ट गैलरीज यहाँ अक्सर लगी रहती हैं और आप वहां जाइए और महसूस कीजिए रंगों की भाषा को। तो ये प्रदर्शनियां, जो कला प्रदर्शनियां हैं, ये आप जा सकते हैं इसको देखने के लिए त्रिवेणी कला संगम। और बता दें आपको कि ये प्रदर्शनियां नई और स्थापित दोनों तरह की प्रतिभाओं को देखने और समझने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं। इसके अलावा आप बीकानेर हाउस भी जा सकते हैं, वहां भी आपको कला प्रदर्शनियां देखने को मिल सकती हैं। आप जान सकते हैं कि कोई भी कलाकार जब रंगों से बात करता है तो कितना सुंदर कैनवस पर अपनी जो अभिव्यक्ति है उसे उतारने की कोशिश करता है। तो बस, आप अगर घूमने के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं। फिलहाल आप मेरे साथ रह सकते हैं सिटी लाइट्स में। और हाँ, आपको बता दें कि नटखट उत्सव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आईफैक्स में जो जिसका आयोजन किया गया, ये आज ही है। आप जा सकते हैं और 6 बजे से इसका ये आरम्भ होता है और रात 9 बजे तक आप इसको देख सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम सिटी लाइट्स।

और अब चलते चलते आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली की जो गर्मी है ये तो हम सभी जानते हैं कि आज काफ़ी गर्मी थी और उमस का असर भी बना अभी भी बना हुआ है। और आने वाले दिनों की बात करें तो कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना को जताया जा रहा है। तो भाई मौसम का ख्याल आप ज़रूर रखिएगा। और रही बात दिल्ली के ट्रैफिक की, तो भाई जो प्रमुख सड़कें हैं दिल्ली की, रिंग रोड, ITO, धौलाकुआं, आश्रम चौक, अक्षरधाम, NH 48 और नोएडा तथा गुरुग्राम की ओर जाने वाले मार्गों पर कार्यालय समय के दौरान यातायात का दबाव अधिक रह सकता है। जी हाँ, इस वक्त हम सभी जानते हैं कि जब भी हम घर से निकलते हैं, क्योंकि ऑफिस के ख़त्म होने का टाइम होता है आमतौर पर, और इस वक्त आमतौर पर जाम मिलता ही है, लिहाजा अगर आपको कहीं निकलना है तो थोड़ा सा मार्जिन लेकर ज़रूर निकलेगा। और अगर आप कहीं दूर जाना चाहते हैं दिल्ली में ही, तो ट्रैफिक अपडेट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई और मार्ग आप ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। तो भाई ये तो दिल्ली की कुछ बातें थी जो हमने, बल्कि कहना चाहिए दिल्ली की कुछ प्रमुख जानकारियां थी जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। बस हम तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जो आपके दिन की शुरुआत होती है वो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ हो। इसी शुभकामना के साथ भाई मैं तो आपसे यहाँ कहूँगी कि मुझे अनुमति दें, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इतना समय हमारे पास है कि मैं आप तक एक अच्छा सा, एक प्यारा सा गीत और भी पहुँचा सकती हूँ। तो क्या ख्याल है, एक अच्छा सा गीत सुन लेते हैं और उसके बाद मैं हूँ आपके साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिटी लाइट्स आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर।

0: तो वही जरा तसव्वुर के आलम से बाहर निकल जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस को ऑन एयर करने का। जी हाँ, अब 6:05 पर आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ रही हैं एम्ब्रीन, और एम्ब्रीन के साथ आपके बहुत ही सुंदर मैसेजेस होंगे। तो एम्ब्रीन, आज क्या कुछ खास करने का इरादा है?
1: हमेशा ही खास ही खास रहते हैं, और आप हैं, और खास ना हो तो ऐसा हो सकता है?
0: क्या बात है, इतनी प्यारी बातें करती है ना एम्ब्रीन की। दिल करता है कि बस एम्ब्रीन को सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। तो भाई, अब मेरा तो जाने का समय हो गया एम्ब्रीन, अब तुम अपने श्रोताओं के साथ अच्छी अच्छी बातें करना और दिल की बातें करना।
1: जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और आकाशवाणी का रेनबो चैनल ऐसे ही आप सुनते रहिएगा। आपके प्यार की हमें हमेशा जरूरत रहती है। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है. उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं. यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है. ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा. वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे. जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है. उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है. करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है.
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है. भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती. सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ.
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है. तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा. इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है. मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है. तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए. फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा. ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा. वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे. मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम। आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स लेकर आ गई हूँ मैं। कौन? आपकी अपनी एम्ब्रीन। शाम को खूबसूरत बनाने के लिए हमें बातें भी करनी होती है, क्योंकि दिन तो सुबह जब होती है तो खूबसूरत कोशिश करते हैं कि खूबसूरती के साथ हो, तो लेकिन दिल ये भी करता है कि सुबह से जो खूबसूरती शुरू हो दिन की, तो वो शाम तक जो है रात तक बरकरार रहे। तो बस उसी को बरकरार रखना है हमें, खूब सारी बातें करके, दिल की बातों को एक दूसरे तक पहुँचा कर। तो बस पहले जल्दी से बताएं कैसे हैं आप, फिर करते हैं बातों का सिलसिला। कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ प्रोग्राम। आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स, आपके साथ हूं मैं एम्ब्रीन।

6:10 और पूरे बल्कि 6:11 और पूरे 3 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, एम्ब्रीन आपके साथ है। और देखिए ना, जब गाने हम कुछ ऐसे सुनते हैं सूदिंग से, तो कितना अच्छा लगता है, पूरे दिन भर की थकावट दूर हो जाती है ना। और अच्छा भी ये लगता है कि जब थकावट दूर होती है तो हर एक चीज़ में दिल लगता है, और दिल लगना ना बहुत ज़रूरी है। जब किसी काम में दिल नहीं लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता कई बार। खैर, हमें अपने इस 1 घंटे के शो में, आपको पता है ना कि जब हम दिल की बात करते हैं, मतलब अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो दिल जो है संभल जाता है। वो है ना, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, लेकिन संभाला भी तब जाता है जब हम अपनी इस ज़िंदगी से टेंशन्स को जो है ना वो दूर करते चले जाएँ। तो बस टेंशन्स को दूर ही करना है। अच्छा, अब टेंशन को कैसे दूर करना है? टेंशन्स कई बार पता नहीं अलग अलग तरीके से भी आ जाती हैं। अब मैं बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी, एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी। आज मैं यही पूछ रही हूँ कि हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कई लोग हैं जिनसे हम रोज़ाना मिलते हैं, बातें करते हैं, कई हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, कई बार हमें कुछ बातें भी मनवानी होती हैं उनसे। ये होता है कि कैसे मनवाएं, लेकिन ये भी पता होता है कि अगर हम ये बात कह देंगे तो शायद हमारा दोस्त या हमारा करीबी गुस्सा हो सकता है, रूठ सकता है, और बात भी मनवानी है। तो मुझे अब ये बताइए आप सब, कि बिना लड़े अपने दोस्तों से आप अपनी बातें कैसे मनवाते हैं? लड़ाई भी नहीं होनी है, बात भी मनवानी है, और बात भी बिल्कुल बढ़िया ढंग से हो जाए। तो जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, बात मनवाने की वजह से ना अपनी लड़ाई हो जाती है। पता चला बात तो इधर उधर हो गई, लड़ाई अलग हो गई। तो कितने हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बात को मनवाने के लिए अपने दोस्तों से बिना लड़ाई झगड़े के अपनी बात मनवा लेते हैं। 9868107070 पर एम्ब्रीन इंतज़ार कर रही है आपके मैसेज का। वैसे बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, दानिश का भी मैसेज आ चुका है, बढ़िया है। प्रवीण चौहान का, ठीक नहीं चला, क्या हुआ प्रवीण, जल्दी से पहले बताओ कि क्या हुआ है, फिक्र हो जाती है। पंकज का भी मैसेज आ चुका है कि वो भी बिल्कुल बढ़िया है। नरेंद्र का भी मैसेज आ चुका है, अभी सबके मैसेज आ गए हैं। गुड्डू का भी मैसेज आ गया है, और किसका मैसेज आ गया है, सोनू का बिजनौर से आ चुका है, अनूप कुमार का, सबके मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आप बताएं, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। जब बातें शुरू हो जाती हैं ना आपसे, तो बस अच्छी होने लग जाती हूँ। सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित।

0: डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: टाइम टाइम टाइम टाइम टाइम क्या हो गया, पता है क्या हो गया? 6:20 भी नहीं हुए, 6:21 और पूरे 3 सेकंड हो गए हैं। आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम, आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स। ओ हो, इतने सारे मैसेज, हा हा हा हा, क्या बात है। मतलब बिना लड़ाई के भी हम अपने दोस्तों से अपनी बातों को मनवा सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, क्योंकि इतने सारे मैसेज बता रहे हैं कि हाँ मनवा सकते हैं। ये सोनू का मैसेज, हम किसी को मनाने के लिए पहले हम उसकी बात सुनते हैं, बिल्कुल सही, फिर उन्हें सही तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, मतलब पहले तो उनकी बात सुन लेते हैं, अगर कहीं ना कहीं नहीं समझ में आती है तो उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की जाती है कि बिना किसी लड़ाई के। लेकिन फिर भी ना अगर वो समझे और उन्हें अपनी बात मनवानी है अपने फ्रेंड को, तो क्या करेंगे, कैसे मानेंगे, मान जाएंगे बिना लड़ाई के? कोशिश मतलब कामयाब रहेगी सामने वाले फ्रेंड की या नहीं रहेगी, ये बताओ ना सोनू मुझे। तो इसका इंतजार कर रही हूँ मैं आपके इस मैसेज का। और ये मैसेज है लिखा है अमरीन, हम तो अपनी बात मनवाने के लिए अपनी दोस्त की पसंदीदा, अच्छा पसंदीदा कैफे में ले जाकर पहले उसे कॉफी पिलाते हैं। हा हा हा, क्या बात है, और फिर उससे अपनी बात मनवा ही लेते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। नरेंद्र नाम ने लिखा है, लेकिन पूरा गेस किया, अगर सही है ना तो बता देना। हाँ नरेंद्र बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही पहचाना है अमरीन आपने। तो ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि किसी को अपनी मतलब किसी से क्या, अपने दोस्तों से ही, अपने बिल्कुल अजीजों से बातें अगर मनवानी है तो तरीका तो आना चाहिए कि लड़ाई भी नहीं करनी है, मानेगा नहीं कैसे मानेगा, कॉफ़ी पिला दो बहुत ही जगह पे, क्योंकि हम अपने दोस्तों को जितने अच्छे से जानते हैं तो भला और कौन ही जानेगा। सही बात बिल्कुल। और ये है अनूप कुमार का मैसेज। अनूप बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि अगर अपनी बात मनवानी है तो एक गाना सुना देता हूँ। हाँ यही है, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है कि मतलब आपके फ्रेंड्स जो हैं आपके गाने से ही आपसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो आपकी बात मान लेते हैं। क्या बात है, तरीका अपनाया जा सकता है, कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करके तो देखी जा सकती है। और ये किसका मैसेज है, ये लिख रही है कि आई एम ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और कहाँ, अच्छा ऐसी जगह पर है ये कि जहाँ पर ब्यूटीफुल ग्रीन टी गार्डन है, आहा, और वहीं पर इनकी जो ट्रेन है वहाँ से गुजर रही है, वेदर इज कूल, क्या बात है, इंजॉय कर रही हूँ ना ट्रिप को। बिप्लब दास का मैसेज है, बहुत अच्छा है, जितना अपनी लाइफ को इस नेचर के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो घूम कर हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ बातें करके हो, या जिस तरीके से भी, तो उतना मुझे लगता है इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है ना बहुत हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। सुबह यहाँ जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वहाँ भागना है, ज़रूरी है ये सब चीज़ें भी, क्योंकि लाइफ का एक पार्ट है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको ईजी बनाना और इसके साथ इंजॉय करना लाइफ के साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे। और किसका मैसेज है, लिखा है बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया है, बस प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, और मतलब सोनू का, राजपाल का, काजल, मानवी, लक्ष्य और मोहिनी और बलवीर का, लेकिन मेरी बात का तो जवाब नहीं दिया ना आपने कि अपने दोस्तों को कैसे मनाते हैं आप। कैसे मनाऊं मतलब कि लड़ाई भी ना हो और बात भी मान ले मेरा दोस्त, तो उसके लिए मैं क्या ऐसा तरीका अपनाऊं? देखिए ना, कोई कॉफ़ी पे लेके चले जाते हैं, पहले कोई गाना गा के वो कर लेते हैं, पहले कोई किसी की बात सुन लेते हैं, कितना मतलब अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, ये मैं देख रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। सवाल का जवाब, अमरीन ये किसका मैसेज है, अनिल शर्मा का है, कहते हैं सवाल का जवाब बिना लड़े पार्टी लेने के लिए, अच्छा पार्टी लेने के लिए साथी को किसी बहाने तैयार कर लेते हैं, अच्छा पार्टी लेने के लिए तो किसी भी बहाने से तैयार कर लेते हैं, फिर मीठी मीठी बातें, खुशी देकर पार्टी और संभव हो झगड़ा असंभव। अच्छा मतलब इनका कहने का मतलब यही है कि आप अपनी मीठी मीठी बातों से खुशियां देकर हर काम को करवा सकते हैं। क्या बात है, ये हुई ना बात कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो जबान है, वो किसी को भी अपना बना सकती है, कुछ और चीज़ें मायने नहीं रखती, मायने रखती हैं आपकी बातें, आपके अल्फाज, आपके कहने का ढंग, ये बहुत मायने रखता है। अच्छी लगी ये बात, क्योंकि इससे तो आप कुछ भी बात मनवा

सकते हैं। सुनते रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक 9868107070 पर फटाफट मैसेज करते रहे, अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि नाम जब लिखते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरे इस दोस्त का मैसेज आया है ना, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो बताएं जल्दी से, और भी मुझे मैसेज का इंतजार है। बिना लड़ाई झगड़े के अपने दोस्तों से अपनी बातें कैसी मनवा लेते हैं। फिलहाल कौन सा वाला गाना प्ले करूं? आहा, ये वाला गाना प्ले करती हूं, बहुत टाइम हो गया सुने हुए, लेकिन बहुत प्यारा सॉन्ग है। सुनते रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक।

इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स और इतने प्यारे प्यारे जब गाने सुनते हैं तो दिल जो है कहीं ना कहीं यादों में खो जाता है, और उन यादों से कई बार ऐसा होता है ना कि निकलने का दिल ही नहीं करता है, दिल करता है बस उन यादों में खोए रहें और वो वक्त वापस आ जाए। लेकिन क्या करें, वक्त तो वापस नहीं आ सकता है ना, लेकिन वक्त को वैसा ज़रूर बनाया जा सकता है। हम अपनी जो भी एक्टिविटीज़ में अब बिज़ी हो गए हैं, बहुत लाइफ हमारी ऐसी हो गई है भागम भाग, कोशिश तो कर सकते हैं कि हम दोबारा से अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी करें, और इजी करते हुए अपने लाइफ को मतलब खूब अच्छी खुशनुमा बना लें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक एम्ब्रीन आपके साथ है, और आप सबके जज्बात, आप सबकी बातें आए हैं मेरे पास हैं इस टाइम। देखिए ना, ये मैसेज किया है अमर रमेश कुमार ने। अमर प्लीज़ आप दोबारा से मैसेज भेजें, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने में। तो अगर आप जो मैंने पूछा है कि जो भी मैंने आज बात करी है जिस बारे में, तो मुझे उसका जो जवाब है ना थोड़ा सा इजी वे में लिखकर भेज दीजिए ताकि मैं पढ़ सकूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और ये ललित राणा का मैसेज है, कह रहे हैं मैडम जी, मैडम मत बोलो, एम्ब्रीन बोलो ना तो अच्छा लगेगा, फिर तो लगेगा कि फ्रेंड्स वाला। अब मुझे कहना पड़ रहा है कि बिना लड़ाई के ना मुझे मनाओगे आप, अगर जो भी है मैडम, मैडम नहीं, आप एम्ब्रीन बोलिए तो अच्छा लगता है, ज़रा लगता है कि इंट्रैक्शन एक अच्छा सा चल रहा है मतलब। और ललित कहते हैं कि पिछले हफ्ते मेरी ना मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई थी। लड़ाई, हमने तो बोला है बिना लड़ाई के अपनी बात को मनवाना, उसे मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लड़ाई भी हो गई थी, अब मनाना भी बाएं हाथ का खेल है। क्या है उनकी कमजोरी का है? पिज़्ज़ा। जब कभी मुझे कोई काम उसे निकलवाना होता है दोस्त से, क्या बात है, तो उसे पिज़्ज़ा शॉप पे बुलाकर पिज़्ज़ा खिला के अपना काम तो निकलवाता हूँ, साथ में अपनी दोस्ती को भी गहरा करता हूँ। ये बात अहम है कि काम निकलवाते नहीं हम दोस्ती में, हम दोस्ती में काम की एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ऐसा अगर हो जाए, मेरा दोस्त ऐसा कर ले तो थोड़ा सा मुझे आसान लगेगा या मेरे लिए ईजी हो जाएगा। उससे क्या होता है, आपस में जो रिलेशंस होते हैं वो और भी गहरे होते हैं, इसलिए क्योंकि लड़ाई तो हुई नहीं उस जगह पर, और हमने एक दूसरे को समझते हुए रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए हमने जो है एक दूसरे के जो है काम आए, या मतलब अपनी चीज़ों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और ये किसका मैसेज है, ये मैसेज है, मैसेज अभी आया है तो मैंने अब पढ़ा है, किसका है ये मैसेज है, अनीता और सिमरन मुखी का और सुदर्शन का। कहते हैं कि सबसे बड़ी सीख अपनों से हार जाना, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ओए होए, बातें बड़ी, जिसे बोलते हैं ना कि दिल की गहराइयों के अंदर से होके गुजर रही है, कि सबसे बड़ी सीख अपनों से हार जाना, मतलब कि जो आपका दोस्त या आपके रिलेटिव जो भी हैं जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जो भी है, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ कर लो, ताकि सामने वाले की खुशी जो है वो और कई गुना, जिसे कहते हैं ना दुगनी दुगनी दुगनी, वो होती चली जाए, उसका दिल टूटे ही ना। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप सामने वाले दिल का इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं कि कोशिश है कि उसका दिल टूटे ही ना। बहुत अच्छी बात है। हमने ये किसका देहरादून से

लोग का मैसेज है, कहते हैं हम हमें तो अपने दोस्तों को मनवाने के लिए कुछ जहमत ही नहीं करनी पड़ती, कार्यक्रम और गाने अच्छे क्या बात है, मतलब बात में इतना दम है, इतना दम है कि आपको पता है कि जो बात मैं अपने फ्रेंड से बोलूंगा या जो मुझे मनवानी है वो इजीली आराम से मान लिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है भाई, इतनी बात होनी भी ये भी अपने आप में अच्छी बात है। और ये क्या है, मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम, चलिए चलिए तारीफ किसका है, ये है नीलम स्वाति और किशु का, आनंद विहार से लिखा है कि हमने अपनी बातें मनाने के लिए अपने दोस्त से कहा कि हम मेरा वाला सॉन्ग में तुम्हारे नाम से फरमाइश जो है वो डलवा देते हैं, और वहाँ और वो जो है वो खुश हो गया। अच्छा, मतलब दूसरे की ख्वाहिश को इतना ज़्यादा उसका ख्याल रखना कि सामने वाला जो है वो खुश हो जाए, और आपको अगर उस टाइम पे अपनी कोई बात मनवानी है कहनी है तो वो इजीली मान जाए। आए हाय, देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे ढंग आ रहे हैं निकल के, कि अपनी बात को भी मनवाना है, लड़ाई भी नहीं करनी है दोस्त से, और चीज़ें जो हैं बहुत स्मूथली चलती रहें, क्या बात है। और ये मैसेज है किसका, आंशी शर्मा का, आंशी कहती है हाय आंशी कैसी हो, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। लिखा है मैं ये कहूँगी कि देखो अब अंशी, पहली बात तो ये है कि अगर अब मुझसे मतलब बिना रूठे बिना लड़ाई के अगर बात करें तो एम्ब्रीन बोलना पड़ेगा, अगला मैसेज आना चाहिए एम्ब्रीन ओनली नॉट मैम। तो ये कहना है, ये कह रही है कि जब भी मुझे अपने किसी दोस्त से अपनी बात बात मनवाने की जो है बारी आती है या कुछ ऐसी चीज़ आती है, तो मुझे अपने दोस्तों से कोई झगड़ा करने की नीड ही नहीं पड़ती, मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत प्यारे हैं वो, मतलब इतने प्यारे हैं, प्यार से मनाते हैं, और कोई गिफ्ट देकर, गिफ्ट तो आ ही गया, गिफ्ट तो आ ही गया, लेकिन गिफ्ट भी अच्छी बात है। गिफ्ट्स लेने देने से कोई ये नहीं होता कि कोई पहाड़ काम है, गिफ्ट से भी कई बार अपने रिलेशंस जो हैं बहुत मजबूत होते हैं। पता चला रूठ भी गया, अब आपने उसको एक ऐसा गिफ्ट दे दिया अपने रूठे हुए दोस्त को, कि गिफ्ट देखते के साथ ही उसके दिल में है कि यार मैंने क्यों फाइट करी, मैंने क्यों लड़ाई की। ऐसे भी मतलब गिफ्ट इतनी अहम भूमिका जो है ना रखते हैं, तो अच्छी बात है कि अगर गिफ्ट से, वैसे आपके दोस्त ऐसे हैं कि वो नाराज़ ही नहीं होते, बिना कहे मतलब बिना नाराजगी के बिना झगड़े के आपकी वो बात को मान लेते हैं। वाह वाह वाह, मतलब अच्छा लग रहा है कि मेरे सभी दोस्त मुझ समेत लड़ाई झगड़ा करने में यकीन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं रखते हैं, सोचते हैं कि बात को भी मनवानी है, लेकिन कैसे मनवानी है सामने वाले दोस्त की वो चीज़ देखते हैं कि जो आप उसकी उस ख्वाहिश को पूरा भी कर सकें, दोस्ती भी गहरी हो सके और बात की बात पूरी भी हो जाए। बहुत अच्छी बात है, आकाशवाणी एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप। और कौन सा गाना प्ले करने जा रही हूँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत सूदिंग सॉन्ग है, बता देना मुझे कैसा लग रहा है। सुनते रहें मैसेज मसाला मिक्स 9868107070 पर, एम्ब्रीन आपके मैसेज का इंतजार कर रही है। अच्छा लगता है जब आपके मैसेज आते हैं ना, इस दिल को सुकून मिलता है। अब दिल को सुकून देने के लिए मैंने ऐसा गाना प्ले किया है कि आपके दिल को भी और मेरे दिल को भी, सबके दिल को सुकून मिलेगा। सुनते रहें मैसेज मसाला मिक्स एम्ब्रीन के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए।

लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: छह बजकर 47 मिनट और पूरे 17 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक का प्रोग्राम है आपका अपना, मैसेज मसाला मिक्स। और बहुत सारा मिक्स मिक्स मिक्स चल रहा है। देखो ना, ऋषभ क्या कह रहे हैं। ऋषभ कह रहे हैं भागलपुर से कि मेरे दोस्तों को उनकी तारीफों से ज़्यादा एक कप चाय अगर उनको मिल जाए ना, तो बस क्या बात है। लेकिन चाय पे थोड़ा ज़्यादा वो यकीन रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए उनसे बातें मनवाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ये बात बहुत बढ़िया लगी, चाय पिलाओ ठीक है और अपनी बातें मनवाओ। कोई पिज़्ज़ा खिला रहा है, कोई मतलब गाना सुना रहा है। अब मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें अपने दोस्तों की, सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि दोस्तों की सारी अदाएं पता है हमें, कि दोस्तों को क्या क्या अच्छा लगता है और अपनी बात कैसे मनवाई जा सकती है। गुड गुड गुड। देखिए, लड़ाई झगड़े से तो बहुत बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करके अपनी बातों को मनवा लें। और ये मैसेज है राकेश ठाकुर का, दिल्ली से, उत्तम नगर से। कहते हैं कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरे दोस्त और रिलेटिव्स जो है ना, ब्लाइंडली फेथ करते हैं। आहा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो उन्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कभी ऐसी जरूरत पड़ भी गई, मतलब इन केस कह रहे हैं कि पड़ भी जाए, तो मेरा एक्टिंग जो है ना, उन्हें मनाने के लिए मजबूर कर देता है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप अपनी अदाओं से, अपनी एक्टिंग से इतना जबरदस्त उनको लुभा देते हैं कि सामने वाला, मुझे लगता है चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, जो भी हो, वो मान ही जाते हैं आपकी अदाओं से। ये भी बहुत बड़ा आर्ट होता है। बहुत अच्छी बात कही है, मुझे अच्छा लगा कि मतलब किसी ना किसी तरीके से आप मनाने में कामयाब रहते हैं। अच्छा, ये मैसेज किसका, ये हीरामणि वर्मा का। कह रहे हैं कि हमारे मित्र, मतलब हमारे मित्र जो हैं, फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, उसमें कोई भी ज़िद्दी नहीं है। आहा, क्या बात है। एक दूसरे को सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और मानते भी हैं बड़े प्यार से। तो ये बात बहुत अच्छी है कि जब हम एक दूसरे को समझने लग जाते हैं ना, हमें पता होता है कि कहाँ नाराज़गी बढ़ सकती है, कहाँ नाराज़गी हो सकती है, कहाँ दिल दुख सकता है, कहाँ तकलीफ़ मिल सकती है। हम उन बातों को ही ना करें, इग्नोर करें और सामने वाले के दिल का ख्याल रखें तो कभी लड़ाई हो ही ना। मानते हैं कि उसमें अपना दिल बहुत दुख जाता है, होता है ना। अभी एक मैसेज आया था कि सामने वाले की, अगर उसकी बात को, उसके दिल को ख्याल कर लें और अपने आप को ऐसा कर लें और सामने वाले की हर ख्वाहिश को पूरा कर दें, तो बस फिर तो बात ही क्या। होए होए, ये दिल कहाँ सिलाएं है ना। कुछ मुझे पता है कि कोई ना कोई, किसी ना किसी के दिल में ये बात चल रही होगी कि वो दिल कहाँ से लेकर आए। लेकिन कोई बात नहीं, दिल ऐसा आ जाता है जब अपने दोस्त इतने अच्छे होते हैं ना। और ये भी सोचना होता है कि छोड़ना नहीं है दोस्ती, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बस फिर बात ही जो है ना, मान ही ली जाती है। मैसेज मसाला मिक्स में और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन ये वाला गाना जो है ना, ये भी बहुत अच्छा है, सच बता रही हूँ मैं आपको। आज सारे गाने जो है ना, बस सोच सोच के ऐसे सूदिंग सॉन्ग्स लेकर आई हूँ कि मज़ा आ जाए। तो कहीं मत जाए, बने रहें हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

जी हाँ, प्यार हो रहा है उसको हो जाने दीजिए, क्योंकि प्यार का जो रिश्ता होता है वो हमेशा हमेशा बहुत प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो इस रिश्ते को तो जितना मजबूत जो है ना मजबूती मिलती रहे उतनी मिलती रहनी चाहिए। फिलहाल एमटीन के अब मतलब अभी तो जाके वापस आना है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। तो अभी आऊँगी ना मैं।

अगले प्रोग्राम का टाइम हो गया है, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी दोस्ती को मजबूत करते हुए चलिए। और हाँ, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी कैसे बातें मनवा सकते हैं, जितनी चीजें भेजी ना, सब जो भी सुन रहे ना, कोशिश करें अपनी इन्हीं अदाओं से बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी बातों को मनवाते रहिए और अपनी दोस्ती को मजबूत करते रहिए। फिलहाल अमरीन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अभी थोड़ी देर में। बाय, टेक केयर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की

0: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज बड़ोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: વાણી આકાશવાણી
1: जी हाँ दोस्तों, पूरे 8 बज गए हैं और ये प्रोग्राम कौन सा होता है आपका अपना म्यूजिक मस्ती का। तो बस तैयार हो जाएं, किस चीज़ के लिए? थिरकने के लिए भाई, थोड़ा सा तो मस्ती करना भी ज़रूरी है ना, पूरे दिन भर टायर्ड। अच्छा कोई बात नहीं, हल्का फुल्का तो थिरका जा ही सकता है। फिलहाल ये प्रोग्राम आपको पूरा पूरा पूरा कोशिश मैं करूँगी कि आपको जो है ना थिरकने के लिए मजबूर कर दे। गाने में कुछ ऐसे लेकर

8:11 और पूरे 40 सेकंड हो चुकी हैं और म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना। और वाकई में दिल कई बातें जो है ना वो नहीं कह पाता है, नहीं कह पाता है, अपने ही अंदर जो है ना वो बंद करके

लेता है, कई बार बहुत सही भी होता है, तो कई बार कभी कभी क्या बोलें, गलत तो नहीं बोलेंगे, हर एक चीज सही होती है और बहुत सही भी होती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम आपका अपना, म्यूजिक मस्ती। और ये कौन सा गाना है, बहुत प्यारा गाना है, बस सुनते रहें और इंजॉय करते रहें।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक का प्रोग्राम, आपका अपना म्यूजिक मस्ती। और म्यूजिक मस्ती में आप कौन सा किस पे मन कर रहा है? अच्छा, किस पे मन कर रहा है थिरकने का? देखिए, म्यूजिक है ही ऐसा कि अगर आपका दिल कर रहा है कि आप बहुत बोर हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स भी इस टाइम बिजी हैं, क्या करें क्या नहीं करें, तो बस म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है कि आप आराम से उसको इंजॉय कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत भी नहीं है और और आप अपनी उन यादों में खो सकते हैं जिन यादों से आप बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। तो फिलहाल तो अभी यादों वाले मैं ऐसे गाने नहीं प्ले कर रही हूँ, मैं प्ले कर रही हूँ इस टाइम थोड़ा सा एनर्जी लाने के लिए, क्योंकि दिन भर जो है पूरी मैं समझ सकती हूँ। फिलहाल कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: 8:36 और पूरे 25 सेकंड हो गए हैं म्यूजिक मस्ती एम्ब्रीन के साथ, और एम्ब्रीन सुनवा रही है आपको आपको क्या म्यूजिक और मस्ती, और साथ में म्यूजिक के साथ हम लोग कर रहे हैं मस्ती। तो बस कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा है, बिल्कुल सबकी अपनी अपनी अदाएं हैं। फिलहाल कहती हूँ ना मैं कि जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। फिलहाल अमरीन को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद और साहब, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी याद आती रही। और यकीन मानिए कि हमें भी आपकी बेहद बेहद बहुत ज़्यादा याद आती है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें अक्सर दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती हैं। इसलिए आप महसूस कीजिए, जैसे माँ के हाथों की रोटी की खुशबू या फिर पापा जी की डांट और दोस्तों की बेवजह हंसी और किसी अपने का यूं ही हाल पूछ लेना, वाकई बहुत याद आता है। वक्त अजीब शय है, ये आगे तो बढ़ता है मगर पीछे बहुत कुछ छोड़ जाता है। कुछ चेहरे, कुछ आवाज़ें, कुछ गलियां और कुछ ऐसे लम्हे जिन्हें हम चाहकर भी वापस नहीं ला पाते। लेकिन आज का ये सफ़र उन्हीं यादों के नाम है। अगर इस वक्त आप सफ़र में हैं, घर पर हैं या फिर किसी तन्हाई के साथ बैठे हुए हैं, तो बस दिल को

कभी सोचा है कि बचपन में हमें जल्दी या बड़े होने की कितनी जल्दी थी? लगता था कि बड़े होकर अपनी मर्जी की ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन जब सचमुच बड़े हो गए तब सबसे ज़्यादा उसी बचपन की कमी महसूस होने लगी। वो गर्मियों की छुट्टी हो या छत पर बिछी चारपाई, दादा नानी की कहानी, बारिश में भीगी और बिना किसी वजह के खिलखिलाकर हंस देना, ये सभी यादें हैं। और प्रोग्राम चल रहा है कौन सा, आपकी याद आती रही। और ऐसी यादें आज जब हम याद करते हैं तो चेहरे पर मुस्कान जो है वो ज़रूर आती है। और आज ज़िंदगी में बहुत कुछ है, जिम्मेदारियाँ हैं, काम है, भागदौड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेफिक्री हमसे कहीं रूठ गई है। शायद इसलिए पुराने जो गीत होते हैं, पुराने जो गाने होते हैं, आज भी उतने अपने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहें कि म्यूज़िक नहीं है, संगीत नहीं है, हमारे गुजरे हुए कल की आवाज़ है। और ये हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में जिए गए हर पल का नाम है ज़िंदगी। चलिए अब सुनते हैं एक और गीत और लुत्फ़ लेते हैं। प्रोग्राम आपकी याद आती रहेगा और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी छोड़ी करेंगे जनरल, आपने ट्यून किया 102।

6 सितंबर मैं हूँ आपके साथ, आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद। प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। और जब जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो शायद दोस्ती का है, इसमें ना कोई शर्त होती है ना कोई हिसाब किताब, बस कुछ लोग यूं ही हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमारी यादों का सबसे रोशन हिस्सा बन जाते हैं। वैसे स्कूल की जो आखिरी बेंच होती है ना, या फिर कॉलेज की कैंटीन, और वहाँ बेवजह की हंसी और एक दूसरे की टांग खींचना, और फिर छोटी छोटी सी बातों पर रूठ जाना और अगले पल फिर मान जाना, ये सब याद आते हैं। आज सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल हैं, किसी का शहर बदल गया है, किसी का वक्त, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनके जिनसे बरसों बाद भी बात हो तो लगता है कि जैसे पिछली मुलाकात कल ही हुई थी। अगर इस वक्त आपका भी कोई दोस्त आपको याद आ रहा है तो कार्यक्रम ख़त्म होने का इंतज़ार मत कीजिए, आज ही उसे फ़ोन कीजिए। यकीन मानिए कुछ रिश्ते जो होते हैं वो ज़िंदगी में कहें कि सिर्फ याद करने के लिए नहीं होते हैं, निभाने के लिए भी होते हैं। प्रोग्राम आपकी याद आती रही, आप सुन रहे हैं मेरे यानी खुर्शीद के साथ। जब

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: अभी छोड़ी करेंबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम आपकी याद आती रही। और साहब, कई बार हम पूरी दुनिया को अपना वक्त दे देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सपने देखना सिखाया, उनके साथ दो पल बैठने का वक्त हम शायद नहीं निकाल पाते। राल साहब, माँ बाप की मोहब्बत बड़ी खामोश होती है। वो अपने हिस्से की हर खुशी हमारे नाम लिखते हैं और बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि कभी कभी हम बिना किसी वजह के उनका हाल पूछ लें। याद रखिए, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, दौलत, शोहरत, कामयाबी, लेकिन माँ की दुआ और पिता का साया अगर एक बार छूट जाए तो फिर सिर्फ और सिर्फ यादें रह जाती हैं। अगर आपके कहें कि माँ बाप आपके साथ हैं, तो खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझ लीजिए।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है, प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद। साथियों कहते हैं कि पहला प्यार हर किसी की जिंदगी में नहीं आता, लेकिन पहली मासूमियत हर किसी के हिस्से में जरूर होती है। वो उम्र जब किसी की एक मुस्कान पूरे दिन की वजह बन जाती है, जब एक छोटी सी मुलाकात दिल की धड़कन बढ़ा देती है और जब किसी का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगती है। वक्त के साथ हम समझदार हो जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं वही मासूमियत दिल मासूम दिल जो है वो कहीं पीछे छूट जाता है। शायद इसी वजह से जो पुराने गीत सुनते ही दिल में फिर उसी उम्र में लौट जाता है जहां ख्वाब भी सच्चे थे और मोहब्बत भी सच्ची थी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी याद है जिसे आपने आज तक संभाल रखा है तो उसे थोड़ा सा ज़िंदा कीजिए, यकीन मानिए कि दिल को बहुत सुकून मिलेगा।

आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है, प्रोग्राम आपकी याद आती रही। और सब आज की दुनिया में हर कोई बहुत तेज़ दौड़ रहा है, और किसी को मंजिल चाहिए तो किसी को पैसा, किसी को पहचान, लेकिन हर भाग दौड़ में एक इंसान जो है वो सबसे पीछे छूट जाता है, और वो हैं हम खुद। कब आपने आखिरी बार बिना मोबाइल की चाय पी हो? याद है आपको, अक्सर हमारे हाथ में मोबाइल होता है। और या फिर कब आपने डूबते सूरज को इत्मीनान से देखा हो, या कब किसी अपने की बातें बिना घड़ी देखे सुनी हो। ज़िंदगी बड़ी भागदौड़ भरी हो गई है। ज़िंदगी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों का नाम बिल्कुल नहीं है, ज़िंदगी उन छोटे छोटे लम्हों का भी नाम है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यकीन मानिए, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर अगर हम गौर कर लें तो हम अपने रिश्तों को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं।

और जब ताल से ताल मिलाते हुए आज की जो महफिल है वो अपने अख्तिमाम की जानिब जो है बढ़ चुकी है, मैं आपका दोस्त खुर्शीद और दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी कीमती लम्हे हमारे साथ गुजारे। और यादें की अगर बात करें तो यादें कभी पुरानी होती ही नहीं हैं, बस उनके ऊपर वक्त की हल्की सी गर्द जो है वो जम जाती है और फिर अचानक कोई गीत, कोई आवाज़, कोई खुशबू उस गर्द को जो है वो हटा देता है। बहरहाल अब इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा और 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम रंगे महफिल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMJI अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण

0: उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शीर्ष 48 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दे दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे से 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमरीका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है।

0: एजुकेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर सवार हैं आप। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंग महफिल, जहां सुरों की नरमी, अल्फाज की नफासत और एहसास की खुशबू एक साथ रूह हो जाती है। दोस्तों, गजल महज मौसिकी नहीं है, बल्कि ये दिल की वो जुबां है जो अक्सर लफ्जों से पहले बोलती है। हम खामोशियां बातें करने लगे जब तन्हाई हम नशी बन जाए, और जब यादें बिना दस्तक दिए दिल में उतर आए, तब एक गजल अता होती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, मिलना, बिछड़ना, इंतजार करना, माफ करना, लेकिन एक बात और सिखाती है कि जो इंसान अपने दिल को जिंदा रखता है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का मालिक है। तो आइए आज की इस महफिल का आगाज एक ऐसी गजल से करते हैं जिसके हर मिसरे में खुशबू है। मखमली आवाज के मालिक जगजीत साहब की आवाज में ये खूबसूरत कलाम आपके लिए।

कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल में बसने वाले जज्बात अगर सच्चे हों तो उनकी रोशनी उम्र भर काम नहीं होती। कहते हैं कि एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जिस दिल में मोहब्बत है वही दिल इबादतगाह है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ किसी एक शख्स से नहीं होती बल्कि मोहब्बत खुदा की बनाई हुई हर नेमत से होती है, इंसान से, रिश्तों से, प्रकृति से और उस सुकून से जो खामोशी में भी सुनाई देता है। गज़ल भी हमें यही सलीका सिखाती है कि हर अल्फाज को सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि उसे महसूस किया जाता है। एक अच्छा शेर हमारे भीतर, हमारे अंदर उतर कर हमारे ही दिल से रूबरू करा देता है हमें। तो आइए अब पेश है एक और गज़ल जिसके बोल सुनकर लगता है कि जैसे कोई अपने दिल का हाल अदब से बयां कर रहा है। बड़े सुकून से, ध्यान से सुनिए।

2.6 FM क्लियर होकर सवार हैं आप इस वक्त, खुर्शीद आपके साथ है प्रोग्राम रंग महफिल में। और साहब, कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल में बसने वाले जज्बात अगर सच्चे हों तो उनको रोशनी उम्र भर कम नहीं होने देती। बहरहाल, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। हर बात का जवाब अल्फाज से नहीं होता, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे सुबह की पहली हवा, शाम की ढलती धूप, या फिर किसी अजीज की याद जो बिना अल्फाज दिए दिल में उतर आते हैं। गजल की खूबसूरती भी ये है कि वो शोर नहीं करती बल्कि दिल के दरवाजे पर बेहद अदब से दस्तक देती है। हर शेर अपने साथ कोई सवाल नहीं बल्कि एक एहसास लेकर आता है। ये अगला कलाम आपकी नज़र।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको

0: एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: जब आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इनपुट चैनल, मैं हूं आपके साथ खुर्शीद और प्रोग्राम चला है रंग महफिल। कभी किसी सूफी फकीर ने कहा था कि जिस दिन तुमने अपने दिल से नफरत निकाल दी उसी दिन खुदा तुम्हारे करीब हो जाएगा। और हम अक्सर मोहब्बत को सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित कर देते हैं, जबकि मोहब्बत तो एक नज़रिए का नाम है। किसी मुसाफिर की मदद करना या फिर किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ले आना, किसी गमजदा इंसान की बात सुन लेना, यही तो मोहब्बत की सबसे पाक सूरतें हैं। गज़ल भी हमें यही अदब सिखाती है कि दिल जितना नर्म होगा ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत महसूस होगी। और अब पेश है एक ऐसी गज़ल जो दिल की गहराइयों से निकलकर सीधे सीधे रूह की ओर जाती है।

जिंदगी हमें रोज कुछ ना कुछ सौंपती जरूर है, कभी खुशी कभी गम, कभी मुलाकात कभी जुदाई। लेकिन शायद सबसे बड़ा हुनर ये नहीं है कि हम कितना पा लेते हैं, बल्कि ये है कि हम कितना संभाल के रखते हैं अपने रिश्ते, अपने उसूल, अपनी तहजीब और अपने दिल की सफाई। क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो है जिसके दिल में किसी के लिए कीना नहीं है बल्कि दुआ है। और अब इस कलाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और हाँ, उनका भी ख्याल रखिए जो आपका बेहद बेहद ख्याल रखते हैं। मुझे खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

नमस्कार, हेमा मेहरा से सुनिए एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में स्थानीय शांति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। श्री मोदी ने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज शाम 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। अगले दो दिन से 3 दिनों में मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा विश्व कप में टेक्सास में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट पर 1-0 की बढ़त बढ़ा ली है। फिलहाल इतना ही। एफएम रेनबो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम का, जिसका नाम है जीरो आवर शो। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेडियो जला के साथ। समय हुआ है 1:15। आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयासों पर जोर दिया। सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज से लागू नए पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 8.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग और बेहतर अंतर विभागीय समन्वय पर बल दिया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं के सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज शाम 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को आज से समाप्त कर दिया गया है। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचों के तहत संचालित होंगे। फीफा विश्व कप में टेक्सास में नॉर्वे आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 MHz पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हुआ है 2:15। आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान से फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयासों पर जोर दिया। सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज से लागू नए पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रूपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 8.50 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बैठक में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग और बेहतर अंतरविभागीय समन्वय पर बल दिया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1,100 करोड़ रूपये से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को आज से समाप्त हो जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचों के तहत संचालित होंगे। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फीफा विश्व कप में नॉर्वे आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम यानी भुलाई ना बनेगा, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब सुनिए मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया। सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज से लागू नए पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 8.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बैठक में पीएम गतिशक्ति के व्यापक उपयोग और बेहतर अंतरविभागीय समन्वय पर बल दिया है। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को आज से समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कवरत्ति और आईएनएस शक्ति ने थाईलैंड के सट्टाहीप बंदरगाह की अपनी निर्धारित यात्रा पूरी कर ली और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी अगली परिचालन तैनाती के लिए रवाना हो गए। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई में निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थीं। फीफा विश्व कप में नॉर्वे आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवर्स साइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। ये थे एफएम रेनबो के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर अब समय हुआ है रात्रि के 3:03 और अब आप सुनेंगे मिडनाइट मेलोडीज में नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। शुरुआत करते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में आईआरए फिल्म के इस गाने के साथ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर समय हुआ है आधी रात के 3:23 और आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज में नॉनस्टॉप म्यूजिक। तो ऐसे ही गानों का मजा लेते रहिए और झूमते रहिए।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर अब समय हुआ है 3:54 और आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज में नॉन स्टॉप म्यूजिक। सुबह 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार और अभी के लिए आप एक सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया। सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज से लागू नए पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 8.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक

पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का फैसला किया है। यह परीक्षा बृहस्पतिवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को आज से समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राज्य में आज से लागू होने वाली ईवी पॉलिसी 2026 के तहत मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों का चरणबद्ध विद्युतीकरण भी किया जाएगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नमेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा, ये 2 दिन चलेगा। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई में निधन हो गया, वे 92 वर्ष की थीं। नेपाल में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद कावर पालन चौक में 40,000 से अधिक बतखों मुर्गियों को मार दिया गया है। इस संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रसार रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने स्वीडन पर 2 गोल की बढ़त बना ली है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 10 बजे से खेला जाएगा। ये थे आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो के मुख्य समाचार।

सुबह के 4:03 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सारेगामा जिसमें नॉनस्टॉप म्यूजिक का आप आनंद ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं अनुप जैन की आवाज में इस गाने के साथ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

0: ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

अभी आपने सुना आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर सिंगल पापा वेब सीरीज से ये वाला गाना अमन पंत की आवाज में। सुबह के 4:37 हुए हैं और FM रेनबो पर सारे गामा में आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। अभी सुनिए कनिका कपूर और विलेन की आवाज में ये गाना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। सुबह के 4:54 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सारेगामा। और अब इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनिए और उसके बाद सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया। सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज से लागू नए पखवाड़े के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 8.5 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का फैसला किया है। यह परीक्षा बृहस्पतिवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची आज 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को आज से समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राज्य में आज से लागू होने वाली ईवी पॉलिसी 2026 के तहत मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों का चरणबद्ध विद्युतीकरण भी किया

जाएगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा, ये 2 दिन चलेगा। फिल्म और रंगमंच की जानी मानी शख्सियत विजया मेहता का कल मुंबई में निधन हो गया, वे 92 वर्ष की थीं। नेपाल में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद काबरे पालंग चौक में 40,000 से अधिक बतखों और मुर्गियों को मार दिया गया है। इस संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रसार रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने स्वीडन पर 2 गोल की बढ़त बना ली है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 10 बजे से खेला जाएगा। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुबह के 5:03 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें आप आनंद लेंगे नॉनस्टॉप भजनों का। तो शुरुआत करते हैं गुल सक्सेना की आवाज में श्री राम भजन के इस भजन के साथ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।